0: चलो चलो घंटी बज गई, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा है दुश्मन।
1: अच्छा लगा ना?
0: चल चल चल चल चल।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप होता है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार

0: कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया ही इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आज हम राजयोग मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। राजयोग मेडिटेशन का अर्थ है मुझ मनुष्य आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए सबसे पहला रूल है स्वयं को शरीर नहीं बल्कि शरीर को चलाने वाली ऊर्जा अर्थात आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। जब तक हम देह के भान में रहेंगे तब तक हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ हो ही नहीं सकता। गीता में भी लिखा है देह सहित देह के धर्मों को छोड़ स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। जब तक मनुष्य आत्मा शरीर के भान में फंसी है, शरीर से संबंधित पदार्थों में फंसी है, तब तक परमात्मा से कनेक्शन नहीं हो सकता। जब मनुष्य आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचानती है अर्थात मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ, प्रकृति के मध्य में विराजमान हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, इस ज्ञान को जानती है, आत्मिक स्वरूप में टिकती है, आत्मा के मूल गुणों को पहचानती है अर्थात आत्मा के मूल गुण हैं शांति, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, सुख, आनंद, इन गुणों को कर्मों में लाती है, तब मनुष्य आत्मा आत्मिक अवस्था में टिकती है। आत्मा का स्वरूप बिंदु रूप है, प्रकाश का बिंदु। आत्मा का निवास स्थान मनुष्य के ब्रुकिटी में है। मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा के तीन शक्तियां हैं। मन के द्वारा मनुष्य आत्मा विचार करती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय लेती है। जो कर्म रिपीट किए जाते हैं वही संस्कार के रूप में रिकॉर्ड होते हैं। मनुष्य आत्मा हर जन्म में नए संस्कार बनाती है और उनके अनुसार कर्म करती है। कुछ संस्कार माता पिता के सानिध्य में बनाती है, कुछ संस्कार मित्र संबंधियों के प्रभाव से बनाती है, कुछ संस्कार पिछले जन्मों के भी होते हैं। परमात्मा से प्राप्त 7 संस्कार हर मनुष्य आत्मा के पास होते हैं। परमात्मा से प्राप्त संस्कार हैं पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख, ज्ञान, आनंद। यह 7 संस्कार किसी मनुष्य आत्मा के अंदर इमर्ज अवस्था में होते हैं तो किसी में मर्ज होते हैं। जो मनुष्य आत्मा इन गुणों को ज्यादा यूज करेगी उनके अंदर यह गुण बढ़ते जाएंगे और जो मनुष्य आत्मा इन गुणों को संस्कारों को यूज नहीं करेगी उनके

अंदर ये कम नजर आएंगे। मनुष्य आत्मा इस शरीर में ऐसे रहती है जैसे कार चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, उसी प्रकार शरीर चलाने के लिए भी आत्मा की जरूरत होती है। परमात्मा कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, बल्कि शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, प्रकाश पुंज, ज्योति बिंदु आत्मा है। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेज हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेज कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हो पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही सभी मनुष्य आत्माओं के पिता भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो सभी मनुष्य आत्माओं में परम अर्थात सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, इसीलिए उन्हें परम आत्मा कहा गया है। परम आत्मा अर्थात जो आत्मा सभी आत्माओं में सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, पवित्र है, उस आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं के पिता होने के कारण उन्हें परम पिता कहते हैं। परमात्मा ज्योतिर्बिंदु, प्रकाश पुंज, शक्तियों के सागर, पवित्रता के सागर, शांति, सुख, ज्ञान, आनंद, प्रेम के सागर है। परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, अर्थात परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। परमात्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती, बल्कि परमात्मा का दिव्य अवतरण इस धरा पर संगम युग में होता है। परमात्मा निराकारी है, अर्थात मनुष्यों की तरह हड्डी मांस का शरीर परमात्मा को नहीं होता है। परमात्मा निर्विकारी है, अर्थात परमात्मा में कोई विकार नहीं है। आज मनुष्य आत्मा में अनेक विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। परमात्मा में एक भी विकार नहीं है, इसीलिए परमात्मा को निर्विकारी कहते हैं। परमात्मा निरअहंकारी है, अर्थात ज्ञान का, शक्तियों का सागर होते हुए भी परमात्मा में अहंकार नहीं है, इसीलिए परमात्मा को निरअहंकारी कहते हैं। परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, इसीलिए उन्हें पतित पावन कहते हैं। परमात्मा सभी को सद्गति प्रदान करते हैं। परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं के दुखों को हर के उन्हें सुख प्रदान करते हैं, इसीलिए उन्हें सुखकर्ता, दुखहर्ता भी कहते हैं। परमात्मा किसी को भी दुख नहीं देते, मनुष्य आत्मा के कर्म ही उसे दुख देते हैं। जो परमात्मा को याद करते हैं वही नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसे पूज्य बन जाते हैं। परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं की कलयुग में जो पत्थर बुद्धि बन गई है उसे पारस बुद्धि बनाते हैं। सभी को ज्ञानमृत पिलाने वाले ज्ञान के सागर है। परमात्मा का स्वरूप सत चित आनंद है। परमात्मा विष्णु द्वारा सतयुगी दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं। परमात्मा हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता, परम शिक्षक, सद्गुरु है। परमात्मा अकाल मूर्त है, अर्थात उन्हें कभी काल खा नहीं सकता, अर्थात परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाने वाले हैं। परमात्मा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देते हैं। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। परमात्मा ब्रह्मलोक के वासी है। शंकर द्वारा आसुरी कलयुगी सृष्टि का विनाश होता है। परमात्मा दिव्य गुणों के भंडार है, दिव्य दृष्टि विधाता है, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, सुख दुख से न्यारे हैं, दिव्य बुद्धि के दाता हैं। परमपिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। वही पतितों को पावन करने वाले मनुष्य मात्र को शांति धाम तथा सुख धाम की राह दिखाने वाले हैं। विकारों तथा काल के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। सभी प्राणी मात्राओं पर रहम करने वाले हैं। मनुष्य आत्माओं को ज्ञान रूपी सोम अथवा अमृत पिलाने तथा अमर पद का वरदान देने के कारण सोमनाथ तथा अमरनाथ इत्यादि नाम भी उन्हीं के हैं। वह जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एक रस, सदा जागती ज्योति, सदा शिव है। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लौ जैसा है। वह रूप अति निर्मल, स्वर्णमय, लाल और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योतिर्मय रूप को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा के उस ज्योति बिंदु रूप की प्रतिमाएं भारत में शिवलिंग नाम से पूजी जाती है और उनके अवतरण की याद में महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ

आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, सभी धर्मों ने यही बताने की कोशिश की कि हमारे जो परमात्मा है, हमारे जो भगवंत है, हमारे जो भगवान है, वो एक है, सबका मालिक एक है। हर धर्म स्थापक ने हमें भगवान से, परमात्मा से, खुदा से जोड़ने की कोशिश की। सभी ने यही कहा कि सभी का मालिक एक है। परमात्मा को अनेक नामों से पुकारा गया। किसी ने उन्हें अमरनाथ कहा, किसी ने रामेश्वर, किसी ने विश्वनाथ कहा, किसी ने सोमनाथ कहा, किसी ने उन्हें गॉड कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने साहेब कहा। हम सभी ने उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा। क्राइस्ट ने भी कहा कि गॉड इज लाइट, लाइट अर्थात प्रकाश। हिंदू धर्म में भी मान्यता है ज्योतिर्बिंदु शिव। ज्योतिर्बिंदु का अर्थ प्रकाश पुंज, बिंदु रूप। गुरु नानक ने भी अपने ग्रंथ में परमात्मा की महिमा की है, एक ओंकार, निर्वैर, निराकार। सभी धर्म संस्थापकों ने उस परमात्मा की, परम पिता की, भगवान की महिमा की और सभी ने हमें उससे जोड़ने की कोशिश की। परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। परमात्मा कहते हैं कि इस धरा पर युगों का सृष्टि चक्र है। सबसे पहले आता है सतयुग, उसके बाद है त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और अभी जो चल रहा है वह कलयुग। परमात्मा कहते हैं इस धरा पर ये सृष्टि चक्र ऐसे ही घूमता है। परमात्मा कहते हैं जब कलयुग में अधर्म का राज्य होता है, तब अधर्म का विनाश करने और एक सत्य धर्म की, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा का दिव्य अवतरण संगम युग पर होता है। संगम युग अर्थात जहां कलयुग का विनाश निकट है और सतयुग की आदि पृथ्वी पर होने वाली है, इनके बीच का समय संगम युग कहा जाता है। इसी संगम युग पर परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण इस धरा पर होता है। परमात्मा इस समय धरा पर क्यों अवतरित होते हैं? तो परमात्मा कहते हैं जो कलयुग में पापाचार, भ्रष्टाचार, हिंसाचार बढ़ गया है, अधर्म बढ़ गया है, इसका विनाश करने के लिए और एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा का दिव्य अवतरण संगम युग पर होता है। परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, सभी को श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देते हैं, दिव्य गुणों की धारणा कराते हैं और इस धरा पर सतयुग की स्थापना ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। विष्णु द्वारा सतयुगी दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं। परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, शंकर त्रिमूर्ति के रचयिता है। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन, नाउ इवन अगर कल बीत गया इट डजंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं जब इस धरा पर सतयुग था तब सभी मनुष्य आत्माएं दैवी गुणों से संपन्न थी, इसीलिए प्रकृति भी सतो प्रधान थी, सुख समृद्धि संपन्नता भारत में विद्यमान थी। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था और श्री लक्ष्मी श्री नारायण द्वारा ही संपूर्ण सतयुगी सृष्टि की पालना होती थी, इसीलिए इन्हें पालनहार कहा जाता है। जब त्रेता युग आया तब श्री सीता और श्री राम का राज्य था, वहां पर भी सभी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दैवी गुणों से भरपूर थे। जब इस धरा पर द्वापर आया तब मनुष्य आत्मा स्वयं को भूलकर शरीर के भान में फंस गए और इसीलिए देह भान आने के कारण मनुष्य आत्मा में अनेक विकारों की प्रवेशता हुई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनकी प्रवेशता बढ़ने के कारण अधर्म और धर्म के बीच युद्ध होने लगे और भक्ति भी बढ़ने लगी। द्वापर युग से अनेक धर्म संस्थापकों ने हम मनुष्य आत्माओं को भगवान से जोड़ने की कोशिश की, भगवान की सत्य राह पर चलना सिखाने की कोशिश की, लेकिन हम मनुष्य आत्माएं धर्म संस्थापकों की शिक्षाओं को पूरी तरह से न समझ पाने के कारण आपस में ही लड़ते रहे। जब इस धरा पर कलयुग आया तब अधर्म का राज्य सब तरफ बढ़ गया। मनुष्य आत्माओं के अंदर के विकारों की तीव्रता बढ़ गई। सभी तरफ भ्रष्टाचार हिंसा कलह क्लेश युद्ध परिस्थितियां निर्माण हो गई। मनुष्य आत्माएं तमोप्रधान बन गए और साथ ही प्रकृति भी तमोप्रधानता की ओर बढ़ती गई। इसीलिए कहीं बाढ़ कहीं भूकंप कहीं अकाल की परिस्थितियां निर्माण हो गई। परमात्मा कहते हैं कि जल्दी ही कलयुग का विनाश होकर इस धरा पर सतयुग की सुंदर सवेरा नजर आएगा। परमात्मा कहते हैं कि फिर से धर्म की स्थापना होगी, सत्य धर्म की स्थापना होगी, जहाँ पे हर मनुष्य आत्मा दैवी गुणों से भरपूर होगी, जहाँ पे संपन्नता सुख शांति पवित्रता का राज्य होगा। परमात्मा कहते हैं संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा और संस्कार परिवर्तन के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास जरूरी है। मेडिटेशन ध्यान यह विधि है जहां पे हम मनुष्य आत्मा अपने मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़ते हैं। जब हम शरीर के भान को भूलकर स्वयं को आत्मा समझकर परम पिता परम आत्मा को याद करते हैं, जब हम मन से परमात्मा के बारे में सोचते हैं और बुद्धि से परमात्मा के ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को देखने की कोशिश करते हैं, तब हमारा मन बुद्धि परमात्मा से जुड़ जाता है और इसी को योग कहते हैं, इसी को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। परमात्मा कहते हैं, जितना आप परमात्मा को याद करोगे आपके अंदर के संस्कारों का परिवर्तन होगा। परमात्मा के याद से मनुष्य आत्माएं विकारों से मुक्त होंगी। परमात्मा के याद से जन्मों जन्म के पाप भस्म होंगे। मनुष्य आत्माएं पतित से पावन बनेगी। जितना हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, अर्थात परमात्मा का ध्यान करेंगे, उतना हमारे अंदर सुख, शांति, दिव्य गुणों की धारणा होगी। श्रुति हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो,

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ मनाओ।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, रोज की ये मुलाकात है, ऐसे लगता है कि हम और आप, हमारी जो जीवन है वो एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन बहुत से दर्शक जो नए जुड़ रहे हैं उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। जिंदगी अगर हम देखें तो कई बार बहुत सी ऐसी ऑब्स्टिकल्स लेकर आती है, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस लेकर आती है जो हमें लगता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं और हम उन्हें पार नहीं कर पाते। कई बार वो आसानी से हो जाती है, हमारा अपना मेंटल मेकअप ऐसा होता है, लेकिन कई बार वो बहुत हावी हो जाती है। तो ये जो आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी बातचीत का सिलसिला जिसमें बहुत सी हम सिचुएशंस को देखेंगे, जिंदगी के उन पड़ावों को देखेंगे जहां हम कहीं रुकने लग जाते हैं या उन्हें पार करते करते हम बहुत थक जाते हैं। तो क्या कोई आसान तरीका है? क्या मेरे सोच में, मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है कि वो सिचुएशंस मुझ पर हावी ना हो? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जिस तरह से अब लोग जुड़ते गए हैं अवेकनिंग के साथ और आप भी बहुत से लोगों के साथ मिलते गए हो, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस? लोगों का
1: एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल, बिकॉज जहां जहां भी आप, जितने भी लोगों से मिलते, तो वो नए नए अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज और कहीं ब्रह्मा कुमारीज परिवार का अब हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि परिवार वही होता है जहां हमारी सोच एक दूसरे के साथ मैच करती है। और इतने सारे भाई बहने, लाखों की संख्या में कहें, जो रोज हमसे मिलते रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम द्वारा, वो सोच में परिवर्तन, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जोड़, जो आज तक परिवर्तन की बात सिर्फ सोच में थी, वो प्रैक्टिकल में आने लगे, क्योंकि परमात्मा की शक्ति भी मिलती गई। ज्ञान तो है, सभी के पास है, चाहते भी हैं परिवर्तन करना, लेकिन सिर्फ जो हिच आ रहा था वो कहाँ, कि मुझे मालूम है लेकिन होता नहीं है। लेकिन जहां परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा, तो वो वाला भी जो स्टेप था वो क्रॉस हो गया, एंड देन लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज यू आर एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। यू नो, बाहर तो जो करना चाहते हैं वो हो जाता है, लेकिन अंदर जो फील करना चाहते हैं वो कई बार कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। लेकिन क्योंकि जिन भी भाई बहनों ने अपने ऊपर वो मेहनत की है, सिर्फ प्रोग्राम देखने से ये नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम को एक स्टडी के रूप से लिया है। एंड आई हैव मेट मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो प्रोग्राम के साथ जैसे एक नोटबुक लेकर बैठते हैं और उसको नोट्स बनाते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं और फिर तुरंत उसको नेक्स्ट डे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप उसको अप्लाई करते हो। एंड ज्ञान इतना ब्यूटीफुल है, क्योंकि जो परमात्मा ने डायरेक्ट नॉलेज दी, तो नॉलेज तो बहुत सिंप्लीफाई हो गई, लेकिन जब तक हम उसको यूज नहीं करते तो हमें उसका बेनिफिट नहीं पता चलता। तो जिन्होंने उसको यूज करना शुरू किया, तो उनको वो बेनिफिट मल्टीफोल्ड मिला है। एक है कि आप देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, नेचुरल है, परमात्मा की दी हुई बातें हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, समझ भी आ जाते हैं, लेकिन वंडर तब क्रिएट होता जब उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। सो अगेन आई वुड से टेक इट बैक टू योर लाइफ टुमारो। यू नो, नॉट दैट आप आधा घंटा टीवी देखते हैं, आप देखते देखते कहते हैं या इट्स वेरी गुड, इट सीम्स गुड, कई बातें लगती हैं नो बट इट्स नॉट पॉसिबल, कई बातें लगती हैं येस इट्स पॉसिबल, बट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल जिसको वन ट्राई इट आउट टुमारो, एंड ट्राई करने के बाद डिसाइड करें कि पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। सिर्फ सुनने से नहीं डिसाइड करें, क्योंकि जहां इतने लोग वो पॉसिबल कर पाए हैं लाखों की संख्या में, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? इट्स जस्ट दैट मेरा वो एक स्टेप बचा है, एंड दैट इज गोइंग टुमारो एंड ट्राइंग दिस आउट। जब हम कहते हैं नॉट पॉसिबल या वेरी डिफिकल्ट, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने मन को कह दिया लेट इट बी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये इनके लिए ठीक है, ये लोग जो बात कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता मेरे ऑफिस में क्या होता है, या इनको क्या पता मेरे घर में कैसे लोग हैं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उससे फिर हम अपनी ही प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं। सो व्हाटएवर वी शेयर इट्स फॉर एवरीवन, टेक इट बैक विद यू टुमारो, अपने ऑफिस में इसको लेकर जाएं, अपने घर पर लेकर जाएं, देन द मैजिक स्टार्ट्स। सो देन आई हैव बीन मीटिंग सो मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनके लिए फिर ये मैजिक हुआ है। वो फील करते हैं, ये उनका अनुभव है कि उनकी पूरी सोच में परिवर्तन आया, क्योंकि परिवर्तन यही हुआ कि औरों को देखने की बजाय
0: खुद को
1: अपने को देख,
0: देखा
1: बस वो एक ही तो स्टेप चाहिए था सिर्फ, लेकिन वो अंडरस्टैंड जब हो गया तो अपने को देखना शुरू किया, अपने को देखना शुरू किया तो अपने पर काम करना शुरू किया, और वो रियलाइज हुआ ये तो इजी है,
0: और
1: ये तो
0: सबसे बड़ी
1: पॉसिबल
0: बात
1: है।
0: वो आहा मोमेंट ये थी कि ओ अच्छा मैं अपने आप को देख सकता हूँ, यू नो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत आपने आज जिस बात से हमने शुरू किया है कि बहुत से लोग हैं जब प्रोग्राम देख रहे होते हैं अच्छा जरूर लगता है, लेकिन यही बात है कि मेरे लिए नहीं है। तो ये इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंस, आपको हम यही कहना चाहेंगे जो नए लोग जुड़े हैं, जो बहुत वक्त से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी कि ये जो आने वाली जो श्रृंखला हमारी रहेगी जिस पर हम बातचीत करेंगे, आप ही की समस्याओं को लेने वाले हैं, आप ही की वो सिचुएशंस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हुए, या जिन अगर ज्ञान नहीं भी जान पा रहे हैं, आप नहीं जानते थे, तो इस पूरी बातचीत के दौरान आप तक वो बात जरूर पहुंचेगी। बात हम यही करते हैं ऐसे शिवानी, यही से शुरू करते हैं कि चले
1: सिचुएशंस
0: समझ में आ गई थी,
1: राइट
0: जिंदगी समझ में आई, बहुत सी बातें कि मैं जिम्मेदार हूं अपने ऊपर, लेकिन अभी भी जब हम सिचुएशंस को देख रहे होते हैं, और चैलेंजेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, आने वाला दौर चाहे हम ग्लोबली भी देखें और चाहे पर्सनल लेवल पर भी देखें, तो बहुत तेजी से बदल रहा है, हम तैयार ही नहीं होते हैं। और मतलब हमने अपनी आपको बड़े मुश्किल से एक सिचुएशन के लिए तैयार किया होता है, वो तीसरी सिचुएशन इतनी बड़ी खड़ी हो चुकी होती है कि
1: True.
0: हम फिर घबराने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो प्रिपरेशन है, क्या मेरी प्रिपरेशन उतनी है या कैसे तैयारी करनी है?
1: We cannot deny कि challenges are getting bigger day by day. कहीं ना कहीं हमने बहुत मेहनत करके अपने अंदर शक्ति लाई होती है वो जो प्रेजेंट परिस्थिति है उसको क्रॉस करने के लिए, और अभी वो शक्ति उतनी भरी नहीं होती कि मेरे सामने एक उससे कई गुना
0: बड़ी
1: बड़ी
0: सिचुएशन आ
1: परिस्थिति
0: जाए।
1: खड़ी हो जाती है। लेट्स टेक अ लिटिल थिंक के वट आर द सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा हमारा सिचुएशन पर होता है और सारा दिन माइंड में वो सिचुएशन की लिस्ट जैसे कि चलती ही जाती है। सिचुएशन जो हो चुकी है, परिस्थितियां परिस्थितियां जो वर्तमान समय मेरे जीवन में हैं, और कुछ परिस्थितियां जो मैं ऐसे ही क्रिएट करती हूँ जो मुझे लगता है हो जाएंगे,
0: हाँ होने
1: यू नो
0: वाली है
1: ये
0: आने
1: शायद
0: वाली।
1: मेरे साथ हो ना जाए, या जैसे जॉब इनसिक्योरिटी है, तो अभी जॉब है तो जॉब इज वेरी नाइसली देयर एवरी डे, बट द थॉट, सो आई एम ऑलरेडी क्रिएटिंग द सिचुएशन इवन दो द सिचुएशन इज नॉट देयर। तो नोइंग हाउ टू फेस द सिचुएशन, लेकिन वॉट आर द सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हमारे जीवन के दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं, एक है मेरी पर्सनल और फैमिली लाइफ और दूसरी है मेरी वर्क लाइफ,
0: प्रोफेशनल
1: चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे एक बच्चे के लिए उसकी वो स्टूडेंट लाइफ है, इट्स दैट लाइफ। तो अगर हम अपनी वर्क लाइफ को देखें, नाउ यू आंसर, आई विल क्वेश्चन यू, अगर
0: ओके
1: हम अपनी वर्क लाइफ कर्म उस क्षेत्र को देखें जहां हम रोज कार्य करने जाते हैं, व्हाट आर द सिचुएशंस फॉर यू?
0: द टॉप चैलेंजेस और द
1: या
0: सिचुएशंस।
1: सिचुएशन चैलेंज, उसको चैलेंज बोले, प्रॉब्लम बोले, सिचुएशन बोले, वट एवर, बिकॉज सिचुएशन तो वही है, अब आप उसको किस रूप से देखने वाले हो वो डिपेंड करता है।
0: सी अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं, मतलब लाइक यू आर आस्किंग मी,
1: नो, इन जनरल
0: हाँ
1: फॉर
0: मतलब
1: एनीबडी इन
0: जनरली,
1: वर्क लाइफ,
0: हाँ
1: या
0: जो अगर एक मीडिया पर्सन के रूप में भी, तो ये क्या, मैं फ्रीलांसर, सो रिसेशन का ये दौर जहाँ ऑलरेडी जिनकी फिक्स जॉब्स हैं
1: ट्रू,
0: उनको प्रॉब्लम आने वाली है, तो आई हैव दिस कंटिन्यूअस थिंग दैट इट्स ओके राइट नाउ, आई हैव वर्क, बट वॉट विल हैपन नेक्स्ट, बिकॉज हाउ रिसेशन इज गोइंग टू हिट, रिसेशन कैसे हिट करेगा मीडिया को
1: या
0: हम नहीं जानते
1: हमें
0: हैं
1: नहीं पता,
0: अपने
1: एंड इट्स
0: पर।
1: नॉट नेसेसरी मीडिया, इट्स फॉर एवरीबडी,
0: हाँ
1: लाइक इफ यू लुक एट इट इवन ग्लोबली, शायद ही कोई ऐसा देश है अभी जो इससे हिट नहीं हुआ है, शायद ही कोई ऐसा लेवल है सोसाइटी में जो इससे हिट नहीं हुआ है, चाहे आप यू आर टॉकिंग अबाउट द टॉप लेवल ऑफ सोसाइटी और यू आर टॉकिंग एब्सोल्यूटली द सिंपल लेबर, इवन द लेबर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क टूडे इज स्टक, यू नो, तो आप एक पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं जिसमें जॉब रिसेशन फॉर आर्थिक परिस्थिति।
0: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात बहुत से लोगों के साथ ये है कि मैंने अपना कंफर्ट जोन उसके साथ कर लिया।
1: दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई, जॉब इनसिक्योरिटी
0: अच्छा,
1: हो
0: और
1: गई,
0: फिर मेरा जॉब जहां है वो बहुत कुछ मेरे बॉस पे डिपेंड कर रहा
1: तो माई बॉस, माई
0: है।
1: कोलिग्स, दीज आर ऑल द चैलेंजेस। देन ट्रांसफरेबल जॉब, चेंज ऑफ योर होल फील्ड, कई बार आपको एक जगह से उठाकर एकदम दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं, सो दीज आर चैलेंजेस एट वर्क, चैलेंजेस एट होम,
0: Oh, you're asking me?
1: No, everyone.
0: पर्सनल बेसिकली बहुत ज्यादा सिचुएशंस, अगर घर पे देखें तो बच्चों को क्या हम सही परवरिश दे
1: That's a
0: पा
1: very
0: रहे हैं,
1: big
0: ये
1: thing.
0: मेजर
1: In many programs, wherever I've asked people, what's your top concern? कहते हैं पेरेंटिंग. ऐसे पेरेंटिंग जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हुआ करता था, आज सबसे बड़ी
0: क्वेश्चन मार्क,
1: चिंता का विषय
0: क्वेश्चन
1: बन
0: मार्क
1: चुका
0: लगा दिया
1: है.
0: हमने ऊपर,
1: यस
0: क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, इतनी सारी बातें हो रही होती हैं, पीयर प्रेशर बच्चे के ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है, बच्चे के करियर को लेकर फाइनेंशियल जो चीजें आएंगी वो एक बहुत प्रेशर लेके रखते हैं पेरेंट्स का, आजकल का जनरल जो ये है, मेरे लिए भी अगर मुझसे पूछो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे सामने. देन रिलेशनशिप्स, इफ यू आर ए सिंगल
1: रिलेशनशिप्स.
0: पेरेंट, इफ यू आर, यू नो, इवन इफ बोथ द पेरेंट्स आर देयर, कोई पेरेंट बाहर गया हुआ है विदेश में, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और वो सिंगल पेरेंटिंग में
1: डिवोर्स
0: जो,
1: केस भी बहुत बढ़ गए.
0: हाँ, मैक्सिमम ये चीजें जो होती जा रही हैं,
1: डिवोर्स है, सेपरेशन है, डेथ है,
0: और उसका पेन,
1: तो वो तो फिर मेरा रिस्पॉन्स है. लेकिन सिचुएशन जब मेरे सामने आके खड़ी होती है, एन अनटाइमली डेथ, अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड, किसी पेरेंट के लिए, या डेथ ऑफ एनी फैमिली मेंबर, एक डेथ तो एक डेथ है ही, विच कम्स एज अ वेरी बिग सेटबैक, जिसमें हमें लगता है कि ये परिस्थिति, मतलब मेजोरिटी पीपल आज कहते हैं, स्पेशली इफ इट इज डेथ ऑफ अ चाइल्ड और अ स्पाउस, अब मेरे जीवन जीने का तो कोई पर्पस ही नहीं रह गया. यू नो, सो दैट सिचुएशन इज नॉट अ सिचुएशन, बट इट्स फॉर मेनी पीपल एंड ऑफ एवरीथिंग.
0: यस,
1: क्योंकि हम समझते कि वहां तो एंड हुआ ही हुआ उनके लिए, लेकिन ये मेरे लिए भी दी एंड है. इसके बाद मेरे जीवन जीने का कोई पर्पस नहीं है, मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है. यू नो द वे पीपल से टू देमसेल्व्स, हाउ कैन आई बी हैप्पी? यू नो, आई एम और आई एम नॉट बी हैप्पी, तो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, मैं खुश हो ही कैसे सकता हूँ, मुझे खुश रहने. सो सिचुएशन, सो डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप क्राइसिस, पेरेंटिंग, कई बार चेंज ऑफ सिटी, आपको, आप बहुत समय से यू नो एक जगह पर सेट हैं, एक कंट्री में सेट हैं, या आप एक सिटी में सेट हैं, एंड सडनली
0: यू हैव टू गो,
1: पीपल आर नॉट एबल टू
0: और
1: टेक
0: वो
1: इट.
0: एकदम से क्या होता है, सिचुएशन आती है तब तो आप हेड ऑन फेस करते हैं, लेकिन जो उसके बाद का डिप्रेशन
1: आफ्टर
0: सीप इन
1: इफेक्ट,
0: करता है, ये मेजर प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है,
1: द सिचुएशन उस टाइम नहीं है ना सिर्फ, वो एक सिचुएशन अब
0: लंबा.
1: लंबा
0: हाँ,
1: प्रोसेस है. तो अब अगर हम इन सारी परिस्थितियों को देखें, वर्क पे हमने देखा फाइनेंशियल, जॉब, बॉस, रिलेशनशिप्स, घर पर हमने देखा अगेन रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, डेथ, डिवोर्स, शिफ्टिंग, व्हाटएवर, इन सभी परिस्थितियों में, अब आप ध्यान से आंसर करना, आपके आंसर पर सब कुछ डिपेंडेंट है, इन सभी परिस्थितियों में कौन सी एक चीज कॉमन है?
0: मैं
1: नहीं, मैं तो कॉमन है. क्या हो रहा है इस हर परिस्थिति में जो कॉमन है, हर परिस्थिति में है वो
0: चेंज.
1: चेंज. सी, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, परिवर्तन, परिवर्तन. एंड लाइक यू सेड, वी आर नॉट रेडी फॉर चेंज, क्योंकि हमारा एक
0: इतना फिक्स्ड है,
1: कंफर्ट
0: हाँ,
1: जोन.
0: जोन है,
1: तो
0: कंफर्ट जोन.
1: हर परिस्थिति एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चेंज है. यू नो, नॉट द मिनट आई जस्ट लुक एट इट लाइक दैट, चेंज, चाहे चेंज इन रिलेशनशिप, चेंज, चाहे फॉर मी इट कुड बी कि यू हैव चेंज्ड एज अ पर्सन. मैं आपको जो जानती थी इतने इतने साल, यू नो मेनी पीपल विल से, अब तो आप वैसे रहे
0: बदल
1: ही
0: गए.
1: नहीं, तो
0: हाँ,
1: चेंज, चेंज. या आप मेरे साथ इतने साल थे, आज सडनली आप मेरे साथ नहीं हैं, चेंज. मेरा एक जीवन जीने की एक शैली थी, एक लाइफस्टाइल था, सडनली मुझे वो क्रैश हो गया, चेंज. सडनली मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा, चेंज. सो एवरी स्टेप जो चीज मुझे हिट कर रही है वो है चेंज. एंड समवेयर मोस्ट ऑफ अस आर नॉट रेडी फॉर चेंज, बिकॉज वी आर समहाउ, क्योंकि हमने अपने आप को उस दायरे के अंदर, चाहे वो मुश्किल वाला भी दायरा था, चाहे वो दर्द वाला भी दायरा
0: तभी
1: था,
0: हम
1: लेकिन
0: एडजस्टेड थे.
1: हम एडजस्ट
0: हाँ,
1: कर चुके थे. यू नो, हम एडजस्ट कर चुके थे और हमें उसके साथ जीने की एक
0: आदत हो
1: आदत पड़ गई थी. इट वॉज माई हैबिट, इट वॉज हैबिचुअल, वेदर इट वॉज प्लेजेंट और नो वी डोंट नो, बट इट वॉज हैबिचुअल.
0: गई.
1: लेकिन जहां वो चेंज आया तो इट हैज हिट मी. अब जैसे ही चेंज आएगा, लेट्स लुक एट योर सेल्फ, यू आर स्टैंडिंग दैट साइड.
0: लेकिन
1: हाँ,
0: चेंज के लिए एक और चीज, जो अगर आप चेंज की बात करते हैं तो बहुत लोग ये कहेंगे कि चेंज फॉर गुड और चेंज फॉर बैड, यू नो, लाइक बहुत
1: चेंज,
0: चेंज, इज दिस चेंज फॉर गुड और इज दिस चेंज फॉर बैड.
1: चेंज इज चेंज ना, हाउ गुड और बैड आई विल मेक इट नो.
0: या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
1: जो यहां से चेंज आया, सी चेंज तो सिचुएशन से आ रहा है ना, चेंज बाहर है, या तो किसी व्यक्ति के अंदर या आपकी पोजिशन, चेंज बाहर से आ रहा है. गुड और बैड किस पे डिपेंड करता है?
0: मुझ पे
1: एट एवरी स्टेप जहां आपके सामने कुछ हिट करता है, इफ यू कैन जस्ट टेक आउट 1 मिनट एंड जस्ट स्टॉप एंड सी, इस समय क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है. हमेशा कुछ एक बातें होती हैं जो मेरे कंट्रोल में है, कुछ एक चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं
0: नहीं
1: है. डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, एनीथिंग. माई कंट्रोल?
0: नहीं
1: नो. वॉट इज इन माई कंट्रोल? चेक. फाइनेंशियल क्राइसिस, माई कंट्रोल? जॉब चला गया आज, माई कंट्रोल? नो. तो मेजोरिटी, 95% से ज्यादा परिस्थितियां जो आपको मिलने वाली हैं, जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कंफर्टेबल ही हो जाते हैं ना, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं.
0: उसको हमें
1: लेकिन
0: पता भी नहीं चलता कि वो चेंज हुआ है।
1: एक ट्रैफिक जैम में भी अटकना एक परिस्थिति आज, है ना. आप कहते हैं इतनी मुश्किल, इतने हाईवेज बने बने, जब तक बने तब तक वी आर स्टिल अगेन स्टक. सो अगेन यू आर स्टक इन दैट, बट इन योर कंट्रोल? नॉट इन योर कंट्रोल. वॉट इज इन माई कंट्रोल इन एवरी केस? क्या कंट्रोल में है और क्या कंट्रोल में नहीं है?
0: इवन माई थॉट प्रोसेस, सी आई वुड हैव सेड,
1: यस.
0: लेकिन वो भी तो कंट्रोल में नहीं होता,
1: हाँ.
0: क्योंकि वो जब हमें टेक ओवर कर जाता है, जैसे स्पेशली अगर किसी का जॉब छूटा, आई नो समबडी जिनको सडनली शी वॉज टोल्ड कि आपको 6 महीने पहले उन्हें टॉप का लीडर बनाया गया, मतलब कंट्री हेड, और विद इन 6 मंथ्स उन्हें बोला गया कि नहीं, यू नॉट डूइंग योर वर्क, आपको छोड़ना पड़ेगा। उसका सब कुछ उनका उस पर डिपेंड कर रहा था। वो डिप्रेशन सीप इन ऐसे करता है कि
1: बहन, तो एग्जैक्टली वही हुआ ना, ये सब कुछ आपका क्रैश कर गया. सपोज मेरे मेरे आसपास सब कुछ क्रैश कर गया. लेट मी लुक एट द वर्स्ट सिचुएशन दैट कैन हिट मी, एंड वो ये है कि एक पल में मेरा सब कुछ जो मैं समझती हूँ मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार भी, लेट से एक मिनट में सब कुछ खत्म हो गया. अगेन नॉट इन माई कंट्रोल, बट वॉट इज इन माई कंट्रोल इवन नाउ?
0: कि मैं उसको कैसे लेती हूँ सिचुएशन में।
1: बिकॉज फाइनली, लेकिन हम क्यों नहीं उस तरफ देख पाते कि वॉट इज इन माई कंट्रोल, क्योंकि हमारा सारा अटेंशन उन बातों के ऊपर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. आज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, सब लोग लेकिन आपस में बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं? सारा जो एनर्जी लग रही है वो किस पर है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड. प्रॉब्लम ही ऐसे, सिचुएशन ही ऐसे. टॉक अबाउट सोल्यूशन. अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, हो गया, लेकिन हम डिप्रेशन में चले गए. कौन सा लॉस ज्यादा बड़ा?
0: हमारा
1: ये किसने क्रिएट किया था?
0: हमने खुद
1: ठीक है, दुनिया में जिन लोगों ने जो किया सो किया, जिसकी वजह से मेरा सारा धन चला गया, लेट्स से वर्स्ट केस कंडीशन, लेकिन ये जो लॉस किया ये किसने क्रिएट किया? तो एक लॉस तो हुआ हुआ, ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो ये लॉस हुआ कि आई गो इनटू डिप्रेशन, कल को इफ आई गो इनटू डिप्रेशन, सपोज इट गेट्स वर्स एंड मुझे हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ, अब ये लॉस किसने किया? मैंने किया. अगर मैं अपने दर्द से बाहर नहीं निकल के आ पाती और मैं घर के लोगों के साथ उस बात को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन या झगड़े और वो सब करते रहूं और हम आपस में दूर हो जाएं, ये लॉस किसने क्रिएट किया? अब ये सब लॉस के सामने वो आपका फाइनेंशियल लॉस कितना बड़ा बैठता है?
0: और इनफैक्ट नो, यू नो व्हाट हैपेंस कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा लॉस होता है तो मैं ही चाहती हूँ कि एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि मेरा गुस्सा, मेरी फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड है। मेरे को जो हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टू मी।
1: फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. इफ आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग मी? एंड मे बी यू आर इन योर ओन पेन. यू सी, सो फॉर मी टू एक्सपेक्ट कि आप मुझे समझो, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही हूँ. तो इसलिए हर एक परिस्थिति में फिर भी येस द सिचुएशन इज वेरी बिग, क्वेश्चन इज कि अभी भी मेरे कंट्रोल में क्या है? मैं सारी अपनी अटेंशन उस पर फोकस कर दूं, इट्स लाइक मेरी एक चीज तो चली गई लेकिन तीन चीजें तो बची है ना. लेकिन क्योंकि मैं वो तीन चीजों का ध्यान न रख
0: कि वो
1: कर,
0: तो है ही,
1: हाँ,
0: उसको
1: फॉर
0: तो सोचा ही
1: ग्रांटेड
0: नहीं।
1: उनको लगती हूँ,
0: हाँ
1: आज मेरा पैसा चला गया लेकिन मेरी मन की स्थिति अभी भी ठीक है, मेरा तन अभी भी ठीक है, मेरा परिवार अभी भी ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया तो ये तो गया गया, साथ में कितना और नुकसान हुआ. क्यों नुकसान हुआ? सिर्फ क्योंकि आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन देयर. सिर्फ बिकॉज आई वॉज मोर, क्यों हुआ, क्यों हुआ, नॉट इवन लुकिंग एट द सोल्यूशन, ओनली लुकिंग एंड चर्निंग ओवर द प्रॉब्लम. सोल्यूशन हर परिस्थिति में है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली आपके सामने, कोई चैलेंज ही नहीं आने वाला जिसमें सोल्यूशन नहीं है. यस, इट जस्ट डिपेंड्स मुझे कितना टाइम लग जाता है उस सोल्यूशन तक पहुंचने में, और सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा? सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा? जब माइंड थोड़ा सा
0: हाँ, नहीं तो
1: साइलेंट
0: नजर,
1: हो,
0: यस
1: नहीं
0: नजर
1: तो
0: ही
1: मैं
0: आता है।
1: अपने दर्द में कौन सा सोल्यूशन दिखाई
0: ओहो
1: देगा? दर्द
0: यस
1: में तो सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई देगी, और जितना दर्द बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम इतनी भी होगी ना,
0: बहुत
1: तो वो
0: बड़ी हो
1: प्रॉब्लम
0: जाएगी।
1: बहुत बड़ी हो जाएगी, और प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती जाएगी, उतना हम सोल्यूशन से
0: दूर होते
1: दूर होते
0: जाएंगे।
1: जाएंगे। परमात्मा का जो ज्ञान हमें मिलता है राजयोग के द्वारा, उसका पूरा पर्पस ही ये है कि जैसे ही आप अटेंशन आपके कंट्रोल में जो है, एंड दैट्स ओनली वन थिंग, माई स्टेट ऑफ बींग, उस पर जैसे ही जाता है, तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटा देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम से बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कमजोर हो जाऊं, तो मेरे सामने, आफ्टर ऑल इट्स अ फाइट बिटवीन टू ना, प्रॉब्लम एंड मी, हम दोनों का आपस का संघर्ष है, ज्यादा शक्तिशाली कौन? लेकिन क्योंकि मैं इतनी कमजोर हो जाती हूँ, इतनी दर्द में चली जाती हूँ, तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं तो उसको देख के ही बैठ जाती हूँ।
0: इनफैक्ट यहां तो मुझे भी लगने लग गया कि हमें प्रॉब्लम कहना ही नहीं चाहिए। द वे यू सेड इट्स ओनली अ
1: एब्सोल्युटली,
0: चेंज।
1: इट्स द ओनली अ चेंज, इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ चैलेंज, उसको चैलेंज आप बोलो, बहुत बड़ी बात आ गई आपके सामने, आप उसको चैलेंज करके बोलो। प्रॉब्लम करके बोलते ही तो वो प्रॉब्लम ही एक लगने लगती है
0: एक
1: कि
0: मुसीबत थोड़ी ना, हजारों
1: हजार,
0: मुसीबतें।
1: यू नो, हमारी वोकैबुलरी भी ऐसे आ गई है। तो चेंज आएगा ही। देर इज ओनली वन थिंग, आई हैड रेड दिस समवेयर, वेरी ब्यूटिफुल, देर इज ओनली वन थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट, एंड दैट इज चेंज।
0: चेंज, यस
1: सो
0: आई
1: इट्स सो
0: हैड
1: ब्यूटिफुल। जब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि एक चीज है जो कभी रुकने वाली नहीं है, वो है परिवर्तन, अब उसको मैं संघर्ष करूं उसके साथ, इट्स नो यूज, जस्ट बिकॉज आई थॉट जैसे चल रहा था वैसे बहुत अच्छा था, ऐसे ही क्यों नहीं चलता रहता ये, व्हाई डज दिस हैव टू चेंज? तो वो मेरे बोलने से या मेरे सोचने से रुकने वाला नहीं है, बट जैसे ही चेंज सामने आएगा, नाउ व्हाट डज इट डिमांड फ्रॉम यू, क्या चाहिए आपको?
0: सच। मैं भी तो चेंज होनी चाहिए।
1: रिस्पॉन्स, एवरी चेंज, दिस चेंज कम्स
0: एक्शन
1: फ्रॉम यू,
0: रिस्पॉन्स।
1: रिएक्शन, राइट?
0: अच्छा, एक चीज मैंने और भी पढ़ी थी, जैसे आपने कहा कि दिस वन थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ, दैट इज चेंज, एंड उसके आगे ही था चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड। ये
1: इट इज, दैट
0: बहुत
1: वाज
0: बड़ा क्वेश्चन मार्क है
1: आगे,
0: लोगों के लिए।
1: यस,
0: सो इस पर हम एक्चुअली पूरी बातचीत करना
1: क्योंकि
0: चाहेंगे।
1: चेंज, व्हेन विल इट बी फॉर गुड? जब उसको आप प्रॉब्लम ना देखकर, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो, कि इस, क्योंकि वही तो परमात्मा हमें रोज बताते हैं कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत बहुत अच्छा। अब इम्पोर्टेंट मेरे लिए सिर्फ ये है कि मुझे इस सेंटेंस को, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य है, किसी मनुष्य आत्मा के नहीं, तो परमात्मा अगर ये स्टेटमेंट हमें दे रहे हैं, दैट मीन्स इट्स द ट्रूथ, दैट इज द फेथ। नाउ इफ आई रिजेक्ट द स्टेटमेंट, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भी हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा, देन इट्स ओवर फॉर मी, मैं उसको उस दृष्टिकोण से लूंगी ही नहीं। लेकिन जहां ये फेथ है कि परमात्मा ने ये कहा है, और ये सेंटेंस ऐसा है जो मुझे लगता है हर एक को पता है, यू गो एनीवेयर, इट्स रिटन एवरीवेयर कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द गुड, लेकिन इसको बिलीव कौन कर रहा?
0: कोई नहीं कर पा रहा है।
1: इसमें फेथ कितना है कि हाँ जो हो रहा है वो अच्छा? तो लेकिन परमात्मा के महावाक्य है, अगर मैं उस समय, जिस समय मेरे सामने वो चैलेंज आता, मैं अगर वो महावाक्य को अपनी स्मृति में ले आऊं और उसके बेसिस पे अब रिस्पॉन्स क्रिएट करूं, तो वो सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम ना लगकर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि अब इसमें मुझे क्या करना है। ये भी अग्री, एब्सोल्युटली अग्री, कि जो भी सिचुएशन आज आ रही है, ये छोटी नहीं है, ये बड़ी है, कल को और बड़ी भी आ सकती है। लेकिन डज दैट मीन कि आई विल कंटिन्यू टू लिव माई लाइफ इन पेन, और इज देयर अनदर चॉइस? दैट इज
0: पेन
1: वॉट इज
0: एंड फियर
1: इम्पोर्टेंट,
0: ऑल्सो,
1: ऑल द सेम थिंग,
0: कंटिन्यूअस डर सचिवानी। आज की जो बातचीत हमने की है, सिचुएशंस हमारे सामने वो हैं जो हर व्यक्ति के जीवन की हैं, और कहीं ना कहीं एक ये परिवर्तन कि ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम, ये मुसीबत, ये सरदर्द ना होकर एक चेंज, एक परिवर्तन है। आगे हम जरूर अपने आने वाली श्रृंखला में जरूर देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे है, कैसे इस चैलेंज में हमें देखना है कि ये शुभ के लिए कैसे है, क्योंकि परमात्मा का महावाक्य है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल खरा और सच्चा है। ऐसे सचिवानी आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: बिल्कुल, आज जहाँ शुरुआत हमने की थी, सचिवानी ने यही हमसे रिक्वेस्ट की थी, आग्रह किया था कि हम इस जो पूरी बात हो रही है ये सिर्फ बात के लिए नहीं है, हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा है, उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास जरूर करें आज ही से। कल का भी क्यों इंतजार करें, आज ही से जो सिचुएशन अभी मेरे मुझे तंग कर रही है या जो सिचुएशन कल मेरे सामने आ सकती है, मेरी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू हो सकता है मेरे बॉस के साथ जहां ये तय होना हो कि मैं किस तरफ जाऊंगा, या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी बात हो सकती है जो डिसीजन लेना हो, अगर हम उसे एक चेंज के रूप में, एक परिवर्तन के रूप में एक्सेप्ट कर ले, गुड और बैड हम बाद में देखेंगे, आने वाले एपिसोड्स जो हैं उसमें हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे कि उसमें गुडनेस क्या है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन रही हो, और उसको हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये बातें भी जानेंगे। लेकिन आज के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसे अपने जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करके जो आप अनुभव करते हैं वो हमारे साथ शेयर करें। उसके अलावा अगर आप के पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है, आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर्स पर जा सकते हैं और अपने सवालों के जवाब तलाश सकते हैं। अगर आप नजदीक के सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है कि जीवन में कोई भी परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मुसीबत जिसे हम अभी तक मानते आ रहे हैं, वो एक चैलेंज है, एक परिवर्तन है। इस थॉट को अपने साथ रखें, आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ।

0: अहो ऐकलत का
1: पुणेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो खुश रहो खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। कहते हैं कि मनुष्य आदतें जब बनाता है तो वो अपनी सहूलियत के लिए बनाता है और कभी भी उसे बदलने की हिम्मत या क्षमता रखता है। लेकिन आज के इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, उसमें ये भी बात नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं हम अपनी उन्हीं आदतों के अधीन होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आदतों ने हमें ओवरटेक कर लिया है, ओवरपावर कर लिया है और हम खुद को, स्वयं को उसके आगे हारा हुआ मानते हैं और फिर उसकी स्वाधीनता स्वीकार करके खुद उसके अधीन हो जाते हैं या फिर कहें तो उसके आदि हो जाते हैं। लेकिन हमारी इस श्रृंखला में हमारी ये कोशिश है कि हम उन कारणों को जानें कि क्या ऐसा हो जाता है कि हमारी वो आदतें हम पर हावी हो जाती हैं और क्या हम उन आदतों को छोड़कर नई आदतें यानी पॉजिटिव जो हैबिट्स हैं उन्हें अपना सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ खास मुंबई से हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हर बार की तरह हमारी हम सफर है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बहुत से हमने ऐसी आदतों के बारे में बात की है इस पूरी श्रृंखला में। अभी तक हमने बहुत मोटी मोटी उन व्यसनों की बात की, उन एडिक्शंस की बात की जिनसे आज हर व्यक्ति जूझता नजर आता है और कई बार हमने ये भी देखा कि एक्सेप्ट ही कर लेते हैं कि यही सच्चाई है। ना सिर्फ अगर हम नहीं जूझ रहे तो हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा है जो इस आदत का शिकार होता है, चाहे वो स्मोकिंग की बात की थी हमने, चाहे वो हमने ड्रिंक्स की बात की थी, इवन ड्रग्स तक की भी बात हम कर चुके हैं। जो बड़ी बात सामने आई थी वो यही थी कि कहीं ना कहीं डिसीजन हमने अपने हाथ से छोड़कर और उसके आदि बनते जा रहे हैं। पीयर प्रेशर भी उसमें बहुत बड़ा कारण था, हमारे जो अपने हैं वो भी सहायता कर सकते हैं इसे छोड़ने के लिए। स्मोकिंग की बात की थी, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे पर्यावरण पे थे। निकोटीन या तंबाकू या स्मोकिंग का जो एक और एस्पेक्ट है वो है गुटखा। 2 रुपए का वो पाउच गुटखा हर पॉकेट में हर व्यक्ति के पास मिल जाता है, किसी भी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स होते हैं। गुटखा को हम क्यों एडिक्शन नहीं मानते हैं?
1: ऐसे वो सबसे बड़ा एडिक्शन है और इनफैक्ट ट्रेजेडी जो है कि भी भारत में पहले भी था अलग अलग रूप से तो हम स्मोक करते थे, लेकिन मेजर जो है वो वेस्टर्न कल्चर हमारे पास आया है कि हम ज्यादा वो जैसे स्मोकिंग करते थे ऐसे करने लगे। लेकिन देखो विदेशों में कोई भी गुटखा नहीं खाता है, चुइंग टोबेको इज ऑलमोस्ट जीरो इन अदर कंट्रीज, तो यही बताता है कि भी हम कितने ज्यादा ही आदी हुए। और गुटखा है वो उतना ही डेंजरस है
0: यहाँ, क्योंकि ये मिथ में बहुत रहते हैं हम लोग कि गुटखा तो जो है वो स्मोक तो नहीं कर रहा या ड्रिंक तो नहीं कर रहा, गुटखा ही तो खा रहा हूँ। लेकिन क्या है, क्या होता है जब ये तंबाकू मुंह में जाता है?
1: वो भी तंबाकू ही है तो उसमें भी निकोटीन है, वो जो सारी है एक्सेप्ट भी कोल टार, कार्बन मोनोक्साइड, वो जो चीजें हैं वो गुटखे में नहीं है। और दूसरी हार्मफुल इफेक्ट है गुटखे में कि जब उसे चबाते हैं तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है और व्यक्ति मुंह को खोल नहीं पाता है। शुरू में तो उसे खोलने में दिक्कत होती है, फिर शायद 3-4 इंच खोल पाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे कि जो एक उंगली भी अंदर डाल नहीं सकते, यहाँ तक कि खाना भी ऐसे खाते कि भी चम्मच में लेंगे, मुंह में डालेंगे, उल्टा करेंगे, फिर सीधा करके फिर निकालनी पड़ती है। आप अगर उनकी कंडीशन देखो तो आपको सचमुच एक सिंपथी होगी।
0: बिल्कुल, मतलब इट्स एक्टिंग द मोस्ट हॉरिफाइंग एस्पेक्ट अगर जिंदगी का देखें तो। सिस्टर शिवानी, ऐसा क्या है, मतलब हम इसको स्वीकारते ही नहीं? देखिए, हमने स्मोकिंग की बात की थी तो चलिए हम फिर भी मान लेते हैं, घर वाले भी मान लेते हैं, हम खुद भी कहीं कहीं अगर मैं स्मोक करती हूँ मुझे पता होता है कि हाँ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इवन ड्रग्स की बात की थी, ड्रिंक्स के मामले में भी हमें मालूम होता है। गुटखा को हमने इतना आसान क्यों मान लिया है? इवन विमेन भी जो स्मोकिंग और ड्रिंक्स के बारे में फिर भी 2 बार सोचते हैं, वो भी गुटखे के 3 दाने लेने में कोई और उसे फांकने में कोई अपनी परेशानी का सबब नहीं मानती है। क्यों इसे हम एक एडिक्शन के रूप में नहीं देखते हैं?
2: एडिक्शन नहीं भी देखें लेकिन हार्मफुल तो है ना, तो एक हार्मफुल पदार्थ हम अपने अंदर क्यों डाल रहे हैं? कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट में वो जो परखने की शक्ति है राइट और रॉन्ग, वो या तो कम हो चुकी है या रॉन्ग पता होने के बावजूद भी जैसे कि हम बहुत बेपरवाह हो चुके हैं अपने बारे में। हम क्या नहीं जानते, हम सब कुछ तो जानते हैं। हमने नॉनवेज की बात की थी, हमने ये सारी जो बातें की, हमको सब पता है कि इसके क्या नुकसान है, लेकिन फिर भी हम उसको अपने अंदर डाल रहे हैं। वैल्यू फॉर माई ओन लाइफ, आई डू नॉट वैल्यू माई ओन लाइफ, क्योंकि इसकी रियल वैल्यू न जानने के कारण हम सोचते हैं जितना है उसको कम से कम इस चीजों से इंजॉय करें। ये हमारे स्टिमुलेंट्स हैं एंजॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, तो उसका अगर कोई नुकसान भी हो रहा है तो हम बहुत ज्यादा उस नुकसान की तरफ नहीं सोच रहे, क्योंकि जीवन में खुशी चाहिए.
0: और कहीं ना कहीं हम इस कगार पर पहुंच गए कि खुद को ही नकार दिया.
2: हाँ, बिल्कुल वैल्यू नहीं है ना. हाँ, अपने हाँ, जीवन की तो बिल्कुल वैल्यू नहीं है. जब हम कहते हैं अपने लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते, कहते 10 मिनट अपने लिए निकालो, टाइम नहीं है. लैक ऑफ वैल्यू फॉर द सेल्फ, बिल्कुल अपने जीवन की इम्पोर्टेंस नहीं है. तभी तो अपने शरीर की भी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके अंदर ये सारा डाल रहे. जैसे एक अज्ञान की नींद में सोए हैं और चलते जा रहे हैं.
1: शिवानी बेन, एडिक्शन तो है ही है.
2: एडिक्शन की
1: डेफिनेशन भी

0: आज गरीब लोग भी खाते हैं, जो शायद बच्चों को बादाम नहीं खिलाएंगे, है ना, अच्छे से दूध नहीं पिलाएंगे, परंतु गुटखा आराम से खा रहे हैं।
1: तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोसेस है जो गुटके का, अगेन आपके पास आते हैं सिस्टर शिवानी, की जब हमने बात की स्पिरिचुअलिटी की, जब हमने बात की अवेयरनेस की फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड इटसेल्फ, यू नो, अगर 10-11 साल में जहां ये लतें भी पड़ रही होती हैं, इवन स्कूल्स में भी कॉलेजेस में भी गुटका जो है वो मुझे लगता है माँ बाप भी शायद उसको परेशान नहीं होते उसको देख के कि गुटका खा रहे हैं। तो यहाँ ये जो जब अवेयरनेस अगर शुरू में ही क्रिएट हो जाए, क्योंकि हम बात हर बार प्रिवेंशन की भी करते आ रहे हैं, सो हाउ माई अवेयरनेस विल हेल्प मी नॉट टू गेट इन टू दिस होल हैबिट?
2: टोटली, इट विल नॉट टेक मी टूवर्ड्स इट एट ऑल। अगर बचपन से ही पेरेंट्स ने वो अपब्रिंगिंग में वो बात सिखाई होगी, उसके नुकसान बताए होंगे और खुद उस जीवन शैली को फॉलो कर रहे होंगे, तो बच्चा भले उसकी क्लास में सारे ले रहे हो वो चीज को, उसके बिलीफ सिस्टम में इतना इनग्रेन्ड होगा कि वो उस तरफ जाएगा ही नहीं, दैट इज फॉर श्योर। पीयर प्रेशर इज एन एक्सक्यूज, इट्स अ रियल एक्सक्यूज कि नहीं पीयर प्रेशर में तो आप सब कुछ कर लेते हैं। कितने बच्चे हैं जो बावजूद सारे पीयर प्रेशर के नहीं करते हैं ना, तो व्हाट इज इट दैट दे हैव, व्हाट इज इट दैट दे हैव व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन? बहुत स्ट्रांग अंदर विल पावर एंड बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन परिवार में, जो पूरा वैल्यू सिस्टम जो परिवार में डला है, दे विल नॉट गो टुवर्ड्स दैट।
0: क्या होता है शिवानी बेन ने जो कहा ना कि आध्यात्मिकता से हमें अपनी एक अलग से पहचान मिलती है, अपनी आइडेंटिटी होती है कि आई एम यूनिक, नो आई एम स्पिरिचुअल। इसके लिए भले 99% ले रहे हैं तो भी वो बच्चा जो स्पिरिचुअल बातों को अपनाए उसको टच भी नहीं करेगा।
1: Definitely, that really makes a lot of difference कि आपकी अपनी आइडेंटिटी अगर पहले से ही है। यहाँ एक हम कहते हैं, हर बार बात ही कर रहे हैं, बार बार हर एडिक्शन के ऊपर जब बच्चों की बात आती है, फैमिली फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, कितने दिनों से हम जब बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आज है, एक पेरेंट लेता है, खासकर अगर हम देखें फादर या मदर भी हो सकते हैं, वो स्मोकिंग में है, ड्रिंक्स में है, शाम को एक पैक ड्रिंक का जरूर लेंगे ही लेंगे, आदत है उनकी, कोई बात नहीं, ये गुटखा है वहां पैकेट पड़ा रहता है, ये माँ जो है वो चाहती है कि ना हो किसी तरह से, क्या हो, फादर को नहीं समझाया जा सकता, फादर नहीं समझ पा रहा, क्या एज वन सिंगल पेरेंट कैन ऑल्सो हेल्प द चाइल्ड? दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू आज के इस दौर में, बिकॉज हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, हम पहले भी रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कर चुके हैं, कहीं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेकर चल रहे हैं, और अगेन मेरे लिए वैल्यू अलग है, पूरे परिवार के लिए वैल्यू अलग है। तो आज जब बच्चे को वो गुटखा दिख रहा है ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ, उसको उठा के वो डालने की कोशिश करेगा, क्या एक सिंगल पेरेंट उस बच्चे को मोटिवेट कर सकती है उससे परे रहने के लिए?
2: एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट इज पॉसिबल, क्योंकि आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो बन सकते हैं, एक रोल मॉडल आप बनकर, उल्टा और ही शायद बच्चे के अंदर आप वो प्रेरणा ला सकते हैं कि यू नो सी व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट। जब हम
1: यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये आ जाता है कि अगर वो समझाएगी कि फादर तुम्हारे गलत कर रहे हैं, सो उनको ये लगेगा कि क्या मैं फादर के अगेंस्ट तो नहीं भड़का रही। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम माओ के सामने जो आज की जो जनरेशन में है वो आ रही है, कि जब मैं अपने बच्चों को ये बताऊंगी कि देखिए फादर ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं या गुटखा लेते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट है कि कहीं मैं उनके अगेंस्ट तो नहीं कर रही हूँ। सो हाउ टू क्रिएट दैट बैलेंस?
0: जनरली तो ये नहीं होता है, इन जनरल देयर में भी रेयर कुछ होंगे ऐसे 1-2%, परंतु अधिकतर तो माँ तो एक्सट्रीम अगेंस्ट होती है। मैंने कहीं एक डॉक्टर को मैं पहचानता हूँ, थोड़ा ही बहुत थोड़ा पीते और कभी उसने ऊंची आवाज से भी नहीं बोला, उतना एक आध पैक लेके कभी ऊंची आवाज से भी उसने नहीं बोला, बिल्कुल एकदम नॉर्मल होते हैं। लेकिन उनकी पत्नी को इतना गुस्सा आता है कि उसकी पिटाई कर देते हैं। उस स्टेज में एक पैक भी लिया है तो भी उसकी पिटाई कर देंगे, मतलब महिलाएं तो एकदम अगेंस्ट है।
1: नहीं, लेकिन अगर आज के सर्कमस्टांसेस में ज्यादातर देखें, मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, हस्बैंड्स पार्टीज में पी ही रहे हैं, रात को भी शाम को भी, कई लोगों ने अपनी दिनचर्या बना रखी है कि लेते ही है, ऐसे में ये जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट की बात की कि लेडी के सामने ये कॉन्फ्लिक्ट है, माँ के सामने, कि हाउ टू डील विद इट?
2: आई थिंक बट स्टिल पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी आपको, पूरी नॉलेज एक बच्चे को देनी ही पड़ेगी कि व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, एंड प्लस एम्पावर, उस बच्चे को इतना एम्पावर करे ताकि वो उस रास्ते पर या उस चीज को टेस्ट करने की भी जरूरत न समझे, इतना हम उसको सशक्त बनाए। एंड आई थिंक बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ जो डायलॉग है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए, कि हम जो कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे बच्चे की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो जहां हम इतना सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते

0: क्या हम ये एक चीज अपने लिए नहीं तो फिर उन्हीं के लिए गिव अप कर दें, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड. तो बच्चे में दो तरह के हमें दिखाई देते हैं, एक जो अपने घर में बहुत ज्यादा इस चीज को देखते हैं कि उस चीज से नफरत करते हैं, यू नो उन्हें स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से नफरत होती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा उस चीज को अपने घर में देखा, उसकी वजह से झगड़े देखे, तो वो अपनी लाइफ में कभी नहीं टच करेंगे. और लेकिन दूसरे वो जिन्होंने उसको बहुत हेल्दीली एक्सेप्ट होते हुए देखा अपने घर के अंदर, एंड फिर उनके लिए वो एक बहुत नॉर्मल चीज है.
1: नहीं तो फिर झगड़े होने चाहिए. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग.
0: नहीं नहीं, तो दैट्स व्हाट आई सेड. दो तरह का इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर पड़ सकता है, या तो एकदम अवर्जन या फिर इट्स वेरी कॉमन एंड वेरी नेचुरल फॉर देम.
2: ये इवेंट इसीलिए कहते हैं कि परिस्थिति आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, आप उस परिस्थिति में आपका रिएक्शन क्या है इम्पोर्टेंट है. इसी किस्से में अगर माँ बच्चे को यह समझाए कि फादर कोई भी कारण से ले रहे हैं लेकिन बेटा इतनी बुरी चीज है तुम उसको छूना तक नहीं, और अगर बेटा माँ से अटैच है क्योंकि बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है.
0: And I think the men need to understand कि peer pressure या social pressure या party circle इस process में अपना वो maintain करने के लिए कि सब friends ले रहे हैं, उस चीज में वो अपनी family life पर कितना negative impact डाल रहे हैं. आप friends को खुश कर रहे हैं और फैमिली को.
1: और जो कितना इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट बच्चा जो जिस एज में है, हम कहीं ना कहीं हम हर बार ये मानते आ रहे हैं कि जिम्मेदारी तो हमारी है,
0: और कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को कहाँ फिर हमें राइट रह जाएगा कुछ भी चीज के लिए रोकने के लिए. अगर वो कोई और राह पर भी चलता है, हमें क्या हक रहेगा उसे रोकने के लिए. जब हम ऐसे कई काम कर रहे हैं जो उनके कहने के बावजूद हम नहीं रोक पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिसिप्लिन करने का एक्ट है वो खत्म हो जाएगा. और हम जिस चीज के लिए रोकेंगे भी तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू हमारे बोल की फिर रहेगी नहीं, क्योंकि हम ही सही राह पर नहीं.
1: तो ये हमें एक्चुअली डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा.
2: तो हर एक फादर को ये सोचना चाहिए कि समझो मैं एक दो पैक भी ले रहा हूँ, बच्चा 11-12 साल का हो गया कि उसको आप बाजू में बिठा के पिलाएंगे कि बेटे तू भी पी अच्छी चीज.
1: मैं यही तो कह रही हूँ कि फादर ये कहता है कि पहला स्मोक, पहला फैग, पहला कश मेरे साथ लेगा मेरा बेटा, या मैं पहला ड्रिंक मैं साथ बैठकर पिलाऊंगा.
0: क्योंकि इस चीज को हमने इसलिए सिग्निफाई कर लिया क्योंकि ये हमने सोचा ये बॉन्डिंग की निशानी है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. सी, जहां इंटरनल बॉन्डिंग नहीं होगी वो हॉलोनेस है, हम ये बाह्य चीजों का आधार ले लेते हैं टू शो पीपल एंड इवन टू सेटिस्फाई माई ओन सेल्फ कि नहीं हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, देखो हम कितने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, कि हमें छुप के कुछ भी करने की जरूरत नहीं.
1: हमें छुप के मतलब हमें खुद पता है कि हम वो नेगेटिव चीज कर रहे हैं तो हम नेगेटिव भी साथ साथ कर रहे हैं. डेफिनेटली समवेयर वी नो दैट.
0: ये अपने आप को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश है.
2: कन्विक्शन तो ये होना चाहिए कि दो पैग अल्कोहल भी हार्मफुल है. जो आज डॉक्टर्स भी रिसर्च कर रहे हैं.
1: डॉक्टर पटेल, इसी बात पे हम आ रहे हैं कि अभी तक हमने जो बातें की हैं, चाहे वो स्मोकिंग की है चाहे वो गुटके की है, वो ऐसी लगती है कि सिर्फ उससे कुछ अपने होश नहीं खोते हैं हम, उसके लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो हेल्थ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन हम नॉर्मल बिहेव करते हैं. ड्रग्स हमारे आसपास कोई ज्यादा हमें नहीं दिखते हैं जो ड्रग्स लेते होंगे. एल्कोहलिज्म एक ऐसा इतना बड़ा अभिशाप इस वक्त सोसाइटी का बन चुका है, जहां घर घर में अल्कोहलिज्म का एक प्रकोप कहा जाए वो है. और उसमें होता यह है कि आप अपने होश खो बैठते हैं, कहीं ना अपना अपने ऊपर से आपका जो कंट्रोल है वो खराब हो जाता है. उसका जो इफेक्ट है बॉडी पे, उसके बारे में हमें डिटेल में बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्रकोप समाज में नजर आता है.
2: सबसे पहली तो ये बात है कि भी जो आज क्यों ज्यादा ही शराब पीने लगे हैं, क्योंकि हमारे में मस्तिष्क में कहीं इनहिबिटरी मैकेनिज्म्स है कि जिसके कारण हमारे में शाइनेस आती है, हम कॉन्फिडेंटली बोलते नहीं, ओपन अप नहीं होते हैं, ऐसी कई बातें हैं. जब आप शराब पीते हैं तब वो जो इनहिबिशन है वह इनहिबिट हो जाता है. वह जो इनहिबिशन है वह कट ऑफ हो जाता है और उसके कारण व्यक्ति फ्री फील
1: एग्जिबिट कर देते हैं.
2: हाँ, वो व्यक्ति फ्री हो जाता है ना, फ्रीली बोलने लगता है, आराम से उसको लगता है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, परंतु वो टेम्पररी फेस है. एक तो ये इनहिबिशन है, वो इनहिबिशन दूर होने से आपको अच्छा लगता है. फिर जब है वो लीवर पर बहुत बड़ा डैमेज होता है. ये 100% सिद्ध हुई बात है कि जो व्यक्ति अगर आप 4-5 साल भी थोड़ी थोड़ी भी शराब पीते रहो तो लीवर सिरोसिस होने लगता है. ऐसे पेनक्रियाज की जिसका डायबिटीज के साथ संबंध है, तो पेनक्रियाज पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है. पेट

0: पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये एसिडिक है और एसिडिटी अल्सर आदि निर्माण करेगा। और सबसे जो इफेक्ट है वह है ब्रेन पर, क्योंकि एक तो ब्रेन पर ये इनहिबिशन हुआ और आगे चलकर के एक बीमारी है वर्निक्स एनकेफेलोपैथी, कि जिसके अंदर मेमोरी लॉस हो जाती है, व्यक्ति धीरे धीरे सचमुच एक अपाहिज की तरह जीवन व्यतीत करता है, वर्निक्स एनकेफेलोपैथी। और दूसरा एक है कोर्सकॉफ साइकोसिस, एक पागल की तरह व्यक्ति, पर आगे के स्टेजेस है, परंतु क्यों हम उसके बीच बो रहे हैं? थोड़ी भी शराब लेकर के आप उसी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। और एक चीज जो बिल्कुल एक्सेप्टेड है कि एटलीस्ट 50% एक्सीडेंट्स है वो शराब पी हुई हालत में होते हैं, कोई भी एक्सीडेंट्स को आप लीजिए। तो इन सबको साथ में अगर होलिस्टिकली देखा
1: जाए, समाज के लिए भी फिजिकल अब्यूज सबसे ज्यादा, परिवारों का टूटना सबसे बड़ा कारण, चाहे हम झुग्गी झोंपड़ी वर्ग में जाएं, चाहे हम उस निम्न वर्ग में जाएं, या फिर आज उच्च वर्ग में किसी भी वर्ग में चले जाएं, सबसे बड़ा कारण, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फिजिकली वायलेंट हो जाते हैं
0: अल्टीमेटली, होते
1: वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। सिस्टर शिवानी, बहुत सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं डिटॉक्सिकेशन के, और बहुत बार बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो अल्कोहलिज्म को दूर करने में बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर यही देखा गया है कि शायद रिजल्ट्स उतने नहीं आते हैं। हाउ मच स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प एक्चुअली इन द रियल सेंस, क्योंकि अल्कोहलिज्म में कहीं ऐसा लगता है कि हाथ में अपने नहीं रह गई है पावर, हाउ मच स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प?
2: स्पिरिचुअलिटी एक ओवरऑल हीलिंग करती है, आत्मा पर बहुत सारे घाव हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस के, प्रेजेंट चैलेंजेस के, कुछ अपनी आदतों के बहुत सारे घाव हैं। तो अध्यात्म जो हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं मेडिटेशन के साथ, वो सिर्फ हमारी ये आदत को नहीं छुड़ाती है, वो तो सिर्फ एक सिंपल चीज है, वो तो जल्दी से छूट जाती है, अल्कोहल स्मोकिंग ये तो कुछ दिनों में छूटती है वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, लेकिन ये हमारे डीप घाव जो लगे हुए हैं उसको हील करती है। फिर जब वो हील होने शुरू हो जाते हैं, आपका वापस रिलैप्स होना वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका रूट सॉल्व हो गया ना। तब अभी नॉर्मल क्या होता है कि अगर आप बिहेवियरल लेवल या इवन बीमारी का समझकर आप छोड़ते भी हैं, तो फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आपको कोई सोल्यूशन ही नहीं दिखाई देता और फिर आप उसकी तरफ खींचते हुए चले जाते हैं, क्योंकि अंदर का जो खालीपन है वो तो भरा नहीं। भले बाहर से समझ कर छोड़ना चाहते थे, छोड़ पाए, लेकिन जब अगली कोई चैलेंज आई, तो दैट्स व्हाई इनर एम्पावरमेंट, ये जब आप साथ में करेंगे, देयर इज नो वे कि देयर विल बी अ रिलैप्स, क्योंकि परिस्थितियों को फेस करने की ताकत आ गई है। तनाव, गुस्सा जो एक कॉमन था अभी तक, वो फिनिश होता गया धीरे धीरे, डिप्रेशन ये सब कभी अनुभव नहीं होंगे, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? वेरी हेल्दी, बिकॉज मेडिटेशन से आप अपने माइंड के मास्टर बनते जा रहे हैं, तो नाउ यू नो हाउ टू क्रिएट योर हैप्पीनेस, और अगर आप अपनी हैप्पीनेस एक बार खुद क्रिएट करनी शुरू कर दी है, यू डोंट नीड एनीथिंग
1: व्हेन वी अंडरस्टैंड द टेक्निक एक्चुअली, क्योंकि उसके बाद के जो सुबह उठ के जो हालात होते हैं, एक्चुअली पीपल डोंट लाइक इट,
2: राइट,
1: जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं अल्कोहलिज्म का, तो खासकर ये देखा गया है कि उसके बाद के जो उनके हालात होते हैं, दे आर एक्चुअली दे देमसेल्फ फील वेरी बैड, उनको खुद को बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर पटेल, दो
0: मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी आज अप्रोचेस है, जैसे एक बहुत ही फेमस अल्कोहलिक एनोनिमस, नार्कोटिक एनोनिमस भी, वहां आप देखेंगे उनके 12 स्टेप्स माने गए
1: जी।
0: वो 12 स्टेप सारे के सारे स्पिरिचुअल है। कुछ एक स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे सबसे पहले तो कहते हैं कि हम ये स्वीकार करते हैं कि मेरे में ये बहुत बड़ी समस्या है और मैं शक्तिहीन हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अल्कोहल पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। फिर दूसरी बात बताते हैं कि भी मेरे से कोई बड़ी शक्ति ही मुझे मदद कर सकती है, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि मेरे से कोई ज्यादा पावरफुल शक्ति मुझे इस व्यसन से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी। तीसरा कि भी परमात्मा को जैसे भी मैं मानता हूँ, उस रूप से मैं परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ कि परमात्मा मुझे इस व्यसन से मुक्ति दिलाएंगे। फिर कि भी मैं अपनी सारी कमियां है परमात्मा के सामने रख रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरे में यह कमियां हैं, यह शक्तियां हैं, और वह मैं परमात्मा के सामने रखता हूँ, उससे मुझे शक्ति मिलेगी। इस प्रकार से मैं मदद को मांग रहा हूँ, नहीं प्रतिदिन मैं प्रेयर कर रहा हूँ, सारे आप 12 स्टेप्स देखेंगे तो उसमें आध्यात्मिकता ही आध्यात्मिकता।
2: अब इसी को हाँ मेरे को लगता है थोड़ा सा हम जैसे डिफरेंटली लेते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, यू नो, ये सबसे पहली चीज हमें मिली कि मैं आत्मा का ओरिजिनल गुण ही शक्ति है। तो अभी तक जो मैं अधीन था, अभी तो कर्म इंद्रियों के भी अधीन या कोई पदार्थों के भी अधीन, वो खत्म हो जाएगा जब रोज सवेरे उठकर हम 10 मिनट के लिए भी इस तरह बैठे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा की मैं संतान हूँ, तो मेरे अंदर कमजोरी ये हो नहीं सकती है। तो अपने आप, और जब हम वो कनेक्ट करते हैं मेडिटेशन में, तो परमात्म शक्तियां सारी मांगनी नहीं पड़ती है, वो तो अपने आप ही सारी आत्मा के अंदर भरती जाती है, अपने आप एम्पावरिंग हो जाती है। मेन चीज है सोल इतनी अपने आप को चार्ज्ड फील करती है कि उसको कोई एक्सटर्नल स्टिम्युलेंट की जरूरत नहीं है चार्ज होने के लिए। इनफैक्ट हमें समझ में आने लगता है फिर कि ये सारे जो स्टिम्युलेंट्स थे ये हमें डिस्चार्ज करते हैं, ये हमें डी एनर्जाइज करते हैं, तो हम अपना नुकसान कर रहे थे, देन व्हाई वुड वी गो टुवर्ड्स इट।
0: राजयोग एक स्टेप अहेड है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भी वहां पर अल्कोहलिक एनोनिमस में कहते भी मैं पावरलेस हूँ, यहाँ पर पहले ही स्टेप में पावर भरती है
1: कि मेरा मूल जो है वो पावरफुल है, पावर है, उसके बाद अगर आज मैं हो भी गया हूँ आई कैन एक्चुअली अगेन रीच दैट लेवल।
0: और परमात्मा से शक्ति लेने की बात तो राजयोग में भी है ही है कि मुझे परमात्मा के साथ डायरेक्ट संबंध जोड़ करके उस पावर को अपने आप में भरना है। और राजयोग की आप अगर पॉजिटिव थॉट्स भी देखेंगे, टेक्निक अगर आप देखो राजयोग की, सारी वही है कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, परमात्मा शक्ति के सागर है, उनसे मुझे शक्ति मिल रही है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव प्रोसेस ही सारा हमें मदद करता है व्यसनों से मुक्ति दिलाने।
1: आई थिंक ये तो मैं बिल्कुल पूरे अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ कि रोज का किया हुआ ये अभ्यास कहीं ना कहीं हमारे अपने आत्मबल को बढ़ा देता है। जो शक्ति को मैं फील करना चाहती हूँ कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो एहसास होने लगता है, अनुभव होने लगता है। डॉक्टर पटेल, चलते चलते आज की इस पूरी बातचीत में एक बात हम ये जानना चाहेंगे, हमने जितने भी व्यसनों की फिजिकल एस्पेक्ट की तरह जो बड़े बड़े व्यसन थे, चाहे वो ड्रग एडिक्शन था, चाहे वो स्मोकिंग थी, चाहे वो गुटखे की बात है, ड्रिंकिंग की बात है, एक बार किया गया या रोज रोज किया गया, दोनों में से क्या सभी सही है, दोनों में से कोई भी सही है?
0: बोथ आर इक्वली हार्मफुल, क्योंकि एक बार भी किया तो आगे चल के आदत हो जाएगी, कहीं बार आपके पास समस्या आई तो वही चीज आपको याद आएगी, तो इसके कारण बेस्ट तो ये है कि एक भी बार नहीं करना। और जो लोग एक्सट्रीम एडिक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, उनमें कई बार फिर हमें यह भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भी उनकी क्वांटिटी अगर बहुत कम हो गई तो भी यह अच्छा है, बेस्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक तो पहले जो घर में आकर के तोड़ फोड़ करते थे, मारते थे, वह सारा खत्म हो गया, तो उसे भी आप साइकियाट्रिस्ट कुछ हद तक एक्सेप्ट करते हैं, परंतु गोल तो यही होना चाहिए कि मुझे टोटली उसे छोड़ना।
1: किसी
0: जब तक आप कम्प्लीटली नहीं
1: छोड़ क्लीनलीनेस की जो बात है, कन्वर्जन की, ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। जैसे शिवानी, कई बार जो हम ड्रिंक्स की बात करते हैं वो पीयर प्रेशर में, सोशल प्रेशर में शुरू करते हैं, कई बार डिप्रेशन में शुरू करते हैं, दोनों के अलग अलग भावनाएं होती हैं जब करते हैं, छोड़ना दोनों में ही आसान है?
2: बहुत आसान है। एंड आई वुड से एनीवन वाचिंग दिस प्रोग्राम नाउ, अगर कहीं भी थोड़ा भी मुश्किल लग रहा है, जस्ट वॉक अप टू द नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर एंड जस्ट गो देयर फॉर अ फ्यू डेज। बस थोड़े से दिन जाइए, मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कीजिए, आपको एक बहुत पॉजिटिव चार्ज्ड मेडिटेशन रूम मिलेगा, बहने मिलेंगी जो आपसे इसकी विधि को आपके साथ शेयर करेंगी सिर्फ थोड़े दिन के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमने शुरू से देखा एक एक्सपेरिमेंट है, तो थोड़े दिन के लिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, लाइफ विल चेंज डेफिनेटली।
1: ओके, डॉक्टर पटेल बहुत अच्छा लगा आज की इस पूरी बातचीत के लिए। अभी हमने उन एडिक्शंस की बात की है जो सामने सामने नजर आती हैं, जो हमारे अपने अंदर चल रही हैं एडिक्शंस। अगर मैं कहूं कि एंगर एक एडिक्शन है, जैसे आपने कहा था एक बार कि चॉकलेट भी एडिक्शन हो सकती है, या कहीं ना कहीं टेंशन एडिक्शन है, पेन लेने की एडिक्शन है, रिलेशनशिप्स में एडिक्शन है कि मैं आपके प्रति इतना ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा, किस तरह से ये एडिक्शंस, ये आदतें भी हमारे लिए मजबूरी बन सकती हैं और कहीं ना कहीं बीमारियों का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, तो उनके ऊपर बातचीत करना अभी बाकी है। आने वाली कड़ियों में उन्हें जरूर हम शेयर करेंगे आपके साथ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमने ये मान लिया कि जो आदत हमारी जिंदगी में आ गई है, चाहे वो स्मोकिंग की है, चाहे वो ड्रिंकिंग की है, चाहे वो गुटखे की है, वो आदत है और उससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता। मेंटली मैं अपने आप को बहुत चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत हमें यहीं से करनी पड़ेगी। जैसा कि सिस्टर शिवानी ने कहा कि एक बार भी ये थॉट अगर हमारे पास आ जाता है कि मुझे इन व्यसनों से बाहर निकलना है, इन आदतों को छोड़ना है, तो फिर आप वो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही अनुभव होगा। आप किसी भी राजयोग सेंटर जा सकते हैं, खुद को इतना बुलंद कर सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, और इन सभी आदतों को अगर अपने लिए नहीं, किसी अपने के लिए, अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं, या फिर अपने लिए भी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप एक वादा कीजिए अपने आप से कि ये कदम जरूर उठाकर देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुंडेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: गीता।
2: यस पापा।
1: बरखोरदा।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ सॉरी।
3: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
4: नमस्ते।
3: जय हिंद ओ पिताजी।
4: जय हिंद।
3: नमस्ते नमस्ते है सबको।
5: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: अहो ऐकलत का।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों के गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपके चिंतन को एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का विषय है आत्मा की यात्रा, बाहरी सफलता से भीतर की शांति तक। हम सब जीवन में सफलता की ओर दौड़ रहे हैं। सुबह से शाम तक, दिन से रात तक हमारी सोच, हमारी मेहनत, हमारे लक्ष्य सब कुछ बाहरी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। हम ऊंचा पद चाहते हैं, बड़ा घर, अधिक धन, समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या केवल यही सफलता का मापदंड है? क्या बाहरी उपलब्धियां ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? जीवन की यह दौड़ हमें भले ऊंचाइयों तक पहुंचा दे, पर भीतर कहीं एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहती है। जब रात को सब सो जाते हैं और हम अपने आप से मिलते हैं, तो यह प्रश्न उठता है, क्या मैं सच में शांत हूं? यहीं से आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है, बाहरी सफलता से भीतर की शांति की ओर। आत्मा की यात्रा कोई भौतिक यात्रा नहीं है। यह ना तो किसी मार्ग पर चलकर पूरी होती है, ना ही किसी साधन से। यह यात्रा भीतर की ओर मुड़ने की है। जब हम अपने मन की हलचल को देखना शुरू करते हैं, अपने विचारों, इच्छाओं और भय को समझना शुरू करते हैं, तभी हम आत्मा के मार्ग पर पहला कदम रखते हैं। बाहरी सफलता हमें गर्व देती है, लेकिन भीतर की शांति हमें गरिमा देती है। एक व्यक्ति जिसने बाहरी सफलता पाई है पर मन अशांत है, वह हमेशा असंतुष्ट रहेगा, जबकि जिसने भीतर की शांति पाई है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, चाहे सफलता मिले या असफलता। इस यात्रा में सबसे पहला पड़ाव है स्वयं की पहचान। हमें यह समझना होगा कि हम केवल शरीर या नाम नहीं है, हमारे भीतर एक चेतना है जो साक्षी है, जो देखती है, महसूस करती है, परंतु अस्थिर नहीं होती। जब हम अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को पहचान लेते हैं, तो जीवन की दिशा बदल जाती है। दूसरा पड़ाव है वैराग्य और संतुलन। इसका अर्थ यह नहीं कि हम संसार से भाग जाएं, बल्कि यह है कि हम संसार में रहकर भी उसके मोह में ना फंसें, कार्य करें, लक्ष्य बनाएं, पर अपने भीतर का संतुलन बनाए रखें। तीसरा पड़ाव है ध्यान और आत्मचिंतन। जब हम प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठते हैं, अपनी सांसों को देखते हैं, विचारों को बिना प्रतिक्रिया के गुजरने देते हैं, तब धीरे धीरे मन शांत होता है और आत्मा का संगीत सुनाई देने लगता है। प्रिय मित्रों, बाहरी सफलता हमें सम्मान दिलाती है, पर भीतर की शांति हमें सच्चा सुख देती है। जब यह दोनों मिलते हैं तभी जीवन पूर्ण होता है। इसलिए सफलता की दौड़ में भागे अवश्य, लेकिन अपने भीतर की आवाज को न भूलें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, जो भीतर शांत है वही वास्तव में सफल है। धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुरीरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में एक नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।
3: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
4: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
3: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कई साल पहले की ये बात है। भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी वेलकम।
2: ओम शांति।
1: आपका बीइंग ब्लिस में स्वागत।
2: थैंक यू सो मच।
1: लास्ट टाइम आप कह रही थी कि वांट है, जस्टिफिकेशन है, और क्या क्या शब्द था आपका?
2: पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
1: चलिए
2: कि ये मेरी क्रिएशन है।
1: मैंने गुस्सा किया, मेरी क्रिएशन है, मैं चाहता भी हूँ, वांट भी है, और मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूँ कि हाँ यार उसने ऐसे बोला तो मुझे गुस्सा आ गया, रिक्शा वाला सामने गाड़ी एकदम ले आया, मुझे ब्रेक मारनी पड़ी, तो क्या, चलो उसको भी मैं अपना मानता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें कोई रिजल्ट नहीं ला रही है।
2: ये बहुत बड़ा रिजल्ट है।
1: क्या?
2: ये बहुत बड़ा रिजल्ट है जब हम किसी भी आदत को इतने सालों से या पता नहीं और भी कितने पहले से जस्टिफाई करते आए थे, और आज हम उसको अगर जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, जिस चीज को हम सही बोलते आए थे, आज तक हमने कहा गुस्सा नेचुरल है, टेंशन आज के समय में नेचुरल है, हर्ट ऑब्वियस है, बुरा तो लगेगा ही, नेचुरल है, ये सब जस्टिफिकेशंस थे।
1: तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं झूठा झूठा जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ और ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ, अंदर से नहीं है?
2: हाँ, तो फिर वो तो हमें पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा ना, एम आई एक्सेप्टिंग कि दिस इज डैमेजिंग फॉर मी?
1: या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, जस्टिफाई करता हूँ, हाँ मैं गुस्सा किया, हाँ मेरे निश्चय
2: गुस्सा किया, इज नॉट द जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन इज ये मेरे लिए हानिकारक है, दिस इज डैमेजिंग।
1: हानिकारक है तो है यार, मैंने बोल दिया, मैं क्या करूँ, नहीं बदल सकता, मैं क्या करूँ, जाओ,
2: मेरा नुकसान हो रहा है। एम आई एक्सेप्टिंग दिस कि मेरा नुकसान हो रहा है, हर क्षण मेरा नुकसान हो रहा है? डू आई अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डैमेज दैट आई एम क्रिएटिंग टू माई सेल्फ?
1: प्रॉब्लम यह है, जब तक कोई नुकसान मुझे नहीं लगता है, जब तक मुझे हॉस्पिटलाइज ना किया जाए कि भाई इसको इतना हाई ब्लड प्रेशर हो गया चिड़ के गुस्से में आके कि ये बीमार हो गया, सलाइन लग गया, तब।
2: अच्छा, मन परेशान रहता है?
1: हाँ।
2: अच्छी नींद जितनी रात को आनी चाहिए,
1: करेक्ट,
2: वो नहीं आती है। आज मेजोरिटी लोग अच्छी नींद नहीं सो पाते हैं, सोते हैं, ये नहीं कि सभी नींद की दवाई ले रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इस तरह के कोई सब्सटेंस को भी यूज कर रहे हैं सोने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो अपने आप आराम से सो जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन कौन सोता है? दिस आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, एंड उसका एक सिंपल टेस्ट है, सुबह जब उठते हैं, चाहे वो अलार्म लगा के उठते हैं या जो आंख खुलती है, फ्रेशनेस कितनी है? क्या मन करता है कि हम 5-10 मिनट और सो जाएं? क्या मन करता है कि हम उस मोबाइल के अलार्म को स्नूज पे लगाकर फिर सो जाएं 10 मिनट के लिए? क्योंकि जितनी देर हम सोते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे या कई बार उससे भी ज्यादा, दो चीजों को आराम मिलना है, एक मन, एक शरीर, बोथ नीड टू रिचार्ज नो फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। बॉडी भी पूरी तरह से रेस्ट करेगी, रिचार्ज होगी, मन भी रेस्ट करेगा और रिचार्ज होगा। हम जब सोने जाते हैं, पूरे दिन में हमने बहुत सारे उथल पुथल क्रिएट की, रिएक्शंस क्रिएट किए, टर्बुलेंस क्रिएट की, नेगेटिव एनर्जीज वातावरण में रेडिएट की, रिटर्न करके भी वो मेरे पास आ रहे हैं, मन में बहुत सारी बातों की सोच चल रही है, फिर रात को बैठे, न्यूज देख ली, नॉवेल पढ़ लिया, कुछ ऐसा कर लिया, कोई सीरियल देख लिया,
1: थ्रिलर
2: देख लिया, मतलब अगेन जो लास्ट इन्फॉर्मेशन भी फीड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टर्बुलेंट है, मतलब नेगेटिव है, न्यूज है बहुत अच्छी नहीं है, सीरियल है उसमें बहुत अच्छी बातें नहीं हो रही, इट्स ईदर टॉकिंग अबाउट जेलसी, इट्स ईदर टॉकिंग अबाउट बिट्रेयल, ये इसी तरह की इमोशंस,
1: ज्यादा से ज्यादा सीरियल में बदला,
2: हाँ, रिवेंज, हेट्रेड, गुस्सा तो कॉमन ही है, ये सारे सीन्स को देखते हुए या पढ़ते हुए, और मन ने पहले ही पूरे दिन में ऐसे सीन्स काफी सारे देख लिए हैं, अंदर भी देखे हैं, यू नो लॉट ऑफ सीन्स आई एम क्रिएटिंग हियर, लॉट ऑफ सीन्स हैपनिंग अराउंड मी, एंड देन टू स्टैम्प इट ऑल, लॉट ऑफ सीन्स इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट इन द नाइट, नहीं, नाउ दिस इज माई रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम में क्या लेंगे, ये सारे सीन्स हम आखिरी इन्फॉर्मेशन भरते, ये सब करके सो गए। इट मीन्स गाड़ी 5th गियर में चल रही थी, मन फास्ट स्पीड पे और वो फिफ्थ गियर में रख के ही सो गए,
1: न्यूट्रल ही नहीं किया, इंजन ऑफ ही नहीं किया,
2: स्लो डाउन ही नहीं किया। अब 6 घंटे बाद जब हम उठते हैं, बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, उसका जो जो होना था पूरी रात में वो हो गया है, लेकिन मन सारी रात
1: उथल पुथल
2: वही थॉट्स में था, क्योंकि उसको स्लो डाउन करके, सारी सिर्फ स्लो डाउन मीन्स सोचना बंद नहीं, जितने इश्यूज क्रिएट थे आज दिन के अंदर, क्या उनको रिजोल्व किया, सॉर्ट आउट किया, मन को आंसर्स दिए, या प्रश्नों के साथ ही सो गए, नफरत के साथ ही सो गए, गुस्से के साथ ही सो गए, तो वो रात को भी ऐसे चलता है। सुबह उठे फ्रेश नहीं है, तो चिड़चिड़े होकर ही उठते हैं सबसे पहले। तो आज का मॉर्निंग सीन हर घर का एक अलग वातावरण है,
1: चाय पे झगड़ा शुरू। हाँ,
2: पहले एक वातावरण होता था कि भजन बज रहे हैं, अगरबत्ती जल रही है, एक माहौल ही अलग होता था। आज तो उठे पहले लेट, फिर मूड अच्छा नहीं है, फिर चाय पीनी पड़ती है उसको ठीक करने के लिए। अब इस थकी हुई स्थिति में, थकी हुई मीन्स मन की थकी हुई स्थिति में, उस मन को फिर चलाया और 15-16 घंटे, फिर रात को नहीं सोने दिया ठीक से, फिर चलाया और 15 घंटे। दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर ईयर्स। टुडे यू विल फाइंड मेनी मेनी पीपल जो बैठे बैठे कहीं भी सो सकते हैं। हम पब्लिक प्रोग्राम्स में देखते हैं, दिन का टाइम है, आप सोकर आए हैं अभी 7 घंटा, और आप यहाँ सामने बैठ के कुर्सी पे सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नींद की कमी है। क्योंकि कमी तो नहीं है, मैं तो सोकर आया 6 घंटा, शरीर सोकर आया। कहीं भी नींद आ जाती है, ऑफिस में मीटिंग्स में नींद आ जाती है, बैठे बैठे नींद आ जाती है, क्योंकि नींद की कमी है, मन सो नहीं रहा है रात को। कोई भी मन अगर सोएगा नहीं रात को, और फिर एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, कई दिन, कई साल, तो नींद के बिना व्यवहार कैसा हो जाएगा?
1: ये लाइन कैसी है, क्या करें, हमारा बिजनेस ही ऐसा है।
2: हाँ,
1: हमारा बिजनेस ही फ्लक्चुएटिंग है, हमारा चांदी सोने का सट्टे का बिजनेस है, हमारा शेयर मार्केट का बिजनेस है, रात को प्राइस ऊपर होता है कल नीचे होता है, हमारा गारमेंट का बिजनेस है, हमारा डॉलर का भी ऊपर होता है कभी ये होता है,
2: ये सब बातें हम, ये तो राइट है, ये तो होना ही है, लेकिन हमें सिर्फ अभ्यास क्या करना है, डॉलर ऊपर नीचे हो, मन ऊपर नीचे ना हो ना, गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ऊपर नीचे हो, मन साथ साथ उतना ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि बिजनेस तो करना ही है।
1: बट मन जुड़ा हुआ है ना बिजनेस से,
2: मन बिजनेस से जुड़ा हुआ है,
1: क्यों नहीं,
2: मन बिजनेस से जुड़ा हुआ है, मींस अगेन वी आर सेइंग कि बिजनेस का मन पर प्रभाव, मन का बिजनेस पर प्रभाव, परिस्थिति का स्थिति पर प्रभाव, या स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव, यही तो खेल है सारा सारा दिन। अगर हमने अभी अभी ये जो आपने कहा, दिस वॉज अगेन जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन आई ना, ये इतनी सूक्ष्म,
1: मदर एंड चाइल्ड का रिलेशन देखो, सबको मालूम है कि बच्चा पैदा होता है तो कब पता नहीं कितनी बार बुखार जुकाम आता ही है, फिर वो क्यों इतनी दुखी हो जाती है। ये अगर इसको मैं परिस्थिति करूं, जैसे बिजनेस है, बिजनेस भी तो मेरा बच्चा है।
2: आप आज की माँ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप 20 साल पहले की माँ को देखते तो वो कहती कोई बात नहीं, बच्चा है, इतना होता है, ठीक हो जाएगा। क्योंकि माँ स्ट्रांग थी, माँ स्ट्रांग थी मतलब मन स्ट्रांग था। ये करते करते करते करते आज हरेक का मन कैसा हो गया, जितना हमने परिस्थिति को अपने मन पर प्रभाव डालने दिया, ये एक दिन में नहीं हुआ है, एक परिस्थिति में नहीं हुआ है, ये कई सालों से हर अगर मैं किसी को अपने ऊपर हावी होने दूं, मैं कमजोर, आप पावरफुल, मैं कमजोर, आप पावरफुल, तो कोई मेरे पर हावी होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, 20 साल बाद क्या हो जाएगा, मेरी अपनी तो कोई ताकत ही नहीं रही, उसने कम्प्लीटली मुझे
1: ओवर कर लिया,
2: परिस्थिति ने कम्प्लीटली आज हमें ओवर पावर कर लिया है। क्योंकि हमने बार बार यही कहा, जो आपने अभी कहा ना, बिजनेस है, मन पर असर तो पड़ेगा ही, पड़ेगा ही मतलब जस्टिफिकेशन, तो मतलब कहा मेरा परेशान होना इज ओके।
1: आई नो, बट ये आपकी बात कान को सुनने में इस वक्त अच्छी लग रही, कल मेरी फिल्म फेल हो जाती जब मैं जिसमें काम करता हूँ, तो दुख तो होता ही है ना,
2: होता ही है नहीं
1: है।
2: अभी अगर उसी समय मैं ये अपने ऊपर वर्क करूं, एक है ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, दुख तो होता ही है, रिजल्ट, दुखी होंगे अभी, दुखी होंगे, आसपास घर में सारे दुखी होंगे, एनर्जी डिप्लीट होगी। सोल्यूशन कुछ नहीं, एनर्जी कम हुई। नेक्स्ट जो इंडेवर करना है, नेक्स्ट चीज जो करनी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब, पिक्चर बनानी है, उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चाहिए, फिर से वो जो एक एंथुजियाज्म चाहिए, वो इस स्थिति में डाउन हो जाती है। फिर बहुत मेहनत करती पड़ती है वो वापस मोटिवेशन पर जाने के लिए, फिर वो एंथुजियाज्म। अच्छा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो क्रिएट हो जाता है, मैं कर रहा हूँ बट नाउ आई एम नॉट श्योर,
1: पिछली बार इतनी मेहनत की फिर भी फेल हुआ।
2: यस, नाउ दिस विल स्टार्ट हैपनिंग। तो अब क्या हुआ, एक फेलियर हुआ, वी आर नॉट सेइंग फेलियर इज गुड, फेलियर हुआ, लेकिन फेलियर को अपने ऊपर कितना हावी होने देंगे और हम फेलियर पर कितना हावी होकर आगे बढ़ जाएंगे, ये दो ऑप्शन तो है ना। अगर मैंने फेलियर को, एक फेलियर आया लेकिन मैंने फेलियर को अपने ऊपर हावी होने दिया, मतलब मेरी मन की स्थिति उस फेलियर के, अब उसमें भी आप देखो पिक्चर फेल हुई लेकिन हर एक पे अलग अलग असर पड़ेगा, किसी पर वो ज्यादा हावी होगी बात, किसी पर कम। जितनी ज्यादा हावी होगी उसको उतनी ज्यादा मेहनत निकलेगी उससे बाहर निकलने में, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आप मेहनत करके बाहर निकलो, लेकिन उसका इफेक्ट आपकी नेक्स्ट चीज पर पड़ने वाला है। तो देन क्या हुआ, इट विल बिकम अ विशियस साइकिल। अब नेक्स्ट टाइम आप उतने फ्यूल, उतनी एनर्जी के साथ स्टार्ट ही नहीं कर रहे, अब आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे उतनी एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर अगेन, यू आर इंक्रीजिंग नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर और नॉट दैट मच सक्सेस जितना होना चाहिए।
1: ऐसे समय पे जब किसी बड़े स्टार की फिल्म फेल हो जाती है, तब उसको ऐसे लोग अप्रोच करते हैं जो कहते हैं कि देखिए आपकी पिछली फिल्म फेल हो गई है, मार्केट आपकी डाउन है, फिर भी हम देखिए आपके पास पैसे लगा के आपको फिर खड़ा करेंगे, मगर आप हमारे लिए थोड़ा प्राइस रिडक्शन कर लीजिए। उस जमाने में मैं 30-40 साल पहले यही लाइन्स किसी एक हीरो को किसी ने बोला था, तो यू नो व्हाट ही सेड, फिल्म फेल हुई सर, मैं फेल नहीं हुआ।
2: ब्यूटिफुल, नो सी दिस इज इट, एंड आई एम श्योर कि वो जो भी था मस्ट हैव रिजन बैक टू व्हाट ही वाज सपोज्ड टू बी,
1: राइज किया।
2: एब्सोल्युटली, क्योंकि परिस्थिति को अपने ऊपर नहीं हावी होने दिया, परिस्थिति से ऊपर उठ गए। एंड ये हम सारा दिन देख पाएंगे अपने आसपास, देर आर सो मेनी पीपल जिनका सब कुछ खत्म हो जाता है, बिजनेस कहाँ था और कहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं हिलते हैं। और जो अंदर नहीं हिलेगा वो क्या कहेगा, ठीक है प्रॉब्लम आई।
1: एक जली हुई दुकान के पास बोर्ड लगा हुआ था, हाँ, जो आग से जल गई थी, कि मेरी दुकान जल गई है लेकिन मेरा पैशन, मेरी मेहनत और मेरी लगन नहीं जली, मैं फिर से आप बनाऊंगा।
2: ब्यूटिफुल, मतलब मेरी स्थिति वही है, परिस्थिति इस समय अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी स्थिति परिस्थिति को फिर से बहुत सुंदर बना देगी। एंड इतनी सुंदर बना, अगर स्थिति अच्छी हुई ना तो परिस्थिति जो सोचा भी नहीं था ना उससे भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसीलिए ये बात को अब अपनी वोकैबुलरी से हटाना पड़ेगा कि बात ऐसी थी तो हुआ ही ना। एवरी टाइम आई से दिस ना, आई एम सेइंग आ जाओ परिस्थिति मेरे ऊपर हावी हो जाओ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है तुम्हारे सामने खड़े होने की, तुम बहुत पावरफुल हो। हम अपने को बहुत कमजोर करते हैं ऐसे समय पर। एक्सेप्ट प्रॉब्लम आई है, एक्सेप्ट, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में अब मुझे नहीं सोचना है। माय इमीडिएट थॉट इज व्हाट नेक्स्ट, सॉल्यूशन व्हाट नेक्स्ट, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया ना, फाइन व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है, क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, अब क्या करूंगा, होगा या नहीं होगा, दिस इज वन टाइप ऑफ थॉट। दैट इज व्हाई द थर्ड स्टेप इज व्हाट थॉट्स टू चूज नाउ, जब सब कुछ गलत हो रहा है। जैसे आपने कहा माँ के लिए एक बच्चा बीमार हो रहा है, बुखार है, जुकाम है ना, ठीक है, तो अब क्या है ना, बुखार और जुकाम, तो अब क्या करना है, टाइप ऑफ थॉट क्या सोचना है। बट द थॉट्स दैट वी विल क्रिएट टुडे इज क्यों हुआ, मेरा बच्चा इतना रो रहा है, दुखी है, क्या होगा इसका, ये सारी थॉट्स मेरी स्थिति को, एक एक थॉट, एक थॉट के अंदर इतनी पावर है कि या तो वो मुझे ऐसे ले जाएगी या वो मुझे ऐसे उठा देगी। द क्वालिटी ऑफ थॉट एट दैट टाइम,
1: उसकी बॉडी लड़ेगी बीमारी से, बच्चा ठीक हो जाएगा,
2: ठीक हो जाए, चाहे वो इतनी छोटी सी चीज हो चाहे कोई बहुत बड़ी बात हो। आज हमने देखे हैं लोग जिनको कैंसर है, कहेंगे है ना, है कैंसर ना, ठीक है, आई विल ओवरकम दिस। कोई और होगा कहेगा 6 महीना ही है सिर्फ मेरे पास, एंड बेड पर पकड़ लेंगे। अब डॉक्टर ने कहा होगा कि 6 महीना है इनके पास, लेकिन उनका मन उनको 2 या 3 महीने से ज्यादा नहीं चलने देगा। ये मन की पावर है, पावर ऑफ माइंड डिपेंड्स ऑन एवरी थॉट गेटिंग क्रिएटेड एट दैट टाइम। लेट मी बी केयरफुल, लेट मी नॉट से लेकिन बात ऐसी थी, लेकिन ये मेरी नेचर है, मेरी एक थॉट मुझे कहां से कहां लेकर जा सकती है और मेरी एक थॉट मुझे यहां गिरा सकती है, नो जस्टिफिकेशन। तो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे आसपास जो है, जो हमें उस समय राय दे रहे हैं, वो कैसी राय देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परमात्मा एक बहुत सुंदर बात हमें सिखाते हैं, समस्या का चिंतन नहीं करो। और ये सारा दिन में हम आज ट्राई कर सकते हैं, डू नॉट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, समाधान स्वरूप बनो, प्रॉब्लम का चिंतन नहीं, सोल्यूशन पर फोकस। हम लोग कहते हैं हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यू नो वी नॉट इवन अवेयर कि हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं लेकिन डिस्कस प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। कोई भी चैलेंज आए, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा फेलियर भी, एक सिंपल रूल, दिस होल फैमिली और द होल कंपनी या जो भी लोग इन्वॉल्व है, एक रूल हमेशा याद रखना है, जितनी देर हम प्रॉब्लम के बारे में चिंतन कर रहे हैं, एंड प्रॉब्लम के बारे में चिंतन मतलब जो हो चुका, एंड दिस इज अ वेरी थिन लाइन, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, समवन हैज टू बी वेरी वेरी अलर्ट टू सी कि किस बारे में चिंतन हो रहा है। क्योंकि काफी बार हम प्रॉब्लम के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं लेकिन हम कहते हैं वी डिस्कसिंग द सोल्यूशन, यू नो स्पेशली इफ यू सी मीटिंग्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल सिटिंग, कोई सोसाइटी की मीटिंग, कोई कंपनी की मीटिंग, टीम की मीटिंग घंटों चलती है, और ये जो घंटों मीटिंग्स चलती हैं और
1: लड़ाइयां झगड़े चलते हैं
2: वो भी हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम का चिंतन होगा ना तब ब्लेम गेम भी आएगा, प्रॉब्लम ये आई क्यों, प्रॉब्लम ये किसकी वजह से हुआ। लेकिन जितना भी प्रॉब्लम का चिंतन हो रहा है, ब्लेम गेम हो रहा है, वी आर ओनली डिप्लीटिंग एनर्जी, एंड हम ये नहीं रियलाइज करते कि वो एनर्जी जो उस टाइम डिप्लीट हो रही है, ड्रेन हो रही है, वो हमारा नुकसान कर रही है, क्योंकि हम सोल्यूशन के लिए अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। कई बार हम कहते हैं कि प्रॉब्लम के बारे में अगर you know, सोचेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे तो अगली बार फिर वो गलती हो जाएगी। प्रॉब्लम का चिंतन मुझे सोल्यूशन से दूर करता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोल्यूशन सामने भी अगर खड़ा होगा, सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की जो ताकत चाहिए वो मेरी प्रॉब्लम का चिंतन करने में ड्रेन आउट हो रही है। सो वेरी थिन लाइन एंड लॉट ऑफ अवेयरनेस कि प्रॉब्लम, लोग, किनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, क्या नहीं किया ठीक, क्या करना चाहिए था ठीक, सब कुछ जो होना चाहिए था हुआ था, एनीथिंग विच इज पास्ट और एनीथिंग फॉर विच समबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू थिंक अबाउट इट। जितनी जल्दी हो सके अपने माइंड को प्रॉब्लम से सोल्यूशन, एंड इट हैज टू बी अ जम्प, इट हैज टू बी अ वेरी बिग शिफ्ट। ठीक है, बहुत बात हो गई प्रॉब्लम के बारे में, अब क्या करना है,
1: क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर से आया। सपोजिंग मैं अपने रूम में जाऊं अभी यहाँ से शूटिंग के बाद, और देखूं कि मेरे रूम में सांप है
2: पलंग
1: पे, और मैं बोलूं क्यों आया, कहाँ से आया, एक काम करते हैं, दुनिया को बुलाओ, बोर्ड मीटिंग करता हूँ, वो करूंगा या इमीडिएटली पहले हटाऊं।
2: दिस इज इट, क्यों आया, लोग ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं, स्टाफ कहाँ था, सफाई नहीं की, ध्यान नहीं रखा, कितनी एनर्जी,
1: मैं काट लेता तो मैं मर जाता तो ये मतलब
2: वो... चलो ठीक है, अगर ये भी जो आपने कहा ना इसको भगा दो, अब सपोज हमने उसको भगा तो दिया क्योंकि वो तो डेंजरस है, लेकिन उसको भगाने के बाद भी हमने अगर ये चिंतन किया क्यों हुआ, कहाँ से आया, किसकी गलती थी, यूजफुल। अब हमें लगता है ये नेचुरल है, अब इसको हम नेचुरल कह देंगे, ये जो हम रियलाइज नहीं कर रहे, ये मेरी एक एक थॉट अबाउट समथिंग विच इज नॉट इन माई कंट्रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात जो हो चुकी है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लोग जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं उस पर सोचना मेरी ताकत को कम करता है। ये तो पकड़ ले बात,
1: क्यों सोचते हैं, मैं क्यों नहीं सोच रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका एक एक वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, कन्वर्स कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं सोच रहा हूँ चिड़िया क्यों बोल रही है, इतनी सुंदर चिड़िया है, चारों तरफ वातावरण अच्छा है।
2: अब अगर आप कितना भी उस बारे में सोचे,
1: एक बार भी नहीं सोच रहा मैं,
2: बिकॉज यू नो कि यू कैन नॉट कंट्रोल।
1: ऐसा नहीं है, एक्सेप्टेड है, ठीक है, अच्छा लग रहा है
2: ये सा, लेकिन सारा दिन में वो चीजें नहीं होंगी जो अच्छी लग रही होंगी, ये भी इम्पोर्टेंट है।
1: फिर सारा दिन एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा।
2: अब जो चीजें अच्छी हैं वो तो एक्सेप्ट हो गई, इम्पोर्टेंट है जो कंट्रोल में नहीं है, इवन अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो भी उसको एक्सेप्ट करना है। जो मेरे कंट्रोल में नहीं उस पर चिंतन मेरी शक्ति को वेस्ट करता है। यू नो इट्स लाइक सपोज मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी पत्थर या ईंट आ जाए, पत्थर है बहुत बड़ा सॉलिड पत्थर है और मैं उसको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं टूटने वाला है, लेकिन मैं करते जाऊं तो हाथ ही दर्द होगा, पत्थर को तो कुछ नहीं होगा। तो मैं कोई ऐसे लोगों को या सिचुएशन के बारे में चिंतन कर रहा हूं जो बीत चुका है, एंड आई एम सेइंग क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा, जो बीत चुका है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो कुछ कोई कर रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ जो टूट नहीं सकता है, तो उससे क्या हुआ, दर्द मुझे ही होगा। व्हेनेवर हमारे थॉट्स चल रहे हो ना, ऑलवेज स्टॉप एंड चेक, एम आई थिंकिंग अबाउट वॉट इज इन माई कंट्रोल और एम आई थिंकिंग अबाउट वॉट इज नॉट इन माई कंट्रोल। ही शुड हैव सेड दिस, शी शुड हैव डन दिस, ही कुड हैव डन इट दिस वे, वो इट्स ऑलरेडी हैपेंड, बट हाँ ये कर सकते हैं हम उनको जाकर कह सकते हैं आप नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे, आई वुड बी वेरी हैप्पी या आई वुड लाइक इट कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कर लें इस चीज को।
1: ऐसा भी तो बोल सकते हैं, भाई उस दिन आपने ये बोला थोड़ा सा मुझे बुरा लगा,
2: वो हम
1: वो नहीं
2: देखेंगे आगे
1: अगले एपिसोड में
2: देखेंगे कि वो बोलने से फायदा होता है या नहीं होता। इम्पोर्टेंट है जो बीत चुका है उस पर चिंतन मेरी शक्ति को नष्ट करता है। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम जैसे प्रकृति रिसोर्सेस का आज इतना ध्यान रखते हैं, बिजली अगर चल रही है कमरे में कोई नहीं है तो इमिजिएटली बंद करेंगे ना, and we're so aware, you know, when we're saying aware, कि बहुत लोग पूछेंगे awareness क्या है, what does it mean, self-aware, awareness, कमरा खाली है, बिजली चल रही है, waste हो रहा है, bathroom में कोई नहीं है, नल चल रहा है, kitchen में कोई नहीं है, नल चल रहा है, पानी waste हो रहा है, awareness है ना। अच्छा कुछ लोग होंगे कमरे में कोई नहीं है, बिजली चल रही है, awareness नहीं होगी,
1: geyser भी चल रहा है, गर्म पानी है,
2: AC भी ऑन है, कमरे में कोई नहीं है, तो कोई और आके बोलेगा आपको इतना भी अवेयरनेस नहीं है कि वेस्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो एक को अवेयरनेस है दूसरे को नहीं है ना, यही हमें सारा दिन करना है कि आपको नहीं दिख रहा एनर्जी वेस्ट हो रही है, आज इतनी कमी है रिसोर्सेस के, इमिजिएटली स्विच इट ऑफ। सो व्हाट आर वी डूइंग, ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम बीइंग अनअवेयर टू अवेयर। अब किसको अवेयरनेस होगी और किसको नहीं होगी, अब जो नॉलेजफुल है एंड इम्पोर्टेंट, जिसके लिए वो प्रायोरिटी है, किसी के लिए वेस्ट नहीं होना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये प्रायोरिटी है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, उसकी वो प्रायोरिटी लिस्ट पे ही नहीं आ रहा।
1: पहले ना सिस्टर मैं जब कोई चीज ऐसे नल चल रहा है तो चल रहा है, पंखे चल रहे तो चल रहे हैं, पहले मैं चिल्लाता था, फाइनली थक के मैं सिर्फ बंद करना शुरू कर दिया।
2: हाँ।
1: और कुछ तरीका ही नहीं था।
2: वेरी गुड। अब एक और चीज करनी है, जब अंदर का नल चल रहा हो, यहाँ चल रहा है, एक एक थॉट जो चल रही है ना, इट्स लाइक ड्रेनिंग, कोई काम नहीं हो रहा है, उस थॉट से कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लेकिन वो चल रही है, चल रही है, आप जाकर उसको बंद करना है। सेइंग टू माई सेल्फ, आई एम वेस्टिंग एनर्जी नाउ थिंकिंग अबाउट ऑल दिस,
1: एनर्जी का नल
2: बंद, एक एक थॉट, और ये सिर्फ वेस्ट नहीं हो रहा, ये डैमेज भी क्रिएट करता है। पानी तो सिर्फ वेस्ट होता है ना, बिजली तो सिर्फ वेस्ट होती है, नुकसान तो नहीं क्रिएट कर देगा ना अगर नल चल रहा है, ये तो नुकसान भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब ऐसे टप टप टप चलता है ना, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है उस टाइम। व्हेन इट इज टू मेनी थॉट्स, इट्स नॉट वेरी गुड क्वालिटी थॉट. तो दोनों नुकसान हो गए, एक तो टू मेनी, तो वो थकावट, एंड दूसरा नॉट वेरी गुड क्वालिटी, तो एनर्जी भी अच्छी नहीं है. अब क्या होगा अगर नल चलता रहेगा, अगर टैप आपका खुला रह गया, सुबह आप ऑफिस चले गए, शाम को जब आपको फाइनली पानी चाहिए तब तक वो ओवरहेड टैंक खत्म हो गया होगा. जब हमने अननेसेसरी बातों में सोचते गए, सोच रहे हैं, घंटा बीत गया सोच रहे हैं, फिर बात भी कर रहे हैं उसके बारे में,
1: आउट ऑफ कंट्रोल होता है सिस्टम.
2: या बट व्हाट विल हैपन, एनर्जी जब डिप्लीट होती जाएगी, जब उस एनर्जी की जरूरत होगी, कोई बात आ गई और अब हमें उसको फेस करना है. लेट्स से अ सिंपल थिंग कि बच्चा घर पे 8 बजे आता है रोज रात को, आज 9 बज गए अभी तक नहीं आया, फोन भी नहीं लग रहा, सबसे पूछ लिया, अब आई ओनली हैव वन चॉइस, वेट, है ना. लेकिन वो वेटिंग की क्वालिटी कैसी होती है, अंदर कैसी कैसी थॉट्स चलती हैं, ये हर एक अपने आप की चेकिंग कर ले. अगर उस 1 घंटे वेट करने में हमने सब तरह की नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर ली उतनी देर में, तब 99.99% तो बच्चा घर आ जाएगा. जब घर आएगा, अगर ये इस तरह की नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की होंगी तो हम उसको पहले डांट देंगे, हम उसको प्यार से अंदर लाकर ये भी नहीं पूछ पाएंगे कि हुआ क्या था, हम चिल्ला के पूछेंगे कि क्या हुआ था, तुम कहाँ थे, लापरवाह हो गए हो, फोन करना भी जरूरी समझते नहीं, विदाउट रियलाइजिंग ही मस्ट हैव जस्ट गॉन थ्रू समथिंग एंड कम. हाँ, तो वो रिएक्शन क्यों, क्योंकि एनर्जी 1 घंटे में डिप्लीट हुई. लेकिन 0.01% अगर कुछ हुआ है, सपोज एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट की परिस्थिति को फेस करने के लिए जो मुझे ताकत चाहिए वो मेरे अंदर नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी ताकत ऑलरेडी चिंता करने में वेस्ट कर दी है. सो रिसोर्सेस को अगर सही तरह से यूज ना किया जाए, वेस्ट किया जाए, तो जब रिसोर्सेज की जरूरत होती है तो वी विल नॉट हैव द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर अस. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सारा दिन कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल है उसके बारे में चिंतन ना कर स्विच को ऑफ करे. दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. चलेंगी थोड़ी, जो आपने कहा ना अपने आप आ रही है, लेकिन अब उसको देखना शुरू कर दो. हर स्टेप पे रुको, व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट, क्या सोचा, अच्छा ये सोच चल रही है, इन माई कंट्रोल, नॉट इन माई कंट्रोल, नॉट इन माई कंट्रोल, ओके चेंज. दिस इज सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को देखना. जैसे हम सारा दिन औरों को देख रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इधर क्या है, उधर क्या है, ये क्या सोच रहा है. एवरी टाइम बाहर से सब कुछ करते हुए एक एक मिनट के लिए अंदर को देखना, ये क्या कर रहा है. एक ध्यान हमेशा अंदर, ताकि जैसे ही शुरू हो तब उसको तुरंत चुप कराना है, तुरंत उसकी क्वालिटी को चेंज करना है. वी विल स्टार्ट कंजर्विंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. दिस वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी
1: स्टेप. वंडरफुल सिस्टर, आज इसका होमवर्क करता हूँ, फिर अगले एपिसोड में मिलता हूँ आपसे. थैंक यू सो मच.
2: ओम शांति.
1: नमस्कार. ओम शांति. थैंक यू सो मच.
3: रिजॉल्व द इश्यूज ऑन द माइंड बिफोर स्लीपिंग. Give answers to the disturbed mind or give instruction that we will think about this tomorrow. Silence the mind, else the body will sleep. Mind will keep thinking and not get charged. Improper sleep over a period of time makes us sleep deprived. This makes our behavior irritable, tolerance power low, memory power and decision making power gets affected. If we allow situations to overpower the mind, we start depleting our power. Rise above the situation. Focus on the solution rather than thinking about why the problem happened. Think about the solution, not the problem. Till we keep thinking about the problem, we are thinking about the past, which is not in our control, and we are wasting time and energy.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल। सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM और मैं हूं आपका हम सफर सनी। लेकर आया हूं प्रोग्राम ख्वाबों का सफर। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, इस रेडियो प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं वो गाने जो अक्षर अ से शुरू होता है और वो भी ओल्ड इज गोल्ड मेलोडीज में 50s और 60s का सुपर डुपर हिट गाने आप सुनते हैं ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में। और मैं बात करूंगा आज 1957 की एक खास बात। जी हाँ, 1957 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रानी रूपमती। इस फिल्म में उस समय को दर्शाया गया था जब अकबर हिंदुस्तान पर राज करते थे। उस समय की एक प्रेम कहानी रानी रूपमती और बाज बहादुर की, जिसका जिक्र आज के इस एपिसोड में होगा। तो दिल थाम के बैठिए और सुनिए ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम को। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे कहानी, वो भी प्रेम कहानी रानी रूपमती की, आपके लिए खास। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। खुश रहो और खुशियां बांटो।

जी हाँ, आ लौट के आजा मेरे मीत, ये बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे रानी रूपमती एल्बम से। जी हाँ, उस समय रानी रूपमती फिल्म का ये गाना बहुत पॉपुलर था और आज भी आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए, गीतकार भरत व्यास का लिखा, मुकेश की आवाज और एसएन त्रिपाठी का संगीत, 1957 का ये सुपर डुपर हिट गाना आपने अभी सुना। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबों का सफर, जहां आप सुनते हैं वो बातें कुछ अनकही और कुछ दिल ने कहा। और मैं हूं आपका हम सफर सानी, रानी रूपमती की कहानी आज हम सुनाएंगे आपको। जी हाँ, एक सच्चे प्रेम कहानी का नाम है रानी रूपमती। और सुना है सच्चे प्रेम को पूरे मन से जीने और निभाने वाले बहुत कम ही लोग हुए हैं इस धरती पर। जब कभी प्रेम कहानियों की बात चलती है, तब आज भी मध्य प्रदेश स्थित मंडू के लोग रानी रूपमती और बाज बहादुर का नाम बड़े गर्व से लेते हैं। रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की प्रेम कहानी एक ऐतिहासिक धरोहर है। विद्यांचल पर्वत पर बसे मंडू की पहाड़ियों पर आज भी रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्यार के स्वर गूंजते हैं। जी हाँ, युद्ध, प्रेम, संगीत और कविता का अद्भुत मेल है इस जादुई प्रेम कहानी में। अब आगे प्रेम कहानी में कौन कौन सा रंग आता है वो कुछ देर में, लेकिन अभी आपको सुनाता हूँ एक सुपर ड्यूपर हिट गाना, अ अक्षर से शुरू होने वाला 1960s का ये गाना अभी आपके लिए। कहते हैं ना, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। जब प्रेम होता है तो आगे क्या होगा ये कौन सोचता है। जी हाँ, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत अभी आपके लिए, ये वक्त फिल्म का खूबसूरत गाना जिसे आवाज दिया है आशा भोसले ने और साहिर लुधियानवी का कलम इस पर चला है। आप

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर ख्वाबों का सफर, जहां आप सुनते हैं वो बातें कुछ अनकही और कुछ दिल ने कहा। और मैं हूं आपका हम सफर सनी, ख्वाबों का सफर इस रेडियो प्रोग्राम में। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रेम कहानी रानी रूपमती की। रूपमती मालवा की गायिका थी और सुल्तान बाज बहादुर उनसे प्रेम करते थे। दरअसल रानी रूपमती का रूप वास्तव में उनके नाम के जैसा ही था और रूप सौंदर्य के साथ उनकी आवाज भी बड़ी सुरीली थी। वो अच्छा गाना गाती थी। बाज बहादुर को यही उनकी अदाएं भा गई।
1: बाज बहादुर मंडू के अंतिम शासक थे। रूपमती किसान पुत्री और गायिका थी।
0: उनकी आवाज के मूरित बाज बहादुर ने अपने दरबार में ले आए और दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। लेकिन जब रानी की इन खूबियों के बारे में शहंशाह अकबर को पता चला तो कहानी में एक नया मोड़ आया। अब ये अच्छा है या बुरा है इसके बारे में आप ही सोचिए। लेकिन अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ 60s का एक सुपर डुपर गाना, जो उस समय बहुत ही फेमस था। हर घर में ये गीत बजता था। वक्त फिल्म का गीत शाहिर लुधियानवी का लिखा, मन्नाड़े का गाया, म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि। जी हाँ, आप सुने हैं रेडियो पुनेरी 107.8 एफएम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: यार तुम भी तकल्लुफ करने लगे, बड़े अफसोस की बात।
1: खाना वाना तो होता ही रहेगा, महफिल कब गर्म होगा?
2: महफिल भी जमेगी तो जल्दी रख।
3: दादाजी आज तो आपको गाना सुनाना पड़ेगा।
2: यार अब बुढ़े हो गए, गाना वाना पुरानी बात।
1: और तुम बुढ़ा हो गया, हम तो नहीं हुआ। सुनाओ, नखरे मत करो। ओ भाभी जान।
4: जी भैया।
1: हो तुम्हारा शोहर बुढ़ा हो गया था, हम इसको जवान करता है।
2: अच्छा, लक्ष्मी सामने है तो मैं जवानों का जवान।
3: लो सुनो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर, जहां आप सुनते वो बातें कुछ अनकही और कुछ दिल ने कहा। मैं हूं आपका हम सफर सनी, खाबो का सफर इस रेडियो प्रोग्राम में। और हम बात कर रहे थे रानी रूपमती की एक प्रेम कहानी। भाई बहनों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया कि जो एक बहुत बड़ा बदलाव का कारण बना। राजा अकबर को जब रानी रूपमती के बारे में पता चला तो वो रूपमती पर मोहित हो गए। अब ये प्रेम कहानी परवान चढ़ने से पहले ही खत्म हो गई। रूपमती को पाने की इच्छा से अकबर ने बाज बहादुर को एक पत्र भेजा, जिस पर लिखा था कि रानी रूपमती को दिल्ली के दरबार में भेज दो। इस पत्र को पढ़कर बाज बहादुर क्रोधित हो गए और उन्होंने अकबर को पत्र लिखकर कहा कि वो अपनी रानी को उनके यहाँ भिजवा दे। अब ये तो ऐसे हुआ ना कि नहले को धैला। अपने पत्र का ऐसा जवाब पढ़कर अकबर आग बबूला हो गया। अहंकार और गुस्से से भरे अकबर ने अपने सिपाही सालार अधम खां से मालवा पर हमला करने को कहा। बाज बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ उसका मुकाबला किया। इसके बाद भीषण युद्ध हुआ और आदम खान ने बाज बहादुर को बंदी बना लिया। इसके बाद उसके सिपाही रानी रूपमती को लेने मंडू की ओर चल पड़े। लेकिन इस बात का जब रानी रूपमती को पता चला तो उन्होंने खुद को अकबर के हाथों में सौंपने से अपनी जान देना बेहतर समझा और रानी रूपमती हीरा निगल कर अपनी ई लीला समाप्त कर ली। जब रानी की मौत का समाचार अकबर को मिला तो उसे बहुत दुख हुआ। वो पछतावे की आग में जलने लगा। अब क्या करे जब रूप और मति दोनों नहीं रहे। जिस रंग रूप पर अकबर मोहित था और उसी जगह एक बेरंग अंधकार छा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रेम कहानी पर आधारित एक सुपर डुपर हिट गाना जो शुरू होता है अ अक्षर से, आपको सुनाते हैं और फिर आगे की कहानी आगे सुनेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: ठहर मोहिनी, देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

0: का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर।
1: आता है चंद्रमा रात आदि, रह न जाए तेरी मेरी बात आदि। क्या खूबसूरत गाना था उस समय का, और आज भी लगता है जैसे ही सुनते कोई प्रेम कहानी की बहुत ही सुंदर चित्रण इस गाने के अंदर हो रहा है। तो भरत व्यास का लिखा, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये गीत, जिसे संगीत से सवारा था रामचंद्र और फिल्म थी नवरंग। जी हाँ, आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खबोखा सफर, जहाँ आप सुनते हैं वो बातें कुछ अनकही और कुछ दिल ने कहा। और मैं हूँ आपका हम सफर सनी, खबोखा सफर इस रेडियो प्रोग्राम में। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेम कहानी रानी रूपमती की। अकबर को बहुत दुख हुआ और अब कर भी क्या सकते हैं, तो अकबर ने बाज बहादुर को कैद से आजाद कर दिया। तब बाज बहादुर ने कहा कि वो वापस अपनी राजधानी सारंगपुर जाना चाहते हैं, तो अकबर ने उसे सारंगपुर भेज दिया। सारंगपुर वापस आने पर बाज बहादुर ने रानी की मजार पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद तो अकबर को अपने किए पर काफी शर्मिंदगी हुई। अकबर पश्चाताप करने के लिए सन 1568 में सारंगपुर के समीप एक मकबरे का निर्माण कराया। बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर ने लिखा, आसिक ए सदीक रूपमती की समाधि पर शहीद ये वफा लिखवाया। अब क्या कहे क्या ना कहे, बात ही कुछ ऐसी थी जहां अकबर को कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जितना उन्होंने समझा इस प्रेम कहानी को, उसने उस भाव को उस समाधि पर और मकबरे पर ये शब्द लिखे। आइए, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो और खुशियां बांटो।

कमर जलालाबादी का लिखा हावड़ा बीच फिल्म का आशा भोसले का गाया हुआ ओपी नैयर का संगीत बद ये गीत 1858 का आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबो खा सफर, जहां आप सुनते हैं वो बातें कुछ अनकही और कुछ दिल ने कहा। और मैं हूं आपका हम सफर सनी खाबो का सफर इस रेडियो प्रोग्राम में। आइए आगे, जब अकबर ने मकबरा बनाया और रूपमती की समाधि, यहीं पर उनकी प्रेम कहानी समाप्त नहीं होती है। इसके बाद तो ये प्रेम कहानी लोगों के दिलों में बस गई, इसीलिए आज मंडू मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटक स्थल बन चुका है जो रानी रूपमती और बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। यहाँ के खंडर और इमारतें हमें इतिहास के उस जरोखों का दर्शन कराते हैं जिसमें हम मंडू के विशाल समृद्ध विरासत से रूबरू होते हैं। रानी रूपमती का किला इनके प्यार का गवाह है। रानी रूपमती को राजा बाज बहादुर इतना प्यार करते थे कि रानी रूपमती के दिल की हर बात समझ जाते थे। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार के साक्षी मंडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर बना रानी रूपमती का किला है। कहते हैं कि रानी रूपमती नर्मदा नदी को देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी, इसलिए राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती की इच्छा का ध्यान रखते हुए रानी रूपमती किले का निर्माण करवाया था। रानी रूपमती के किले से नर्मदा नदी नजर आती है। कहा जाता है कि रानी रूपमती हर रोज स्नान के बाद वहां पहुंचती और नर्मदा जी के दर्शन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती को बेहद प्यार करते थे, शायद इसीलिए रानी रूपमती के महल तक पहुंचने से पहले राजा बाज बहादुर के महल को पार करना होता था। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती की रक्षा के लिए ये सब करते थे, इसीलिए शायद आज भी रानी रूपमती के किले को राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी का प्रतीक समझा जाता है। तो चलिए, प्रेम कहानी में से ये एक अनूठा प्रेम कहानी जो हमने आपको सुनाया, और जाते जाते एक अनूठा गजल आपको सुनाते हैं प्रेम पर। जी हाँ, फयाज हाशमी का एक गजल आपको सुनाते हैं, राग यमन कल्याण पर आधारित। ये गजल बहुतों ने अपनी आवाज में इसे गाया है, जैसे कि भूपेन हजारिका, आशा भोसले, फरीदा खातून और लेटेस्ट जो सिंगर हैं अरिजीत सिंह ने भी इसे अपनी आवाज में गुनगुनाया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं ये गजल और आशा भोसले की आवाज में, और मेरा वादा है कि इस गजल को आप सुनकर खो जाएंगे, और जितनी बार सुनेंगे उतनी बार खो जाएंगे। आज जाने की जिद ना करो। इसी के साथ मुझे यानी आपका हम सफर सनी को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा, आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: दीवाना,
3: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
3: दो दीवाने शहर में,

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर। तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।
1: इतिहास से, भूगोल से,
2: समाज से, संस्कार से,
1: आधुनिकता से और विचार से,
2: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
1: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
3: अतुल्य भारत।
2: चलिए आपको बताते हैं
1: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
2: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
1: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
4: क्या आपको पता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक अभियान चंद्रयान 1 ने दुनिया को सबसे पहले बताया कि चंद्रमा सूखा नहीं है। चांद पर पानी यानी लूनार वाटर खोजने का क्रेडिट भारत को ही दिया जाता है। इस मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था। यह अगस्त 2009 तक अंतरिक्ष में सक्रिय रहा था। इस यान को पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV के एक परिवर्तित संस्करण वाले रॉकेट की सहायता से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था और इसके साथ ही भारत चांद पर यान भेजने वाला 6ठा देश बन गया।
1: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
2: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
1: जय भारत।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: एक्यूप्रेशर देताली पात्र परिचय वरदान पंकज दृष्टि आकाश वेदांत यश और आदित्य लेखिका सुधापुरी।
3: चलो चलो आज नुक्कड़ नाटक खेलते हैं।
4: हाँ बड़ा मजा आएगा, और अगर अच्छा गया तो हम अपनी सोसाइटी के लोगों को बुलाकर उन्हें दिखाएंगे।
3: ठीक है,
5: मैं भागकर अपनी दादी की ढोलक ले आता हूँ।
6: ठीक है, और मैं मंजीरे।
7: बाकी हम सब तालियों की एक मधुर ताल बजा बजा कर बीच बीच में संगीत देंगे।
4: मतलब कैसे?
7: हम ऐसे ताली बजाएंगे ना, एक दो तीन।
8: ठीक है, देखो हम सब उधर से ताली बजाते बजाते आएंगे और इधर आकर एक गोला बना लेंगे, फिर अपनी अपनी बात कहेंगे एक एक बार बीच में आकर।
6: दीदी उस दिन मैं कुछ कविताएं लिख रहा था, उन्हें भी इस्तेमाल कर लेंगे।
8: ठीक है, हम सब कुछ कुछ लिख के लाते हैं और फिर सबके आइडिया को मिलाकर एक नुक्कड़ नाटक तैयार करते हैं।
3: दीदी इस बार हम अपने नाटक में एक डांस भी रखेंगे।
4: हाँ पर कोई लोक नृत्य।
9: ठीक है, सबसे मजा तो गरबा में आता है, मुझे तो छोटी छोटी डंडियों के साथ डांस करने में बहुत मजा आता है।
5: इस डांस को गुजरात के नवरात्र में हर सोसाइटी या कॉलोनी में किया जाता है।
6: ओ तब तो पूरे पूरे पार्क इसके लिए सजे होते होंगे।
8: हाँ पता है, कई पंडाल भी खास इसी नृत्य के लिए सजे होते हैं और हर उम्र के लोग मिल मिल के साथ डांस करते हैं। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, बस जिस किसी को भी डांस आता है वो साथ में मिल जाता है।
4: तो हमारे राजस्थान में घूमर भी तो इसी तरह का नृत्य होता है।

0: क्या?
1: हाँ, कई समानताएं हैं। दोनों गुजरात का गरबा और डांडिया घूमर जैसे ही गोल गोल एक दायरे में होता है। दोनों ही खुशी के मौके पर परिवार में सब मिलकर करते हैं।
2: पर एक बात मुझे भी पता है।
3: क्या? गरबा तो ताली बजा बजा कर होता है और डांडिया छोटी छोटी डंडियों से।
2: चलो, बात तय हुई, सब कल ही कुछ लिख के लाएंगे और हम उधर पार्क के उस कोने में रोज प्रैक्टिस किया करेंगे। पर आज का समय यूं ही वेस्ट नहीं करते, आओ हम तरह तरह की तालियां बजाने की प्रैक्टिस करेंगे।
4: हाँ दीदी, अलग अलग ट्यून निकाली जा सकती है तालियों की भी। देखो, मैं दो बार हाथ से मारूंगा और दो बार टेबल पर, तो देखो कैसा मजेदार लगता है।
3: ये सब करके तो मुझे सपने पिक्चर का वो गाना याद आ रहा है, आवार भवरे जो हौले हौले गाए।

0: मुझे भी ये गाना बहुत अच्छा लगता है। कितनी प्यारी तरह से बताया गया है कि हमारे प्रकृति में कितना मधुर संगीत भरा हुआ है।
1: बात फिर वही है ना, ध्यान।
2: आपका मतलब है जो हम योग में सीखते हैं?
1: और क्या, जब साइकिल चलानी सीख ली तो कोई भी मॉडल हो तो चला सकते हैं ना, क्यों?
3: या तैरना सीख लिया तो कोई भी तरण ताल हो, क्या फर्क पड़ता है?
4: या क्रिकेट आता हो तो कोई भी मैदान,
1: या बैडमिंटन आता हो तो कोई भी बैडमिंटन कोर्ट,
2: या पढ़ना आता हो तो कोई भी किताब।
1: अरे बस बस बस, लगे मस्करी करने।
2: पर एक बात है, ये हमारा ऐसे ताली बजाना तो मुझे योग के एक्यूप्रेशर की याद दिलाता है।
0: हाँ मुझे भी।
1: तो कई बार लोग किसी भी ताल पर ताली बजाकर बगीचों में भजन वगैरह गाते नहीं दिखते क्या?
2: तो ये भी एक तरीका हुआ तनाव दूर करने का।
1: वो तो है ही, अभी ही देख लो, हम सब ने अलग अलग तरीके से तालियां बजाई हैं, तो कितनी ताजगी सी भरी हुई लग रही है।
5: हाँ बिल्कुल ठीक,
4: सही है।
1: यानी अगर हम नुक्कड़ नाटक करते भी हैं, तो नाटक का नाटक और एक्यूप्रेशर का एक्यूप्रेशर होगा।
6: यानी एक पंथ दो काज।
3: जी नहीं, एक पंथ हजारों काज।
1: बच्चों ये हंसने की बात नहीं है, अगर हम कहें कि ताली बजाने से स्वास्थ्य को लाभ होता है तो यह मजाक लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल सही है और लाभदायक भी।
5: वो कैसे दीदी?
1: तुम सबने देखा होगा, आमतौर पर हम किसी को खुश करने या फिर प्रोत्साहित करने के लिए ताली बजाते हैं।
2: तो खुश और उत्साहित होने पर हम खुद भी तो ताली बजाते हैं।
6: बहुत से लोग गाते हुए भी ताली बजाते हैं।
1: बिल्कुल ठीक, ताली बजाने में मजा आता है, इसलिए बच्चे ताली बजाना पसंद करते हैं।
6: हाँ दीदी, मेरे पापा कहते हैं ताली बजाना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है।
1: वो इसलिए कि ताली बजाने से हाथों के सारे बिंदु दब जाते हैं और धीरे धीरे शरीर में व्याप्त रोगों का सुधार होता है।
3: मेरी नानी रोज कई देर तक ताली बजाकर भजन करती है, कहती है ताली बजाने से आपको हृदय रोग और अस्थमा संबंधित समस्याओं से राहत पाने में बहुत मदद मिलती है।
4: और मेरे दादाजी कहते हैं हृदय, लिवर, फेफड़ों आदि से जुड़ी नसों के लिए यह बहुत मददगार साबित होता है।
1: वो इसलिए कि अगर आप ताली बजाते हैं तो नसों को बेहतर कार्य करने में मदद मिलती है, इससे आप बेहतर और अधिक आराम महसूस करते हैं।
7: मेरे स्पोर्ट्स के सर बता रहे थे कि ताली बजाना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि यह आपके शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं को मजबूत करता है जो किसी भी बीमारी से आपके शरीर की रक्षा करते हैं।
1: वैसे भी यह बच्चों में कौशल बढ़ाने और एकेडमिक प्रदर्शन को सुधारने में मदद तो करता ही है, मतलब ताली बजाना।
2: हमारी सोसाइटी में तो कुछ अंकल रोज ताली बजाते हैं। एक ने बताया था ताली बजाने से रक्त संचरण बढ़ता है और नसों तथा धमनियों से खराब कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ सारे अवरोध हट जाते हैं।
0: मैंने एक मैगजीन में भी पढ़ा था, अगर आप एक दिन में 1500 बार ताली बजाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। और यही नहीं, हाथ से ताली बजाने से बच्चों का हस्त कौशल सुधरता है, जिससे उनकी लिखावट साफ हो सकती है, वे बेहतर लिख सकते हैं और स्पेलिंग संबंधित त्रुटियां भी कम होती है।
1: ये। अरे मैंने तो खुद करके देखा है, हर रोज भोजन करने के बाद 1 घंटे के लिए ताली बजाएं। इससे आप गर्मी महसूस करेंगे और आपके हाथों और पैरों पर पसीना भी आ सकता है। बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डिप्रेशन, अस्थमा, जुखाम, गठिया, सिर दर्द, अनिद्रा और बालों का झड़ना आदि बीमारियों का इलाज ताली बजाने से किया जा सकता है।
3: तो क्यों साथियों, अब तो हम कह सकते हैं ना?
1: क्या?
3: वही, ताली बजाने से एक पंथ और हजारों काज होते हैं।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए

0: चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, रोज की ये मुलाकात है, ऐसा लगता है कि हम और आप, हमारी जो जीवन है वो एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन बहुत से दर्शक जो नए जुड़ रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। जिंदगी अगर हम देखें तो कई बार बहुत सी ऐसी ऑब्स्टिकल्स लेकर आती है, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस लेकर आती है जो हमें लगता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं और हम उन्हें पार नहीं कर पाते। कई बार वो आसानी से हो जाती है, हमारा अपना मेंटल मेकअप ऐसा होता है, लेकिन कई बार वो बहुत हावी हो जाती है। तो ये जो आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी बातचीत का सिलसिला जिसमें बहुत से हम सिचुएशंस को देखेंगे, जिंदगी के उन पड़ावों को देखेंगे जहां हम कहीं रुकने लग जाते हैं या उन्हें पार करते करते हम बहुत थक जाते हैं। तो क्या कोई आसान तरीका है? क्या मेरे सोच में, मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है कि वो सिचुएशंस मुझ पर हावी ना हो? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जिस तरह से अब लोग जुड़ते गए हैं अवेकनिंग के साथ और आप भी बहुत से लोगों के साथ मिलते गए हो, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस? लोगों का
1: एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल, बिकॉज जहां जहां भी आप जितने भी लोगों से मिलते तो वो नए नए अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज और कहीं ब्रह्मा कुमारीज परिवार का अब हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि परिवार वो ही होता है जहां हमारी सोच एक दूसरे के साथ मैच करती है। और इतने सारे भाई बहने, लाखों की संख्या में कहें, जो रोज हमसे मिलते रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम द्वारा, वो सोच में परिवर्तन, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जोड़, जो आज तक परिवर्तन की बात सिर्फ सोच में थी, वो प्रैक्टिकल में आने लगे, क्योंकि परमात्मा की शक्ति भी मिलती गई। ज्ञान तो है, सभी के पास है, चाहते भी हैं परिवर्तन करना, लेकिन सिर्फ जो हिच आ रहा था वो कहा कि मुझे मालूम है लेकिन होता नहीं है। लेकिन जहां परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा तो वो वाला भी जो स्टेप था वो क्रॉस हो गया, एंड देन लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज यू आर एबल टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। यू नो, बाहर तो जो करना चाहते हैं वो हो जाता है, लेकिन अंदर जो फील करना चाहते हैं वो कई बार कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। लेकिन क्योंकि जिन भी भाई बहनों ने अपने ऊपर वो मेहनत की है, सिर्फ प्रोग्राम देखने से ये नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम को एक स्टडी के रूप से लिया है, एंड आई हैव मेट मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो प्रोग्राम के साथ जैसे एक नोटबुक लेकर बैठते हैं और उसको नोट्स बनाते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं और फिर तुरंत उसको नेक्स्ट डे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप उसको अप्लाई करते हो। एंड ज्ञान इतना ब्यूटीफुल है क्योंकि जो परमात्मा ने डायरेक्ट नॉलेज दी, तो नॉलेज तो बहुत सिंप्लीफाई हो गई, लेकिन जब तक हम उसको यूज नहीं करते तो हमें उसका बेनिफिट नहीं पता चलता। तो जिन्होंने उसको यूज करना शुरू किया तो उनको वो बेनिफिट मल्टीफोल्ड मिला है। एक है कि आप देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, नेचुरल है, परमात्मा की दी हुई बातें हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, समझ भी आ जाते हैं, लेकिन वंडर तब क्रिएट होता जब उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। सो अगेन आई वुड से टेक इट बैक टू योर लाइफ टुमारो। यू नो, नॉट दैट आप आधा घंटा टीवी देखते हैं, आप देखते देखते कहते हैं या इट्स वेरी गुड, इट सीम्स गुड, कई बातें लगती हैं नो बट इट्स नॉट पॉसिबल, कई बातें लगती हैं येस इट्स पॉसिबल, बट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल जस्ट गो एंड ट्राई इट आउट टुमारो, एंड ट्राई करने के बाद डिसाइड करें कि पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। सिर्फ सुनने से नहीं डिसाइड करें, क्योंकि जहां इतने लोग वो पॉसिबल कर पाए हैं लाखों की संख्या में, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? इट्स जस्ट दैट मेरा वो एक स्टेप बचा है, एंड दैट इज गोइंग टुमारो एंड ट्राइंग दिस आउट। जब हम कहते हैं नॉट पॉसिबल या वेरी डिफिकल्ट, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने मन को कह दिया लेट इट बी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये इनके लिए ठीक है, ये लोग जो बात कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता मेरे ऑफिस में क्या होता है, या इनको क्या पता मेरे घर में कैसे लोग हैं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उससे फिर हम अपनी ही प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं। सो व्हाटएवर वी शेयर इट्स फॉर एवरीवन, टेक इट बैक विद यू टुमारो, अपने ऑफिस में इसको लेकर जाएं, अपने घर पर लेकर जाएं, देन द मैजिक स्टार्ट्स। सो देन आई हैव बीन मीटिंग सो मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनके लिए फिर ये मैजिक हुआ है, वो फील करते हैं, ये उनका अनुभव है कि उनकी पूरी सोच में परिवर्तन आया, क्योंकि परिवर्तन यही हुआ कि औरों को देखने की बजाय
0: खुद को
1: अपने को देख,
0: देखना।
1: बस वो एक ही तो स्टेप चाहिए था सिर्फ, लेकिन वो अंडरस्टैंड जब हो गया तो अपने को देखना शुरू किया, अपने को देखना शुरू किया तो अपने पर काम करना शुरू किया, और वो रियलाइज हुआ ये तो इजी है,
0: और
1: ये तो
0: सबसे बड़ी
1: पॉसिबल
0: बात
1: है।
0: वो आहा मोमेंट ये थी कि ओ अच्छा मैं अपने आप को देख सकता हूँ। यू नो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आपने आज जिस बात से हमने शुरू किया है कि बहुत से लोग हैं जो प्रोग्राम देख रहे होते हैं, अच्छा जरूर लगता है, लेकिन यही बात है कि मेरे लिए नहीं है। तो ये इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस आपको हम यही कहना चाहेंगे, जो नए लोग जुड़े हैं, जो बहुत वक्त से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी कि ये जो आने वाली जो श्रृंखला हमारी रहेगी जिस पर हम बातचीत करेंगे, आप ही की समस्याओं को लेने वाले हैं, आप ही की वो सिचुएशंस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हुए, या अगर ज्ञान नहीं भी जान पा रहे हैं आप, नहीं जानते थे, तो इस पूरे बातचीत के दौरान आप तक वो बात जरूर पहुंचेगी। बात हम यही करते हैं शिवानी, यही से शुरू करते हैं कि चलिए समझ में आ गई थी, जिंदगी समझ में आई, बहुत सी बातें कि मैं जिम्मेदार हूं अपने ऊपर, लेकिन अभी भी जब हम सिचुएशंस को देख रहे होते हैं, और चैलेंजेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, आने वाला दौर चाहे हम ग्लोबली भी देखें और चाहे पर्सनल लेवल पर भी देखें, तो बहुत तेजी से बदल रहा है, हम तैयार ही नहीं होते हैं। और मतलब हमने अपने आपको बड़ी मुश्किल से एक सिचुएशन के लिए तैयार किया होता है, वो तीसरी सिचुएशन इतनी बड़ी खड़ी हो चुकी होती है कि
1: True.
0: हम फिर घबराने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो प्रिपरेशन है, क्या मेरी प्रिपरेशन उतनी है या कैसे तैयारी करनी है?
1: We cannot deny कि challenges are getting bigger day by day. कहीं ना कहीं हमने बहुत मेहनत करके अपने अंदर शक्ति लाई होती है वो जो प्रेजेंट परिस्थिति है उसको क्रॉस करने के लिए, और अभी वो शक्ति उतनी भरी नहीं होती कि मेरे सामने एक उससे कई गुना
0: बड़ी
1: बड़ी
0: सिचुएशन आ
1: परिस्थिति
0: जाती
1: खड़ी हो जाती है. लेट्स टेक अ लिटिल थिंग के वट आर द सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा हमारा सिचुएशन पर होता है और सारा दिन माइंड में वो सिचुएशन की लिस्ट जैसे के चलती ही जाती है. सिचुएशन जो हो चुकी है, परिस्थितियां जो वर्तमान समय मेरे जीवन में हैं, और कुछ परिस्थितियां जो मैं ऐसे ही क्रिएट करती हूँ जो मुझे लगता है हो जाएंगे,
0: हाँ होने
1: यू नो
0: वाली है
1: ये
0: आने
1: शायद
0: वाली।
1: मेरे साथ हो ना जाए, या जैसे जॉब इनसिक्योरिटी है, तो अभी जॉब है तो जॉब इज वेरी नाइसली देयर एवरी डे, बट द थॉट, सो आई एम ऑलरेडी क्रिएटिंग द सिचुएशन इवन दो द सिचुएशन इज नॉट देयर. तो नोइंग हाउ टू फेस द सिचुएशन, लेकिन वॉट आर द सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हमारे जीवन के दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं. एक है मेरी पर्सनल और फैमिली लाइफ, और दूसरी है मेरी वर्क लाइफ,
0: प्रोफेशनल
1: चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे एक बच्चे के लिए उसकी वो स्टूडेंट लाइफ है, इट्स दैट लाइफ. तो अगर हम अपनी वर्क लाइफ को देखें, नाउ यू आंसर, आई विल क्वेश्चन यू, अगर हम अपनी वर्क लाइफ कर्म उस क्षेत्र को देखें जहां हम रोज कार्य करने जाते हैं, वट आर द सिचुएशन फॉर यू?
0: टॉप चैलेंजेस और द
1: या
0: सिचुएशंस?
1: सिचुएशंस चैलेंज, उसको चैलेंज बोले, प्रॉब्लम बोले, सिचुएशन बोले, वट एवर, बिकॉज सिचुएशन तो वही है, अब आप उसको किस रूप से देखने वाले हो वो डिपेंड करता है.
0: सी, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं, मतलब लाइक यू आर आस्किंग मी,
1: नो इन जनरल
0: हाँ
1: फॉर
0: मतलब
1: एनीबडी इन
0: जनरली,
1: वर्क लाइफ,
0: हाँ
1: या
0: जो अगर एक मीडिया पर्सन के रूप में भी, तो ये क्या, मैं फ्रीलांसर, सो रिसेशन का ये दौर जहाँ ऑलरेडी जिनकी फिक्स जॉब्स हैं
1: ट्रू,
0: उनको प्रॉब्लम आने वाली है, तो आई हैव दिस कंटिन्यूअस थिंग दैट इट्स ओके राइट नाउ, आई हैव वर्क, बट वॉट विल हैपन नेक्स्ट, बिकॉज हाउ रिसेशन इज गोइंग टू हिट, रिसेशन कैसे हिट करेगा मीडिया को हम नहीं जानते
1: हमें
0: हैं
1: नहीं पता.
0: अपने
1: एंड इट्स नॉट
0: ऊपर।
1: नेसेसरी मीडिया, इट्स फॉर एवरीबडी.
0: हाँ
1: लाइक इफ यू लुक एट इट इवन ग्लोबली, शायद ही कोई ऐसा देश है अभी जो इससे हिट नहीं हुआ है, शायद ही कोई ऐसा लेवल है सोसाइटी में जो इससे हिट नहीं हुआ है. चाहे आप यू आर टॉकिंग अबाउट द टॉप लेवल ऑफ सोसाइटी, और यू आर टॉकिंग एब्सोल्यूटली द सिंपल लेबर, इवन अ लेबर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क टूडे इज स्टक, यू नो. तो आप एक पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं जिसमें जॉब, रिसेशन, फॉर आर्थिक परिस्थिति.
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात बहुत से लोगों के साथ ये है कि मैंने अपना कंफर्ट जोन उसके साथ कर
1: दैट
0: लिया।
1: इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई, जॉब इनसिक्योरिटी
0: अच्छा,
1: हो
0: और
1: गई,
0: फिर मेरा जॉब जहां है वो बहुत कुछ मेरे बॉस पे डिपेंड कर रहा
1: तो माई बॉस, माई
0: है।
1: कोलिग्स, दीज आर ऑल द चैलेंजेस. देन ट्रांसफरेबल जॉब, चेंज ऑफ योर होल फील्ड, कई बार आपको एक जगह से उठाकर एकदम दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं. सो दीज आर चैलेंजेस एट वर्क, चैलेंजेस एट होम.
0: ओह, यू आस्किंग मी
1: नो एवरीवन,
0: पर्सनल, बेसिकली बहुत ज्यादा सिचुएशंस, अगर घर पे देखें तो बच्चों को क्या हम सही परवरिश दे
1: That's a
0: पा रहे
1: very
0: हैं,
1: big
0: ये
1: thing.
0: मेजर
1: In many programs, wherever I've asked people, what's your top concern? कहते हैं पेरेंटिंग. वैसे पेरेंटिंग जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हुआ करता था, आज सबसे बड़ी चिंता का विषय
0: क्वेश्चन
1: बन
0: मार्क
1: चुका
0: लगा लिया
1: है.
0: हमने ऊपर,
1: यस
0: क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, इतनी सारी बातें हो रही होती हैं, पीयर प्रेशर बच्चे के ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है. बच्चे के करियर को लेकर फाइनेंशियल जो चीजें आएंगी वो एक बहुत प्रेशर लेके रखते हैं पेरेंट्स का, आजकल का जनरल जो ये है. मेरे लिए भी अगर मुझसे पूछो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे सामने. देन रिलेशनशिप्स, इफ यू आर सिंगल
1: रिलेशनशिप्स.
0: पेरेंट, इफ यू आर यू नो इवन इफ बोथ द पेरेंट्स आर देयर, कोई पेरेंट बाहर गया हुआ है विदेश में, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और वो सिंगल पेरेंटिंग में
1: डिवोर्स
0: जो
1: केस भी बहुत बढ़ गए.
0: हाँ मैक्सिमम ये चीजें जो होती जा रही हैं,
1: डिवोर्स है, सेपरेशन है, डेथ है,
0: और उसका पेन
1: तो वो तो फिर मेरा रिस्पॉन्स है. लेकिन सिचुएशन जब मेरे सामने आके खड़ी होती है, एन अनटाइमली डेथ, अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड, किसी पेरेंट के लिए या डेथ ऑफ एनी फैमिली मेंबर, एक डेथ तो एक डेथ है ही, विच कम्स एज अ वेरी बिग सेटबैक, जिसमें हमें लगता है कि ये परिस्थिति, मतलब मेजोरिटी पीपल आज कहते हैं, स्पेशली इफ इट इज डेथ ऑफ अ चाइल्ड और अ स्पाउस, अब मेरे जीवन जीने का तो कोई पर्पस ही नहीं रहेगा. यू नो, सो दैट सिचुएशन इज नॉट अ सिचुएशन, बट इट्स फॉर मेनी पीपल एंड ऑफ एवरीथिंग. क्योंकि हम समझते कि वहां तो एंड हुआ ही हुआ उनके लिए, लेकिन ये मेरे लिए भी दी एंड है. इसके बाद मेरे जीवन जीने का कोई पर्पस नहीं है, मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है. यू नो द वे पीपल से टू देमसेल्व्स, हाउ कैन आई बी हैप्पी, यू नो आई एम और आई एम नॉट बी हैप्पी, तो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैं खुश हो ही कैसे सकता हूँ, मुझे खुश रहने. सो सिचुएशन, सो डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप क्राइसिस, पेरेंटिंग, कई बार चेंज ऑफ सिटी, आपको आप बहुत समय से यू नो एक जगह पर सेट हैं, एक कंट्री में सेट हैं, या आप एक सिटी में सेट हैं, एंड सडनली
0: यू हैव टू गो.
1: पीपल आर नॉट एबल टू
0: और
1: टेक
0: वो
1: इट.
0: एकदम से क्या होता है, सिचुएशन आती है तब तो आप हेड ऑन फेस करते हैं, लेकिन जो उसके बाद का डिप्रेशन
1: आफ्टर
0: सीप इन
1: इफेक्ट,
0: करता है, ये मेजर प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है.
1: तो सिचुएशन उस टाइम नहीं है ना सिर्फ, वो एक सिचुएशन अब
0: लंबा
1: लंबा
0: हाँ
1: प्रोसेस है. तो अब अगर हम इन सारी परिस्थितियों को देखें, वर्क पे हमने देखा फाइनेंशियल, जॉब, बॉस, रिलेशनशिप्स, घर पर हमने देखा अगेन रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, डेथ, डिवोर्स, शिफ्टिंग, व्हाटएवर. इन सभी परिस्थितियों में, अब आप ध्यान से आंसर करना, आपके आंसर पर सब कुछ डिपेंडेंट है, इन सभी परिस्थितियों में कौन सी एक चीज कॉमन है? नहीं, मैं तो कॉमन है ही, क्या हो रहा है इस हर परिस्थिति में, जो कॉमन है हर परिस्थिति में है वो
0: चेंज
1: चेंज. सी, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, परिवर्तन, परिवर्तन. एंड लाइक यू सेड, वी आर नॉट रेडी फॉर चेंज, क्योंकि हमारा
0: इतना
1: एक
0: फिक्स्ड है.
1: कंफर्ट
0: हाँ
1: जोन.
0: जोन है
1: तो
0: कंफर्ट जोन.
1: हर परिस्थिति एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चेंज है. यू नो, नाउ द मिनट आई जस्ट लुक एट इट लाइक दैट, चेंज, चाहे चेंज इन रिलेशनशिप, चेंज, चाहे फॉर मी इट कुड बी कि यू हैव चेंज एज अ पर्सन. मैं आपको जो जानती थी इतने इतने साल, यू नो मेनी पीपल विल से, अब तो आप वैसे
0: बदल
1: रहे ही
0: गए.
1: नहीं,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: चेंज, चेंज. या आप मेरे साथ इतने साल थे, आज सडनली आप मेरे साथ नहीं है, चेंज. मेरा एक जीवन जीने की एक शैली थी, एक लाइफस्टाइल था, सडनली मुझे वो क्रैश हो गया, चेंज. सडनली मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा, चेंज. सो एवरी स्टेप जो चीज मुझे हिट कर रही है वो है चेंज. एंड समवेयर मोस्ट ऑफ अस आर नॉट रेडी फॉर चेंज, बिकॉज वी आर समहाउ, क्योंकि हमने अपने आप को उस दायरे के अंदर, चाहे वो मुश्किल वाला भी दायरा था, चाहे वो दर्द वाला भी दायरा
0: तभी
1: था,
0: हम
1: लेकिन
0: एडजस्टेड थे.
1: हम एडजस्ट
0: हाँ
1: कर चुके थे. यू नो, हम एडजस्ट कर चुके थे और हमें उसके साथ जीने की एक
0: आदत हो
1: आदत पड़ गई थी. इट वॉज माई हैबिट, इट वॉज हैबिचुअल, वेदर इट वॉज प्लेजेंट और नो वी डोंट नो, बट इट वॉज हैबिचुअल. लेकिन जहां वो चेंज आया तो इट हैज हिट मी. अब जैसे ही चेंज आएगा, लेट्स लुक एट योर सेल्फ, यू आर स्टैंडिंग दैट साइड.
0: लेकिन
1: हाँ,
0: चेंज के लिए एक और चीज, जो अगर अब चेंज की बात करते हैं तो बहुत लोग ये कहेंगे कि चेंज फॉर गुड और चेंज फॉर बैड, यू नो लाइक बहुत
1: चेंज
0: चेंज, इज दिस चेंज फॉर गुड और इज दिस चेंज फॉर बैड.
1: चेंज इज चेंज ना, हाउ गुड और बैड आई विल मेक इट नो.
0: या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
1: जो यहां से चेंज आया, सी चेंज तो सिचुएशन से आ रहा है ना, चेंज बाहर है, या तो किसी व्यक्ति के अंदर या आपकी पोजिशन, चेंज बाहर से आ रहा है. गुड और बैड किस पे डिपेंड करता?
0: मुझ पे
1: एट एवरी स्टेप जहां आपके सामने कुछ हिट करता है, इफ यू कैन जस्ट टेक आउट 1 मिनट एंड जस्ट स्टॉप एंड सी, इस समय क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है. हमेशा कुछ एक बातें होती हैं जो मेरे कंट्रोल में है, कुछ एक चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं
0: नहीं
1: है. डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, एनीथिंग. माई कंट्रोल?
0: नहीं
1: नो. वॉट इज इन माई कंट्रोल? चेक. फाइनेंशियल क्राइसिस, माई कंट्रोल? जॉब चला गया आज, माई कंट्रोल? नो. तो मेजोरिटी, 95% से ज्यादा परिस्थितियां जो आपको मिलने वाली हैं, जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कंफर्टेबल ही हो जाते हैं ना, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं.
0: उसको हमें पता
1: लेकिन
0: भी नहीं चलता कि वो चेंज हुआ है.
1: एक ट्रैफिक जैम में भी अटकना एक परिस्थिति आज है ना. आप कहते हैं इतनी मुश्किल, इतने हाईवेज बने बने, जब तक बने तब तक वी स्टिल अगेन स्टक. सो अगेन यू आर स्टक इन दैट, बट इन योर कंट्रोल? नॉट इन योर कंट्रोल. वॉट इज इन माई कंट्रोल इन एवरी केस? क्या कंट्रोल में है और क्या कंट्रोल में नहीं है?
0: इवन माई थॉट प्रोसेस, सी आई वुड हैव सेड,
1: यस.
0: लेकिन वो भी तो कंट्रोल में नहीं होता,
1: हाँ.
0: क्योंकि वो जब हमें टेक ओवर कर जाता है, जैसे स्पेशली अगर किसी का जॉब छूटा. आई नो समबडी जिनको सडनली शी वॉज टोल्ड कि आपको 6 महीने पहले उन्हें टॉप का लीडर बनाया गया, मतलब कंट्री हेड, और विद इन 6 मंथ्स उन्हें बोला गया कि नहीं, यू नॉट डूइंग योर वर्क, आपको छोड़ना पड़ेगा. उसका सब कुछ उनका उस पर डिपेंड कर रहा था. वो डिप्रेशन सीप इन ऐसे करता है
1: बहन, तो
0: इस.
1: एग्जैक्टली वही हुआ ना. ये सब कुछ आपका क्रैश कर गया. सपोज मेरे मेरे आसपास सब कुछ क्रैश कर गया. लेट मी लुक एट द वर्स्ट सिचुएशन दैट कैन हिट मी, एंड वो ये है कि एक पल में मेरा सब कुछ जो मैं समझती हूँ मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार भी, लेट से 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया. अगेन नॉट इन माई कंट्रोल, बट वॉट इज इन माई कंट्रोल इवन नाउ?
0: कि मैं उसको कैसे लेती हूँ सिचुएशन में.
1: बिकॉज फाइनली, लेकिन हम क्यों नहीं उस तरफ देख पाते कि वॉट इज इन माई कंट्रोल, क्योंकि हमारा सारा अटेंशन उन बातों के ऊपर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. आज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, सब लोग लेकिन आपस में बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं? सारा जो एनर्जी लग रही है वो किस पर है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड. प्रॉब्लम ही ऐसे, सिचुएशन ही ऐसे. टॉक अबाउट सोल्यूशन. अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, हो गया, लेकिन हम डिप्रेशन में चले गए. कौन सा लॉस ज्यादा बड़ा?
0: हमारा
1: ये किसने क्रिएट किया था?
0: हमने खुद.
1: ठीक है, दुनिया में जिन लोगों ने जो किया सो किया, जिसकी वजह से मेरा सारा धन चला गया, लेट्स से वर्स्ट केस कंडीशन, लेकिन ये जो लॉस किया ये किसने क्रिएट किया? तो एक लॉस तो हुआ हुआ, ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो ये लॉस हुआ कि आई गो इनटू डिप्रेशन, कल को इफ आई गो इनटू डिप्रेशन, सपोज इट गेट्स वर्स एंड मुझे हाइपरटेंशन या यू नो हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ, अब ये लॉस किसने किया? मैंने किया. अगर मैं अपने दर्द से बाहर नहीं निकल के आ पाती और मैं घर के लोगों के साथ उस बात को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन या झगड़े और वो सब करते रहूं और हम आपस में दूर हो जाएं, ये लॉस किसने क्रिएट किया? अब ये सब लॉस के सामने वो आपका फाइनेंशियल लॉस कितना बड़ा बैठता है?
0: और इनफैक्ट नो, यू नो व्हाट हैपेंस कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा लॉस होता है तो मैं ही चाहती हूँ कि एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि मेरा गुस्सा, मेरी फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड है. मेरे को जो हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टू मी.
1: फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. इफ आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग मी? एंड मे बी यू आर इन योर ओन पेन, यू सी. सो फॉर मी टू एक्सपेक्ट कि आप मुझे समझो, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही हूँ. तो इसलिए हर एक परिस्थिति में फिर भी येस द सिचुएशन इज वेरी बिग, क्वेश्चन इज कि अभी भी मेरे कंट्रोल में क्या है? मैं सारी अपनी अटेंशन उस पर फोकस कर दूं, इट्स लाइक मेरी एक चीज तो चली गई लेकिन तीन चीजें तो बची है ना. लेकिन क्योंकि मैं वो तीन चीजों का ध्यान न रख
0: कि वो
1: कर,
0: तो है ही,
1: हाँ,
0: उसको
1: फॉर
0: तो सोचा ही
1: ग्रांटेड
0: नहीं.
1: उनको लगती हूँ,
0: हाँ
1: आज मेरा पैसा चला गया लेकिन मेरी मन की स्थिति अभी भी ठीक है, मेरा तन अभी भी ठीक है, मेरा परिवार अभी भी ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया तो ये तो गया गया, साथ में कितना और नुकसान हुआ. क्यों नुकसान हुआ? सिर्फ क्योंकि आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन देयर. सिर्फ बिकॉज आई वॉज मोर. क्यों हुआ? क्यों हुआ? नॉट इवन लुकिंग एट द सोल्यूशन, ओनली लुकिंग एंड चर्निंग ओवर द प्रॉब्लम. सोल्यूशन हर परिस्थिति में है. ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली आपके सामने, कोई चैलेंज ही नहीं आने वाला जिसमें सोल्यूशन नहीं है. यस, इट जस्ट डिपेंड्स मुझे कितना टाइम लग जाता है उस सोल्यूशन तक पहुंचने में. और सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा? सॉल्यूशन भी कब दिखाई देगा, जब माइंड थोड़ा सा
0: हाँ नहीं तो
1: साइलेंट,
0: नजर, यस नजर
1: नहीं तो
0: नहीं
1: मैं
0: आता।
1: अपने दर्द में कौन सा सोल्यूशन दिखाई
0: ओहो
1: देगा, दर्द में
0: यस
1: तो सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई देगी, और जितना दर्द बढ़ता जाएगा प्रॉब्लम इतनी भी होगी ना,
0: बहुत
1: तो वो
0: बड़ी हो
1: प्रॉब्लम
0: जाएगी।
1: बहुत बड़ी हो जाएगी, और प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती जाएगी उतना हम सोल्यूशन से
0: दूर होते
1: दूर होते
0: जाएंगे।
1: जाएंगे। परमात्मा का जो ज्ञान हमें मिलता है राजयोग के द्वारा, उसका पूरा पर्पस ही ये है कि जैसे ही आप अटेंशन आपके कंट्रोल में जो है, एंड दैट्स ओनली वन थिंग, माई स्टेट ऑफ बींग, उस पर जैसे ही जाता है, तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटा देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम से बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कमजोर हो जाऊं, तो मेरे सामने, आफ्टर ऑल इट्स अ फाइट बिटवीन टू ना, प्रॉब्लम एंड मी, हम दोनों का आपस का संघर्ष है, ज्यादा शक्तिशाली कौन। लेकिन क्योंकि मैं इतनी कमजोर हो जाती हूँ, इतनी दर्द में चली जाती हूँ, तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं तो उसको देख के ही बैठ जाती हूँ।
0: इनफैक्ट यहां तो मुझे भी लगने लग गया कि हमें प्रॉब्लम कहना ही नहीं चाहिए। द वे यू सेड इट्स ओनली अ
1: एब्सोल्युटली,
0: चेंज।
1: इट्स द ओनली अ चेंज, इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ चैलेंज, उसको चैलेंज आप बोलो, बहुत बड़ी बात आ गई आपके सामने, आप उसको चैलेंज करके बोलो, प्रॉब्लम करके बोलते ही तो वो प्रॉब्लम ही एक लगने लगती है
0: एक
1: कि
0: मुसीबत छोड़ना, हजारों
1: हज़ार,
0: मुसीबतें।
1: यू नो, हमारी वोकैबुलरी भी ऐसे आ गई है। तो चेंज आएगा ही, देर इज ओनली वन थिंग, आई हैड रेड दिस समवेयर, वेरी ब्यूटिफुल, देर इज ओनली वन थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज
0: चेंज,
1: चेंज।
0: यस
1: सो
0: आई
1: इट्स
0: हैड
1: सो
0: आल्सो जस्ट।
1: ब्यूटिफुल। जब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि एक चीज है जो कभी रुकने वाली नहीं है, और वो है परिवर्तन, अब उसको मैं संघर्ष करूं उसके साथ, इट्स नो यूज, जस्ट बिकॉज आई थॉट जैसे चल रहा था वैसे बहुत अच्छा था, ऐसे ही क्यों नहीं चलता रहता ये, व्हाई डज दिस हैव टू चेंज, तो वो मेरे बोलने से या मेरे सोचने से रुकने वाला नहीं है। बट जैसे ही चेंज सामने आएगा, नाउ व्हाट डज इट डिमांड फ्रॉम यू, क्या चाहिए आपको,
0: मैं भी तो चेंज होनी चाहिए।
1: रिस्पॉन्स, एवरी चेंज, दिस चेंज कम्स
0: एक्शन
1: फ्रॉम यू,
0: रिस्पॉन्स।
1: रिएक्शन, राइट,
0: अच्छा एक चीज मैंने और भी पढ़ी थी, जैसे आपने कहा कि दिस वन थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ दैट इज चेंज, एंड उसके आगे ही था चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड। ये
1: इट इज,
0: बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है लोगों के
1: यस,
0: लिए। सो इस पर हम एक्चुअली पूरी बातचीत करना
1: क्योंकि
0: चाहेंगे।
1: चेंज, व्हेन विल इट बी फॉर गुड, जब उसको आप प्रॉब्लम ना देखकर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो, कि इस, क्योंकि वही तो परमात्मा हमें रोज बताते हैं कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत बहुत अच्छा। अब इम्पोर्टेंट मेरे लिए सिर्फ ये है कि मुझे इस सेंटेंस को, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य है, किसी मनुष्य आत्मा के नहीं, तो परमात्मा अगर ये स्टेटमेंट हमें दे रहे हैं, दैट मीन्स इट्स द ट्रूथ, दैट इज द फेथ। नाउ इफ आई रिजेक्ट द स्टेटमेंट, आई से ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भी हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा, देन इट्स ओवर फॉर मी, मैं उसको उस दृष्टिकोण से लूंगी ही नहीं। लेकिन जहां ये फेथ है कि परमात्मा ने ये कहा है, और ये सेंटेंस ऐसा है जो मुझे लगता है हर एक को पता है, यू गो एनी वेयर इट्स रिटन एवरीवेयर कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द गुड, लेकिन इसको बिलीव कौन कर रहा,
0: कोई नहीं कर पा रहे।
1: इसमें फेथ कितना है कि हाँ जो हो रहा है वो अच्छा। तो लेकिन परमात्मा के महावाक्य है, अगर मैं उस समय, जिस समय मेरे सामने वो चैलेंज आता, मैं अगर वो महावाक्य को अपनी स्मृति में ले आऊं और उसके बेसिस पे अब रिस्पॉन्स क्रिएट करूं, तो वो सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम ना लगकर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि अब इसमें मुझे क्या करना है। ये भी अग्री, एब्सोल्युटली अग्री, कि जो भी सिचुएशन आज आ रही है ये छोटी नहीं है, ये बड़ी है, कल को और बड़ी भी आ सकती है, लेकिन डज दैट मीन कि आई विल कंटिन्यू टू लिव माई लाइफ इन पेन, और इज देयर अनदर चोइस, दैट इज
0: पेन
1: वॉट
0: एंड
1: इज
0: फियर
1: इम्पोर्टेंट,
0: ऑल्सो,
1: ऑल द सेम थिंग,
0: कंटिन्यूअस डर सर शिवानी। आज की जो बातचीत हमने की है, सिचुएशंस हमारे सामने वो हैं जो हर व्यक्ति के जीवन की हैं, और कहीं ना कहीं एक ये

आग्रह किया था कि हम इस जो पूरी बात हो रही है ये सिर्फ बात के लिए नहीं है, हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा है, उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास जरूर करें। आज ही से, कल का भी क्यों इंतजार करें, आज ही से जो सिचुएशन अभी मेरे मुझे तंग कर रही है या जो सिचुएशन कल मेरे सामने आ सकती है, मेरी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू हो सकता है मेरे बॉस के साथ जहां ये तय होना हो कि मैं किस तरफ जाऊंगा, या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी बात हो सकती है जो डिसीजन लेना हो, अगर हम उसे एक चेंज के रूप में, एक परिवर्तन के रूप में एक्सेप्ट कर ले। गुड और बैड हम बाद में देखेंगे, आने वाले एपिसोड जो है उसमें हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे कि उसमें गुडनेस क्या है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन रही हो, और उसको हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये बातें भी जानेंगे। लेकिन आज के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसे अपने जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करके जो आप अनुभव करते हैं वो हमारे साथ शेयर करें। उसके अलावा अगर आप के पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है, आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पर जा सकते हैं और अपने सवालों के जवाब तलाश सकते हैं। अगर आप नजदीक के सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है कि जीवन में कोई भी परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मुसीबत जिसे हम अभी तक मानते आ रहे हैं, वो एक चैलेंज है, एक परिवर्तन है। इस थॉट को अपने साथ रखें, आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।
1: हाँ, और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। कहते हैं कि मनुष्य आदतें जब बनाता है तो वो अपनी सहूलियत के लिए बनाता है और कभी भी उसे बदलने की हिम्मत या क्षमता रखता है। लेकिन आज के इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, उसमें ये भी बात नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं हम अपनी उन्हीं आदतों के अधीन होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आदतों ने हमें ओवरटेक कर लिया है, ओवरपावर कर लिया है और हम खुद को, स्वयं को उसके आगे हारा हुआ मानते हैं और फिर उसकी स्वाधीनता स्वीकार करके खुद उसके अधीन हो जाते हैं या फिर कहें तो उसके आदि हो जाते हैं। लेकिन हमारी इस श्रृंखला में हमारी ये कोशिश है कि हम उन कारणों को जानें कि क्या ऐसा हो जाता है कि हमारी वो आदतें हम पर हावी हो जाती हैं और क्या हम उन आदतों को छोड़कर नई आदतें यानी पॉजिटिव जो हैबिट्स हैं उन्हें अपना सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ खास मुंबई से हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हर बार की तरह हमारी हम सफर है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बहुत से हमने ऐसी आदतों के बारे में बात की है इस पूरी श्रृंखला में। अभी तक हमने बहुत मोटी मोटी उन व्यसनों की बात की, उन एडिक्शंस की बात की जिनसे आज हर व्यक्ति जूझता नजर आता है और कई बार हमने ये भी देखा कि एक्सेप्ट ही कर लेते हैं कि यही सच्चाई है। ना सिर्फ अगर हम नहीं जूझ रहे तो हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा है जो इस आदत का शिकार होता है, चाहे वो स्मोकिंग की बात की थी हमने, चाहे वो हमने ड्रिंक्स की बात की थी, इवन ड्रग्स तक की भी बात हम कर चुके हैं। जो बड़ी बात सामने आई थी वो यही थी कि कहीं ना कहीं डिसीजन हमने अपने हाथ से छोड़कर और उसके आदि बनते जा रहे हैं। पीयर प्रेशर भी उसमें बहुत बड़ा कारण था, हमारे जो अपने हैं वो भी सहायता कर सकते हैं इसे छोड़ने के लिए। स्मोकिंग की बात की थी, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे पर्यावरण पे थे। निकोटीन या तंबाकू या स्मोकिंग का जो एक और एस्पेक्ट है वो है गुटखा। 2 रुपए का वो पाउच गुटखा हर पॉकेट में हर व्यक्ति के पास मिल जाता है, किसी भी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स होते हैं। गुटखा को हम क्यों एडिक्शन नहीं मानते हैं?
1: ऐसे वो सबसे बड़ा एडिक्शन है और इनफैक्ट ट्रेजेडी जो है कि भी भारत में पहले भी था, अलग अलग रूप से तो हम स्मोक करते थे लेकिन मेजर जो है वो वेस्टर्न कल्चर हमारे पास आया है कि हम ज्यादा वो जैसे स्मोकिंग करते थे ऐसे करने लगे। लेकिन देखो विदेशों में कोई भी गुटखा नहीं खाता है, चुइंग टोबेको इज ऑलमोस्ट जीरो इन अदर कंट्रीज, तो यही बताता है कि हम कितने ज्यादा ही आदी हुए और गुटखा है वो उतना ही डेंजरस है
0: यहाँ, क्योंकि ये मिथ में बहुत रहते हैं हम लोग कि गुटखा तो जो है वो स्मोक तो नहीं कर रहा या ड्रिंक तो नहीं कर रहा, गुटखा ही तो खा रहा हूँ। लेकिन क्या है, क्या होता है जब ये तंबाकू मुंह में जाता है?
1: वो भी तंबाकू ही है तो उसमें भी निकोटीन है, वो जो सारी है एक्सेप्ट भी कोल टार, कार्बन मोनोक्साइड, वो जो चीजें हैं वो गुटके में नहीं है। और दूसरी हार्मफुल इफेक्ट है गुटके में कि जब उसे चबाते हैं तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है और व्यक्ति मुंह को खोल नहीं पाता है। शुरू में तो उसे खोलने में दिक्कत होती है, फिर शायद 3-4 इंच खोल पाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे कि जो एक उंगली भी अंदर डाल नहीं सकते, यहाँ तक कि खाना भी ऐसे खाते कि भी चम्मच में लेंगे, मुंह में डालेंगे, उल्टा करेंगे, फिर सीधा करके फिर निकालनी पड़ती है। आप अगर उनकी कंडीशन देखो तो आपको सचमुच एक सिंपथी होगी।
0: बिल्कुल, मतलब इट्स एक्टिंग द मोस्ट हॉरिफाइंग एस्पेक्ट अगर जिंदगी का देखें तो। सिस्टर शिवानी, ऐसा क्या है, मतलब हम इसको स्वीकारते ही नहीं? देखिए, हमने स्मोकिंग की बात की थी तो चलिए हम फिर भी मान लेते हैं, घर वाले भी मान लेते हैं, हम खुद भी कहीं कहीं अगर मैं स्मोक करती हूँ मुझे पता होता है कि हाँ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इवन ड्रग्स की बात की थी, ड्रिंक्स के मामले में भी हमें मालूम होता है। गुटखा को हमने इतना आसान क्यों मान लिया है? इवन विमेन भी जो स्मोकिंग और ड्रिंक्स के बारे में फिर भी 2 बार सोचते हैं, वो भी गुटखे के 3 दाने लेने में कोई और उसे फांकने में कोई अपनी परेशानी का सबब नहीं मानती है। क्यों इसे हम एक एडिक्शन के रूप में नहीं देखते हैं?
2: एडिक्शन नहीं भी देखें लेकिन हार्मफुल तो है ही ना, तो एक हार्मफुल पदार्थ हम अपने अंदर क्यों डाल रहे हैं? कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट में वो जो परखने की शक्ति है राइट और रॉन्ग, वो या तो कम हो चुकी है या रॉन्ग पता होने के बावजूद भी जैसे कि हम बहुत बेपरवाह हो चुके हैं अपने बारे में। हम क्या नहीं जानते, हम सब कुछ तो जानते हैं। हमने नॉनवेज की बात की थी, हमने ये सारी जो बातें की, हमको सब पता है कि इसके क्या नुकसान है, लेकिन फिर भी हम उसको अपने अंदर डाल रहे हैं। वैल्यू फॉर माई ओन लाइफ, आई डू नॉट वैल्यू माई ओन लाइफ, क्योंकि इसकी रियल वैल्यू न जानने के कारण हम सोचते हैं जितना है उसको कम से कम इस चीजों से इंजॉय करें। ये हमारे स्टिमुलेंट्स हैं एंजॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, तो उसका अगर कोई नुकसान भी हो रहा है तो बहुत ज्यादा उस नुकसान की तरफ नहीं सोच रहे, क्योंकि जीवन में खुशी चाहिए.
0: और कहीं ना कहीं हम इस कगार पर पहुंच गए कि खुद को ही नकार दिया.
2: हाँ, बिल्कुल वैल्यू नहीं है ना अपने जीवन की, तो बिल्कुल वैल्यू नहीं है. जब हम कहते हैं अपने लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते, कहते 10 मिनट अपने लिए निकालो, टाइम नहीं है. लैक ऑफ वैल्यू फॉर द सेल्फ, बिल्कुल अपने जीवन की इम्पोर्टेंस नहीं है. तभी तो अपने शरीर की भी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके अंदर ये सारा डाल रहे जैसे एक अज्ञान की नींद में सोए हैं और चलते जा रहे हैं.
1: शिवानी बेन, एडिक्शन तो है ही है.
2: एडिक्शन
1: की डेफिनेशन भी हम देखे तो अगर आपने एक मास तक गुटखा खाया, फिर देखो 2 दिन नहीं खाओ, इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं.
2: नहीं, लेकिन शुरू भी कर रहे हैं, विमेन भी ले रहे हैं, तो क्यों हम शुरू भी करते हैं उस तरह की चीज को.
1: एंड हाउ एक्सपेंसिव इट इज, कभी हम ये नहीं सोचते. हम तो सोचते वो पुड़िया 1 रुपये की या 2 रुपये की मिलती होगी, लेकिन अगर किलो का हिसाब किया जाए तो शायद 3-4 हजार रुपये किलो है. आज गरीब लोग भी खाते हैं, जो शायद बच्चों को बादाम नहीं खिलाएंगे, है ना, अच्छे से दूध नहीं पिलाएंगे, परंतु गुटखा आराम से खा रहे हैं.
0: तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोसेस है जो गुटके का, अगेन आपके पास आते हैं सिस्टर शिवानी, कि जब हमने बात की स्पिरिचुअलिटी की, जब हमने बात की अवेयरनेस की फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड इटसेल्फ, यू नो, अगर 10-11 साल में जहां ये लतें भी पड़ रही होती हैं, इवन स्कूल्स में भी कॉलेजेस में भी गुटका जो है वो मुझे लगता है माँ बाप भी शायद उसको परेशान नहीं होते उसको देख के कि गुटखा खा रहे हैं. तो यहाँ ये जो जब अवेयरनेस अगर शुरू में ही क्रिएट हो जाए, क्योंकि हम बात हर बार प्रिवेंशन की भी करते आ रहे हैं, सो हाउ माय अवेयरनेस विल हेल्प मी नॉट टू गेट इनटू दिस होल हैबिट.
2: टोटली, इट विल नॉट टेक मी टुवर्ड्स इट एट ऑल. अगर बचपन से ही पेरेंट्स ने वो अपब्रिंगिंग में वो बात सिखाई होगी, उसके नुकसान बताए होंगे और खुद उस जीवन शैली को फॉलो कर रहे होंगे, तो बच्चा भले उसकी क्लास में सारे ले रहे हो वो चीज को, उसके बिलीफ सिस्टम में इतना इनग्रेन्ड होगा कि वो उस तरफ जाएगा ही नहीं. दैट इज फॉर श्योर. पीयर प्रेशर इज एन एक्सक्यूज, इट्स अ रियल एक्सक्यूज कि नहीं पीयर प्रेशर में तो आप सब कुछ कर लेते हैं. कितने बच्चे हैं जो बावजूद सारे पीयर प्रेशर के नहीं करते हैं ना, तो वॉट इज इट दैट दे हैव, वॉट इज इट दैट दे हैव विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. बहुत स्ट्रांग अंदर विल पावर एंड बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन परिवार में, जो पूरा वैल्यू सिस्टम जो परिवार में डला है, दे विल नॉट गो टुवर्ड्स दैट.
1: क्या होता है शिवानी बेनी, जो कहा ना कि आध्यात्मिकता से हमें अपनी एक अलग से पहचान मिलती है, अपनी आइडेंटिटी होती है कि भी आई एम यूनिक, नो आई एम स्पिरिचुअल. इसके लिए भले 99% ले रहे हैं तो भी वो बच्चा जो स्पिरिचुअल बातों को अपनाए उसको टच भी नहीं करेगा.
0: डेफिनेटली, दैट रियली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस कि आपकी अपनी आइडेंटिटी अगर पहले से ही है. यहाँ एक हम कहते हैं, हर बार बात ही कर रहे हैं, बार बार हर एडिक्शन के ऊपर जब बच्चों की बात आती है, फैमिली फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है. कितने दिनों से हम जब बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या आज है, एक पेरेंट लेता है, खासकर अगर हम देखें फादर या मदर भी हो सकते हैं, वो स्मोकिंग में है, ड्रिंक्स में है, शाम को एक पैक ड्रिंक का जरूर लेंगे ही लेंगे, आदत है उनकी, कोई बात नहीं, ये गुटखा है वहां पैकेट पड़ा रहता है. ये माँ जो है वो चाहती है कि ना हो, किसी तरह से क्या हो, फादर को नहीं समझाया जा सकता, फादर नहीं समझ पा रहा. क्या एज वन सिंगल पेरेंट कैन ऑल्सो हेल्प द चाइल्ड, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू आज के इस दौर में, बिकॉज हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं. हम पहले भी रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कर चुके हैं, कहीं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेकर चल रहे हैं, और अगेन मेरे लिए वैल्यू अलग है, पूरे परिवार के लिए वैल्यू अलग है. तो आज जब बच्चे को वो गुटखा दिख रहा है ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ, उसको उठा के वो डालने की कोशिश करेगा, क्या एक सिंगल पेरेंट उस बच्चे को मोटिवेट कर सकती है उससे परे रहने के लिए?
2: एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट इज पॉसिबल, क्योंकि आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो बन सकते हैं, एक रोल मॉडल आप बनकर उल्टा और ही शायद बच्चे के अंदर आप वो प्रेरणा ला सकते हैं कि यू नो सी व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट. जब हम
0: यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये आ जाता है कि अगर वो समझाएगी कि फादर तुम्हारे गलत कर रहे हैं, सो उनको ये लगेगा कि क्या मैं फादर के अगेंस्ट तो नहीं भड़का रही. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम माओं के सामने जो आज के जो जनरेशन में है वो आ रही है, कि जब मैं अपने बच्चों को ये बताऊंगी कि देखिये फादर ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं या गुटखा लेते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है. तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट है कि कहीं मैं उनके अगेंस्ट तो नहीं कर रही हूँ. सो हाउ टू क्रिएट दैट बैलेंस?
1: जनरली तो ये नहीं होता है, इन जनरल देयर मे बी रेयर, कुछ होंगे ऐसे 1-2%, परंतु अधिकतर तो माँ तो एक्सट्रीम अगेंस्ट होती है. मैंने कहीं एक डॉक्टर को मैं पहचानता हूँ, वो थोड़ा ही, बहुत थोड़ा पीते, और कभी उसने ऊंची आवाज से भी नहीं बोला, उतना एक आध पैक लेके कभी ऊंची आवाज से भी उसने नहीं बोला, बिल्कुल एकदम नॉर्मल होते हैं। लेकिन उनकी पत्नी को इतना गुस्सा आता है कि उसकी पिटाई कर देते हैं। उस स्टेज में एक पैक भी लिया है तो भी उसकी पिटाई कर देंगे। मतलब महिलाएं तो एकदम अगेंस्ट है।
0: नहीं, लेकिन अगर आज के सर्कमस्टांसेस में ज्यादातर देखें, मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, हस्बैंड्स पार्टीज में पी ही रहे हैं, रात को भी शाम को भी, कई लोगों ने अपनी दिनचर्या बना रखी है कि लेते ही हैं, ऐसे में ये जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट की बात की कि लेडी के सामने एक कॉन्फ्लिक्ट है, माँ के सामने, कि हाउ टू डील विद इट।
2: आई थिंक बट स्टिल पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी आपको, पूरी नॉलेज एक बच्चे को देनी ही पड़ेगी कि व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, एंड प्लस इम्पावर उस बच्चे को, इतना एम्पावर करे ताकि वो उस रास्ते पर या उस चीज को टेस्ट करने की भी जरूरत न समझे, इतना हम उसको सशक्त बनाए। एंड आई थिंक बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ जो डायलॉग है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे बच्चे की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो जहां हम इतना सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो क्या हम ये एक चीज अपने लिए नहीं तो फिर उन्हीं के लिए गिव अप कर दें, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे में दो तरह के हमें दिखाई देते हैं, एक जो अपने घर में बहुत ज्यादा इस चीज को देखते हैं कि उस चीज से नफरत करते हैं, यू नो उन्हें स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से नफरत होती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा उस चीज को अपने घर में देखा, उसकी वजह से झगड़े देखे, तो वो अपनी लाइफ में कभी नहीं टच करेंगे। और लेकिन दूसरे वो जिन्होंने उसको बहुत हेल्दीली एक्सेप्ट होते हुए देखा अपने घर के अंदर, एंड फिर उनके लिए वो एक बहुत नॉर्मल चीज है।
0: नहीं तो फिर झगड़े होने चाहिए, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग।
2: नहीं नहीं, तो दैट्स व्हाट आई सेड, दो तरह का इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर पड़ सकता है, या तो एकदम अवर्जन या फिर इट्स वेरी कॉमन एंड वेरी नेचुरल फॉर देम।
1: ये इवेंट इसीलिए कहते हैं कि परिस्थिति आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, आप उस परिस्थिति में आपका रिएक्शन क्या है इम्पोर्टेंट है। इसी किस्से में अगर माँ बच्चे को यह समझाए कि फादर कोई भी कारण से ले रहे हैं, लेकिन बेटा इतनी बुरी चीज है तुम उसको छूना तक नहीं, और अगर बेटा माँ से अटैच है, क्योंकि बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है।
2: And I think the men need to understand कि peer pressure या social pressure या party circle इस process में अपना वो maintain करने के लिए कि सब friends ले रहे हैं, उस चीज में वो अपनी family life पर कितना negative impact डाल रहे हैं। आप friends को खुश कर रहे हैं और family को,
0: और जो कितना important, in fact बच्चा जो जिस एज में है, हम कहीं ना कहीं हम हर बार ये मानते आ रहे हैं कि जिम्मेदारी तो हमारी है,
2: और कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को कहां फिर हमें राइट रह जाएगा कुछ भी चीज के लिए रोकने के लिए। अगर वो कोई और राह पर भी चलता है, हमें क्या हक रहेगा उसे रोकने के लिए, जब हम ऐसे कई काम कर रहे हैं जो उनके कहने के बावजूद हम नहीं रोक पा रहे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिसिप्लिन करने का एक्ट है वो खत्म हो जाएगा, और हम जिस चीज के लिए रोकेंगे भी तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू हमारे बोल की फिर रहेगी नहीं, क्योंकि हम ही सही राह पर नहीं।
0: तो ये हमें एक्चुअली डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा।
1: तो हर एक फादर को ये सोचना चाहिए कि समझो मैं एक दो पैक भी ले रहा हूँ, बच्चा 11-12 साल का हो गया कि उसको आप बाजू में बिठा के पिलाएंगे कि बेटे तू भी पी, अच्छी चीज।
0: मैं यही तो कह रही हूँ कि फादर ये कहता है कि पहला स्मोक, पहला फैग, पहला कश मेरे साथ लेगा मेरा बेटा, या मैं पहला ड्रिंक मैं साथ बैठकर पिलाऊंगा।
2: क्योंकि इस चीज को हमने इसलिए सिग्निफाई कर लिया क्योंकि ये हमने सोचा ये बॉन्डिंग की निशानी है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सी जहां इंटरनल बॉन्डिंग नहीं होगी वो हॉलोनेस है, हम ये बाह्य चीजों का आधार ले लेते हैं टू शो पीपल एंड इवन टू सेटिस्फाई माई ओन सेल्फ कि नहीं हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, देखो हम कितने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, कि हमें छुप के कुछ भी करने की जरूरत नहीं।
0: हमें छुप के मतलब हमें खुद पता है कि हम वो नेगेटिव चीज कर रहे हैं तो हम नेगेटिव भी साथ साथ कर रहे हैं, डेफिनेटली समवेयर वी नो दैट।
2: ये अपने आप को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश है।
1: कन्विक्शन तो ये होना चाहिए कि दो पैग अल्कोहल भी हार्मफुल है, जो आज डॉक्टर्स भी रिसर्च कर रहे हैं।
0: डॉक्टर पटेल इसी बात पे हम आ रहे हैं कि अभी तक हमने जो बातें की हैं, चाहे वो स्मोकिंग की है चाहे वो गुटके की है, वो ऐसी लगती है कि सिर्फ उससे कुछ अपने होश नहीं खोते हैं हम, उसके लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो हेल्थ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन हम नॉर्मल बिहेव करते हैं। ड्रग्स हमारे आसपास कोई ज्यादा हमें नहीं दिखते हैं जो ड्रग्स लेते होंगे। अल्कोहलिज्म एक ऐसा इतना बड़ा अभिशाप इस वक्त सोसाइटी का बन चुका है, जहां घर घर में अल्कोहलिज्म का एक प्रकोप कहा जाए वो है, और उसमें होता यह है कि आप अपने होश खो बैठते हैं, कहीं ना अपना अपने ऊपर से आपका जो कंट्रोल है वो खराब हो जाता है। उसका जो इफेक्ट है बॉडी पे उसके बारे में हमें डिटेल में बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्रकोप समाज में नजर आता है।
1: सबसे पहली तो ये बात है कि भी जो आज क्यों ज्यादा ही शराब पीने लगे हैं, क्योंकि हमारे में मस्तिष्क में कहीं इनहिबिटरी मैकेनिज्म्स है कि जिसके कारण हमारे में शाइनेस आती है, हम कॉन्फिडेंटली बोलते नहीं, ओपन अप नहीं होते हैं, ऐसी कई बातें हैं। जब आप शराब पीते हैं तब वो जो इनहिबिशन है वह इनहिबिट हो जाता है, वह जो इनहिबिशन है वह कट ऑफ हो जाता है और उसके कारण व्यक्ति फ्री फील
0: एग्जिबिट कर देते हैं।
1: हाँ, वो व्यक्ति फ्री हो जाता है ना, फ्रीली बोलने लगता है, आराम से उसको लगता है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, परंतु वो टेम्पररी फेस है। एक तो ये इनहिबिशन है, वो इनहिबिशन दूर होने से आपको अच्छा लगता है। फिर जब है वो लीवर पर बहुत बड़ा डैमेज होता है, यह 100% सिद्ध हुई बात है कि जो व्यक्ति अगर आप 4-5 साल भी थोड़ी थोड़ी भी शराब पीते रहो तो लीवर सिरोसिस होने लगता है। ऐसे पेनक्रियास कि जिसका डायबिटीज के साथ संबंध है, तो पेनक्रियास पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, पेट पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये एसिडिक है और एसिडिटी अल्सर आदि निर्माण करेगा। और सबसे जो इफेक्ट है वह है ब्रेन पर, क्योंकि एक तो ब्रेन पर ये इनहिबिशन हुआ और आगे चलकर के एक बीमारी है वर्निक्स एनकेफेलोपैथी कि जिसके अंदर मेमोरी लॉस हो जाती है, व्यक्ति धीरे धीरे सचमुच एक अपाहिज की तरह जीवन व्यतीत करता है, वर्निक्स एनकेफेलोपैथी। और दूसरा एक है कोर्सकॉफ साइकोसिस, एक पागल की तरह व्यक्ति आगे के स्टेजेस है, परंतु क्यों हम उसके बीच बोर है। थोड़ी भी शराब लेकर के आप उसी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। और एक चीज जो बिल्कुल एक्सेप्टेड है कि एटलीस्ट 50% एक्सीडेंट्स है वो शराब पी हुई हालत में होते हैं। कोई भी एक्सीडेंट्स को आप लीजिए, तो इन सबको साथ में अगर होलिस्टिकली देखा जाए,
0: समाज के लिए भी फिजिकल अब्यूज सबसे ज्यादा, परिवारों का टूटना सबसे बड़ा कारण, चाहे हम झुग्गी झोंपड़ी वर्ग में जाए, चाहे हम उस निम्न वर्ग में जाए या फिर आज उच्च वर्ग में किसी भी वर्ग में चले जाए, सबसे बड़ा कारण, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फिजिकली वायलेंट हो जाते हैं
1: अल्टीमेटली, होते
0: वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। सिस्टर शिवानी, बहुत सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं डिटॉक्सिकेशन के, और बहुत बार बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो अल्कोहलिज्म को दूर करने में बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर यही देखा गया है कि शायद रिजल्ट्स उतने नहीं आते हैं। हाउ मच स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प एक्चुअली इन द रियल सेंस, क्योंकि अल्कोहलिज्म में कहीं ऐसा लगता है कि हाथ में अपने नहीं रह गई है पावर। हाउ मच स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प?
2: स्पिरिचुअलिटी एक ओवरऑल हीलिंग करती है। आत्मा पर बहुत सारे घाव हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस के, प्रेजेंट चैलेंजेस के, कुछ अपनी आदतों के बहुत सारे घाव हैं। तो आध्यात्म जो हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं मेडिटेशन के साथ, वो सिर्फ हमारी ये आदत को नहीं छुड़ाती है, वो तो सिर्फ एक सिंपल चीज है, वो तो जल्दी से छूट जाती है। अल्कोहल स्मोकिंग ये तो कुछ दिनों में छूटती है वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, लेकिन ये हमारे डीप घाव जो लगे हुए हैं उसको हील करती है। फिर जब वो हील होने शुरू हो जाते हैं, आपका वापस रिलैप्स होना वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका रूट सॉल्व हो गया ना। तब अभी नॉर्मल क्या होता है कि अगर आप बिहेवियरल लेवल या इवन बीमारी का समझकर आप छोड़ते भी हैं, तो फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आपको कोई सोल्यूशन ही नहीं दिखाई देता और फिर आप उसकी तरफ खींचते हुए चले जाते हैं, क्योंकि अंदर का जो खालीपन है वो तो भरा नहीं। भले बाहर से समझ कर छोड़ना चाहते थे, छोड़ पाए, लेकिन जब अगली कोई चैलेंज आई, तो दैट्स वाई इनर एम्पावरमेंट ये जब आप साथ में करेंगे, देयर इज नो वे कि देयर विल बी अ रिलैप्स, क्योंकि परिस्थितियों को फेस करने की ताकत आ गई है। तनाव, गुस्सा जो एक कॉमन था अभी तक, वो फिनिश होता गया धीरे धीरे। डिप्रेशन ये सब कभी अनुभव नहीं होंगे, तो लाइफ कैसे हो जाएगी? वेरी हेल्दी, बिकॉज मेडिटेशन से आप अपने माइंड के मास्टर बनते जा रहे हैं। तो नाउ यू नो हाउ टू क्रिएट योर हैप्पीनेस, और अगर आप अपनी हैप्पीनेस एक बार खुद क्रिएट करने शुरू कर दी है, यू डोंट नीड एनीथिंग
0: व्हेन वी अंडरस्टैंड द टेक्निक एक्चुअली, क्योंकि उसके बाद के जो सुबह उठ के जो हालात होते हैं, एक्चुअली पीपल डोंट लाइक इट,
2: राइट,
0: जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं अल्कोहलिज्म का, तो खासकर ये देखा गया है कि उसके बाद के जो उनके हालात होते हैं, दे आर एक्चुअली themselves फील वेरी बैड, उनको खुद को बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर पटेल, दो
1: मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी आज अप्रोचेस है, जैसे बहुत ही फेमस अल्कोहलिक एनोनिमस, नार्कोटिक एनोनिमस भी, वहां आप देखेंगे उनके 12 स्टेप्स माने गए
0: जी।
1: वो 12 स्टेप्स सारे के सारे स्पिरिचुअल है, कुछ एक स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे सबसे पहले तो कहते हैं कि हम ये स्वीकार करते हैं कि मेरे में यह बहुत बड़ी समस्या है और मैं शक्तिहीन हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अल्कोहल पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। फिर दूसरी बात बताते हैं कि भी मेरे से कोई बड़ी शक्ति ही मुझे मदद कर सकती है, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि मेरे से कोई ज्यादा पावरफुल शक्ति मुझे इस व्यसन से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी। तीसरा कि भी परमात्मा को जैसे भी मैं मानता हूँ उस रूप से मैं परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ कि परमात्मा मुझे इस व्यसन से मुक्ति दिलाएंगे। फिर कि भी मैं अपनी सारी कमियां है परमात्मा के सामने रख रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरे में यह कमियां है, यह शक्तियां है और वह मैं परमात्मा के सामने रखता हूँ, उससे मुझे शक्ति मिलेगी। इस प्रकार से मैं मदद को मांग रहा हूँ, प्रतिदिन मैं प्रेयर कर रहा हूँ। सारे आप 12 स्टेप्स देखेंगे तो उसमें आध्यात्मिकता ही आध्यात्मिकता।
2: अब इसी को हाँ, मेरे को लगता है थोड़ा सा हम जैसे डिफरेंटली लेते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, यू नो, ये सबसे पहली चीज हमें मिली कि मैं आत्मा का ओरिजिनल गुण ही शक्ति है। तो अभी तक जो मैं अधीन था, अभी तो कर्म इंद्रियों के भी अधीन या कोई पदार्थों के भी अधीन, वो खत्म हो जाएगा जब रोज सवेरे उठकर हम 10 मिनट के लिए भी इस तरह बैठे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा की मैं संतान हूँ, तो मेरे अंदर कमजोरी ये हो नहीं सकती है। तो अपने आप, और जब हम वो कनेक्ट करते हैं मेडिटेशन में, तो परमात्मा शक्तियां सारी मांगनी नहीं पड़ती है, वो तो अपने आप ही सारी आत्मा के अंदर भरती जाती है, अपने आप एम्पावरिंग हो जाती है। मेन चीज है सोल इतनी अपने आप को चार्ज्ड फील करती है कि उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेंट की जरूरत नहीं है चार्ज होने के लिए। इनफैक्ट हमें समझ में आने लगता है फिर कि ये सारे जो स्टिमुलेंट्स थे ये हमें डिस्चार्ज करते हैं, ये हमें डी एनर्जाइज करते हैं, तो हम अपना नुकसान कर रहे थे, देन व्हाई वुड वी गो टुवर्ड्स इट।
1: राजयोग एक स्टेप अहेड है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भी वहां पर अल्कोहलिक एनोनिमस में कहते भी मैं पावरलेस हूँ, यहाँ पर पहले ही स्टेप में पावर भरती है
0: कि मेरा मूल जो है वो पावरफुल है, पावर है, उसके बाद अगर आज मैं हो भी गया हूँ आई कैन एक्चुअली अगेन रीच दैट लेवल।
1: और परमात्मा से शक्ति लेने की बात तो राजयोग में भी है ही है कि मुझे परमात्मा के साथ डायरेक्ट संबंध जोड़ करके उस पावर को अपने आप में भरना है। और राजयोग की आप अगर पॉजिटिव थॉट्स भी देखेंगे, टेक्निक अगर आप देखो राजयोग की, सारी वही है कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, परमात्मा शक्ति के सागर है, उनसे मुझे शक्ति मिल रही है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव प्रोसेस ही सारा हमें मदद करता है व्यसनों से मुक्ति दिलाने।
0: आई थिंक ये तो मैं बिल्कुल पूरे अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ कि रोज का किया हुआ ये अभ्यास कहीं ना कहीं हमारे अपने आत्मबल को बढ़ा देता है। जो शक्ति को मैं फील करना चाहती हूँ कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो एहसास होने लगता है, अनुभव होने लगता है। डॉक्टर पटेल, चलते चलते आज की इस पूरी बातचीत में एक बात हम ये जानना चाहेंगे, हमने जितने भी व्यसनों की फिजिकल एस्पेक्ट की तरह जो बड़े बड़े व्यसन थे, चाहे वो ड्रग एडिक्शन था, चाहे वो स्मोकिंग थी, चाहे वो गुटखे की बात है, ड्रिंकिंग की बात है, एक बार किया गया या रोज रोज किया गया, दोनों में से क्या सभी सही है, दोनों में से कोई भी सही है?
1: बोथ आर इक्वली हार्मफुल, क्योंकि एक बार भी किया तो आगे चल के आदत हो जाएगी, कई बार आपके पास समस्या आई तो वही चीज आपको याद आएगी, तो इसके कारण बेस्ट तो ये है कि एक भी बार नहीं करना। और जो लोग एक्सट्रीम एडिक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, उनमें कई बार फिर हमें यह भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भी उनकी क्वांटिटी अगर बहुत कम हो गई तो भी ये अच्छा है, बेस्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक तो पहले जो घर में आकर के तोड़फोड़ करते थे, मारते थे, वह सारा खत्म हो गया, तो उसे भी साइकियाट्रिस्ट कुछ हद तक एक्सेप्ट करते हैं। परंतु गोल तो यही होना चाहिए कि मुझे टोटली उसे छोड़ना,
0: किसी
1: जब तक आप कंप्लीटली नहीं,
0: क्लीनलीनेस की जो बात है, कन्वर्जन की, ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। सिस्टर शिवानी, कई बार जो हम ड्रिंक्स की बात करते हैं वो पीयर प्रेशर में, सोशल प्रेशर में शुरू करते हैं, कई बार डिप्रेशन में शुरू करते हैं, दोनों के अलग अलग भावनाएं होती हैं जब करते हैं, छोड़ना दोनों में ही आसान है?
2: बहुत आसान है। एंड आई वुड से एनीवन वाचिंग दिस प्रोग्राम नाउ, अगर कहीं भी थोड़ा भी मुश्किल लग रहा है, जस्ट वॉक अप टू द नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर एंड जस्ट गो देयर फॉर अ फ्यू डेज. बस थोड़े से दिन जाइए, मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कीजिए, आपको एक बहुत पॉजिटिव चार्ज्ड मेडिटेशन रूम मिलेगा, बहनें मिलेंगी जो आपसे इसकी विधि को आपके साथ शेयर करेंगी सिर्फ थोड़े दिन के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमने शुरू से देखा एक एक्सपेरिमेंट है. तो थोड़े दिन के लिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, लाइफ विल चेंज डेफिनेटली.
0: ओके, सुश्री शिवानी, डॉक्टर पटेल, बहुत अच्छा लगा आज की इस पूरी बातचीत के लिए. अभी हमने उन एडिक्शंस की बात की है जो सामने सामने नजर आती हैं, जो हमारे अपने अंदर चल रही हैं एडिक्शंस. अगर मैं कहूं कि एंगर एक एडिक्शन है, जैसे आपने कहा था एक बार कि चॉकलेट भी एडिक्शन हो सकती है, या कहीं ना कहीं टेंशन एडिक्शन है, पेन लेने की एडिक्शन है, रिलेशनशिप्स में एडिक्शन है कि मैं आपके प्रति इतना ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा, किस तरह से ये एडिक्शंस, ये आदतें भी हमारे लिए मजबूरी बन सकती हैं और कहीं ना कहीं बीमारियों का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं. तो उनके ऊपर बातचीत करना अभी बाकी है, आने वाली कड़ियों में उन्हें जरूर हम शेयर करेंगे आपके साथ. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. हमने ये मान लिया कि जो आदत हमारी जिंदगी में आ गई है, चाहे वो स्मोकिंग की है, चाहे वो ड्रिंकिंग की है, चाहे वो गुटखे की है, वो आदत है और उससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता. मेंटली मैं अपने आप को बहुत चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत हमें यहीं से करनी पड़ेगी. जैसा कि सिस्टर शिवानी ने कहा कि एक बार भी ये थॉट अगर हमारे पास आ जाता है कि मुझे इन व्यसनों से बाहर निकलना है, इन आदतों को छोड़ना है, तो फिर आप वो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही अनुभव होगा. आप किसी भी राजयोग सेंटर जा सकते हैं, खुद को इतना बुलंद कर सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, और इन सभी आदतों को अगर अपने लिए नहीं, किसी अपने के लिए, अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं, या फिर अपने लिए भी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप एक वादा कीजिए अपने आप से कि ये कदम जरूर उठाकर देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभ सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। मी स्मिता जयकर आनंदी रहा, आनंद वाटा।
2: आप सुन रहे हो पुणेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आज हम राजयोग मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। राजयोग मेडिटेशन का अर्थ है मुझ मनुष्य आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए सबसे पहला रूल है स्वयं को शरीर नहीं बल्कि शरीर को चलाने वाली ऊर्जा अर्थात

जब तक मनुष्य आत्मा शरीर के भान में फंसी है, शरीर से संबंधित पदार्थों में फंसी है, तब तक परमात्मा से कनेक्शन नहीं हो सकता। जब मनुष्य आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचानती है, अर्थात मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ, भ्रुकुटि के मध्य में विराजमान हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, इस ज्ञान को जानती है, आत्मिक स्वरूप में टिकती है, आत्मा के मूल गुणों को पहचानती है, अर्थात आत्मा के मूल गुण हैं शांति, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, सुख, आनंद, इन गुणों को कर्मों में लाती है, तब मनुष्य आत्मा आत्मिक अवस्था में टिकती है। आत्मा का स्वरूप बिंदु रूप है, प्रकाश का बिंदु। आत्मा का निवास स्थान मनुष्य के ब्रुकिटी में है। मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा के तीन शक्तियां हैं। मन के द्वारा मनुष्य आत्मा विचार करती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय लेती है। जो कर्म रिपीट किए जाते हैं, वही संस्कार के रूप में रिकॉर्ड होते हैं। मनुष्य आत्मा हर जन्म में नए संस्कार बनाती है और उनके अनुसार कर्म करती है। कुछ संस्कार माता पिता के सानिध्य में बनाती है, कुछ संस्कार मित्र संबंधियों के प्रभाव से बनाती है, कुछ संस्कार पिछले जन्मों के भी होते हैं। परमात्मा से प्राप्त सात संस्कार हर मनुष्य आत्मा के पास होते हैं। परमात्मा से प्राप्त संस्कार हैं पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख, ज्ञान, आनंद। यह सात संस्कार किसी मनुष्य आत्मा के अंदर इमर्ज अवस्था में होते हैं तो किसी में मर्ज होते हैं। जो मनुष्य आत्मा इन गुणों को ज्यादा यूज करेगी, उनके अंदर यह गुण बढ़ते जाएंगे, और जो मनुष्य आत्मा इन गुणों को, संस्कारों को यूज नहीं करेगी, उनके अंदर ये कम नजर आएंगे। मनुष्य आत्मा इस शरीर में ऐसे रहती है जैसे कार चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, उसी प्रकार शरीर चलाने के लिए भी आत्मा की जरूरत होती है। परमात्मा कहते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, प्रकाश पुंज, ज्योति बिंदु आत्मा है। श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।
2: सुन रहे हो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही सभी मनुष्य आत्माओं के पिता भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो सभी मनुष्य आत्माओं में परम अर्थात सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, इसीलिए उन्हें परम आत्मा कहा गया है। परम आत्मा अर्थात जो आत्मा सभी आत्माओं में सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, पवित्र है, उस आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं के पिता होने के कारण उन्हें परम पिता कहते हैं। परमात्मा ज्योतिर्बिंदु, प्रकाश पुंज, शक्तियों के सागर, पवित्रता के सागर, शांति, सुख, ज्ञान, आनंद, प्रेम के सागर है। परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, अर्थात परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। परमात्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती, बल्कि परमात्मा का दिव्य अवतरण इस धरा पर संगम युग में होता है। परमात्मा निराकारी है, अर्थात मनुष्यों की तरह हड्डी मांस का शरीर परमात्मा को नहीं होता है। परमात्मा निर्विकारी है, अर्थात परमात्मा में कोई विकार नहीं है। आज मनुष्य आत्मा में अनेक विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। परमात्मा में एक भी विकार नहीं है, इसीलिए परमात्मा को निर्विकारी कहते हैं। परमात्मा निरअहंकारी है, अर्थात ज्ञान का, शक्तियों का सागर होते हुए भी परमात्मा में अहंकार नहीं है, इसीलिए परमात्मा को निरअहंकारी कहते हैं। परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, इसीलिए उन्हें पतित पावन कहते हैं। परमात्मा सभी को सद्गति प्रदान करते हैं। परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं के दुखों को हर के उन्हें सुख प्रदान करते हैं, इसीलिए उन्हें सुखकर्ता, दुखहर्ता भी कहते हैं। परमात्मा किसी को भी दुख नहीं देते, मनुष्य आत्मा के कर्म ही उसे दुख देते हैं। जो परमात्मा को याद करते हैं वही नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसे पूज्य बन जाते हैं। परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं की कलयुग में जो पत्थर बुद्धि बन गई है उसे पारस बुद्धि बनाते हैं। सभी को ज्ञानमृत पिलाने वाले ज्ञान के सागर है। परमात्मा का स्वरूप सत चित आनंद है। परमात्मा विष्णु द्वारा सतयुगी दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं। परमात्मा हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता परम शिक्षक सदगुरु है। परमात्मा अकाल मूर्त है, अर्थात उन्हें कभी काल खा नहीं सकता, अर्थात परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाने वाले हैं। परमात्मा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देते हैं। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। परमात्मा ब्रह्मलोक के वासी है। शंकर द्वारा आसुरी कलयुगी सृष्टि का विनाश होता है। परमात्मा दिव्य गुणों के भंडार है, दिव्य दृष्टि विधाता है, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, सुख दुख से न्यारे हैं, दिव्य बुद्धि के दाता हैं। परमपिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। वही पतितों को पावन करने वाले मनुष्य मात्र को शांति धाम तथा सुख धाम की राह दिखाने वाले हैं। विकारों तथा काल के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। सभी प्राणी मात्राओं पर रहम करने वाले हैं। मनुष्य आत्माओं को ज्ञान रूपी सोम अथवा अमृत पिलाने तथा अमर पद का वरदान देने के कारण सोमनाथ तथा अमरनाथ इत्यादि नाम भी उन्हीं के हैं। वह जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एक रस, सदा जागती ज्योति, सदा शिव है। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लौ जैसा है। वह रूप अति निर्मल स्वर्णमय लाल और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योतिर्मय रूप को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा के उस ज्योति बिंदु रूप की प्रतिमाएं भारत में शिवलिंग नाम से पूजी जाती है और उनके अवतरण की याद में महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, सभी धर्मों ने यही बताने की कोशिश की कि हमारे जो परमात्मा है, हमारे जो भगवंत है, हमारे जो भगवान है, वो एक है, सबका मालिक एक है। हर धर्म स्थापक ने हमें भगवान से, परमात्मा से, खुदा से जोड़ने की कोशिश की। सभी ने यही कहा कि सभी का मालिक एक है। परमात्मा को अनेक नामों से पुकारा गया। किसी ने उन्हें अमरनाथ कहा, किसी ने रामेश्वर, किसी ने विश्वनाथ कहा, किसी ने सोमनाथ कहा, किसी ने उन्हें गॉड कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने साहेब कहा। हम सभी ने उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा। क्राइस्ट ने भी कहा कि गॉड इज लाइट, लाइट अर्थात प्रकाश। हिंदू धर्म में भी मान्यता है ज्योतिर्बिंदु शिव। ज्योतिर्बिंदु का अर्थ प्रकाश पुंज, बिंदु रूप। गुरु नानक ने भी अपने ग्रंथ में परमात्मा की महिमा की है, एक ओंकार, निर्वैर, निराकार। सभी धर्म संस्थापकों ने उस परमात्मा की, परम पिता की, भगवान की महिमा की और सभी ने हमें उससे जोड़ने की कोशिश की। परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। परमात्मा कहते हैं कि इस धरा पर युगों का सृष्टि चक्र है। सबसे पहले आता है सतयुग, उसके बाद है त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और अभी जो चल रहा है वह कलयुग। परमात्मा कहते हैं इस धरा पर यह सृष्टि चक्र ऐसे ही घूमता है। परमात्मा कहते हैं जब कलयुग में अधर्म का राज्य होता है, तब अधर्म का विनाश करने और एक सत्य धर्म की, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा का दिव्य अवतरण संगम युग पर होता है। संगम युग अर्थात जहां कलयुग का विनाश निकट है और सतयुग की आदि पृथ्वी पर होने वाली है, इनके बीच का समय संगम युग कहा जाता है। इसी संगम युग पर परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण इस धरा पर होता है। परमात्मा इस समय धरा पर क्यों अवतरित होते हैं? तो परमात्मा कहते हैं जो कलयुग में पापाचार, भ्रष्टाचार, हिंसाचार बढ़ गया है, अधर्म बढ़ गया है, इसका विनाश करने के लिए और एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा का दिव्य अवतरण संगम युग पर होता है। परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, सभी को श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देते हैं, दिव्य गुणों की धारणा कराते हैं और इस धरा पर सतयुग की स्थापना ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। विष्णु द्वारा सतयुगी दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं। परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति के रचयिता है। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वो ही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं जब इस धरा पर सतयुग था तब सभी मनुष्य आत्माएं दैवी गुणों से संपन्न थी, इसीलिए प्रकृति भी सतो प्रधान थी, सुख समृद्धि संपन्नता भारत में विद्यमान थी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था और श्री लक्ष्मी श्री नारायण द्वारा ही संपूर्ण सतयुगी सृष्टि की पालना होती थी, इसीलिए इन्हें पालनहार कहा जाता है। जब त्रेता युग आया तब श्री सीता और श्री राम का राज्य था, वहां पर भी सभी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दैवी गुणों से भरपूर थे। जब इस धरा पर द्वापर आया तब मनुष्य आत्मा स्वयं को भूलकर शरीर के भान में फंस गए और इसीलिए देह भान आने के कारण मनुष्य आत्मा में अनेक विकारों की प्रवेशता हुई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनकी प्रवेशता बढ़ने के कारण अधर्म और धर्म के बीच युद्ध होने लगे और भक्ति भी बढ़ने लगी। द्वापर युग से अनेक धर्म संस्थापकों ने हम मनुष्य आत्माओं को भगवान से जोड़ने की कोशिश की, भगवान के सत्य राह पर चलना सिखाने की कोशिश की, लेकिन हम मनुष्य आत्माएं धर्म संस्थापकों की शिक्षाओं को पूरी तरह से न समझ पाने के कारण आपस में ही लड़ते रहे। जब इस धरा पर कलयुग आया तब अधर्म का राज्य सब तरफ बढ़ गया, मनुष्य आत्माओं के अंदर के विकारों की तीव्रता बढ़ गई, सभी तरफ भ्रष्टाचार हिंसा कलह क्लेश युद्ध परिस्थितियां निर्माण हो गई, मनुष्य आत्माएं तमोप्रधान बन गए और साथ ही प्रकृति भी तमोप्रधानता की ओर बढ़ती गई, इसीलिए कहीं बाढ़ कहीं भूकंप कहीं अकाल की परिस्थितियां निर्माण हो गई। परमात्मा कहते हैं कि जल्दी ही कलयुग का विनाश होकर इस धरा पर सतयुग की सुंदर सवेरा नजर आएगा। परमात्मा कहते हैं कि फिर से धर्म की स्थापना होगी, सत्य धर्म की स्थापना होगी, जहाँ पे हर मनुष्य आत्मा दैवी गुणों से भरपूर होगी, जहाँ पे संपन्नता, सुख शांति, पवित्रता का राज्य होगा। परमात्मा कहते हैं संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा, और संस्कार परिवर्तन के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास जरूरी है। मेडिटेशन ध्यान यह विधि है जहाँ पे हम मनुष्य आत्मा अपने मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़ते हैं। जब हम शरीर के भान को भूलकर स्वयं को आत्मा समझकर परम पिता परम आत्मा को याद करते हैं, जब हम मन से परमात्मा के बारे में सोचते हैं और बुद्धि से परमात्मा के ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को देखने की कोशिश करते हैं, तब हमारा मन बुद्धि परमात्मा से जुड़ जाता है, और इसी को योग कहते हैं, इसी को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। परमात्मा कहते हैं जितना आप परमात्मा को याद करोगे, आपके अंदर के संस्कारों का परिवर्तन होगा। परमात्मा के याद से मनुष्य आत्माएं विकारों से मुक्त होंगी। परमात्मा के याद से जन्मों जन्म के पाप भस्म होंगे। मनुष्य आत्माएं पतित से पावन बनेगी। जितना हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, अर्थात परमात्मा का ध्यान करेंगे, उतना हमारे अंदर सुख शांति दिव्य गुणों की धारणा होगी। श्रुति हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।

0: अरे बाबा चाल देखो, घूंघट डाल के चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पगड़े से बट पर वोट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी, हिंदी में अलजेब्रा शान पीएटी।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माय वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 107.8 FM, World Renewal Spiritual Trust का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: अंगड़ाई सरे बजन बहुत पछताई, मुफ्त में हो गई बदनाम बढ़ी रुसवाई। आया गुस्सा कभी अपने पे कभी शर्म आई, उठी घबरा के मगर ऐसी कमर बल खाई।

0: सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1830 में बनारस में हुआ था। उन्होंने बचपन में लिखाई पढ़ाई के साथ साथ हथियार चलाना भी सीख लिया था। 14 साल की उम्र में उनका विवाह महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बन गईं। गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने दामोदर राव को दत्तक पुत्र बना लिया। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात डलहौजी की हड़प नीति के चलते अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने अधीन कर लिया। 1857 में जैसे ही मेरठ के सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत की, रानी ने भी झांसी की बागडोर अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। वे क्रांतिकारी सिपाहियों की मदद करने लगी। उन्होंने काफी समय तक झांसी किले की रक्षा की, लेकिन 1858 में अंग्रेजों ने एक बार फिर झांसी पर हमला किया। रानी की 14,000 सैनिकों की फौज ने 2 हफ्तों तक अंग्रेजी फौज का मुकाबला किया और अंततः रानी को झांसी छोड़कर कालपी जाना पड़ा। अंग्रेजों ने रानी को पकड़वाने वाले को 20,000 रूपये का इनाम देने की घोषणा की। झांसी की रानी को मर्दानी की संज्ञा सबसे पहले अंग्रेजों ने ही दी थी। कालपी में रानी ने तात्या टोपे के साथ मिलकर भावी रणनीति बनाई और ग्वालियर को अंग्रेजों से छीन लिया। अंग्रेजों ने ग्वालियर वापस पाने के लिए फिर उनसे मुकाबला किया।

17 जून 1858 को युद्ध में लड़ते लड़ते रानी वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई हमेशा के लिए वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक बन गईं।

0: भरते भरते प्याज और मिर्ची लगा दी है बताओ, ना रोटी का पता है ना दाल का पता है।
1: और कुछ बोलो तो बुरा मान जाते हैं।
0: अरे गजबी है काका, अरे दाल तो भिजवा दो इधर।
2: अरे आ रही है भाई, लड़का ला तो रहा है। अरे दाल लगा दे जल्दी से इधर।
3: और ये कहाँ का गाना लगा दिया रेडियो पर?
2: क्यों, क्या बुराई है इसमें?
1: अरे बुराई की बात नहीं है, अरे सुनवा दो कजू चटपटा सुनवा। ऐसे कजू भी करते
3: हैं।
2: अरे चटपटे बटपटे ही गाने सुनते रहोगे या कभी उनके भी गाने सुन लिया करो जो देश के लिए शहीद हुए हैं? ये कोई चलता हुआ गाना नहीं है, 150 बरस से बुंदेलखंड के गांव गांव में गाया जाता रहा है ये लोकगीत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी।
0: झांसी वाली रानी? काका सुना तो बहुत कुछ है इसके बारे में
1: पर मालूमात कुछ भी नहीं है काका।
2: अरे तो फिर हम किस लिए हैं?

0: मन में ठानी थी।
1: सन 1857 ईस्वी में प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की फौजों को शिकस्त देने के बाद फिरंगी ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते कदमों को रोक पाना असंभव सा हो गया था। बंगाल और बिहार के साथ साथ समूचा अवध उसके खूनी चंगुल में आ चुका था। इधर पूना की पेशवाई को तहस नहस कर कंपनी सारी देशी रियासतों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेने के लिए नित नए मंसूबे गढ़ रही थी। इन्हीं मंसूबों के तहत पूना के बाजीराव पेशवा को अपना सब कुछ छोड़कर दूर कानपुर के पास बिठूर की छोटी सी जागीर पर संतोष करना पड़ा। पेशवा के विश्वस्त सहयोगी मोरोपंत भी उन्हीं के साथ बिठूर चले आए। साथ में थी उनकी इकलौती बेटी मनुबाई, जो आगे चलकर लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। बाजीराव पेशवा निसंतान थे, अतः उन्होंने एक बालक को गोद लिया। नाम था नाना धुंधु पंत, जिन्हें आगे चलकर महान क्रांतिकारी नाना साहब के नाम से जाना गया। और मनुबाई इन्हीं नाना की मुंहबोली बहन थी।
0: हर चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में।
1: नाना साहब और तात्या टोपे के साथ हर तरह के हथियार चलाने में निपुण होने के साथ साथ मनुबाई राजनीतिक दांव पेचों को भी बारीकी से समझती जा रही थी। इन्हीं दिनों झांसी के राजा गंगाधर ने मनुबाई को विवाह का प्रस्ताव भेजा।

0: अब आप इस झांसी की महारानी हैं। दास दासियां सेवक चाकर सब आपकी सेवा में हाजिर हैं। जिस चीज की इच्छा हो बस इशारा भर कीजिए कि हाजिर।
1: जिस भी चीज की?
0: हाँ, जिस चीज की भी।
1: तो ठीक है, कुछ बहुत अच्छे घोड़े,
0: घोड़े
1: कुछ बंदूकें, कुछ तलवारें, ढाल, बर्चियां, भाले।
0: रानी, ये आप क्या?
1: महाराज, आपने मुझे अपनी रानी का सम्मान दिया है तो मैं उसी के अनुकूल वो सब कुछ तुरंत आरंभ कर देना चाहती हूँ जो एक रानी के नाते मुझे करना चाहिए। मैं यहाँ स्त्रियों को फौजी प्रशिक्षण दूंगी ताकि वक्त आने पर वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकें।
0: ठीक है, जैसी आपकी इच्छा।
1: शाबाश, हम सबकी अब एक अच्छी खासी घुड़सवार टुकड़ी तैयार हो चुकी है, लेकिन मैं इतने पर भी सब्र नहीं करने वाली। मैं चाहती हूँ तुम्हें तोपे चलाने का भी भरपूर मौका दिया जाए। क्यों गुलाम गौस खां?
2: जो हुक्म रानी साहिबा।
3: इसी बीच रानी ने एक बालक को जन्म दिया। झांसी में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी। नवजात राजकुमार असमय राजा रानी को रोता बिलखता छोड़ चले गए। रानी ने जल्द ही अपने दुख पर काबू पा लिया, लेकिन राजा जी ये आघात सहन न कर सके, वे बीमार रहने लगे। रानी ने इन हालात में हिम्मत से काम लिया और शासन के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया।
0: रानी, मेरा विचार है अपने ही वंश का कोई बालक गोद ले लिया जाए।
1: जैसी आपकी इच्छा महाराज, शायद विधाता की भी यही मर्जी है, वरना आपका उत्तराधिकारी यूं आकर भी गोद क्यों सूनी कर जाता।
0: तो जिस बालक को तुम उचित समझो गोद लेने के लिए चुन लो। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो ये रस्म पूरी कर ली जाए।
1: जी अच्छा।
0: मैं झांसी का राजा गंगाधर राव आज विधि और विधान के अनुसार अपने पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में दामोदर राव को अपने दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण करता हूँ और घोषित करता हूँ कि दामोदर राव मेरे बाद इस राजगद्दी के असली वारिस होंगे। दीवान जी।
4: जी महाराज।
0: कंपनी बहादुर को इस बाबत एक खत तुरंत भेजा जाए।
4: जो हुक्म महाराज।
3: गोद लेने की रस्म पूरी होने के कुछ ही दिनों बाद अचानक राजा गंगाधर राव स्वर्ग से धर गए। 18 बरस की कच्ची उम्र में रानी लक्ष्मीबाई पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन संकट की घड़ियों में रानी ने असीम धैर्य और साहस का परिचय दिया। अपने नाबालिग दत्तक पुत्र दामोदर राव को गद्दी पर बिठाकर रानी ने उसकी संरक्षिका के रूप में शासन की बागडोर संभाल ली। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल डलहौजी ने किसी भी राजा के दत्तक पुत्र को वारिस के रूप में मान्यता न देने की एक अजब सी नीति चला रखी थी।
5: रानी साहिबा, हम लॉर्ड साहब डलहौजी का फरमान लेके आया है। हम आपको बताना मांगता है कि झांसी का राजगद्दी खाली है।
1: खाली कैसे? इस पर महाराज के वारिस दामोदर राव बैठे।
5: लेकिन उनको गद्दी पर बैठने का इख्तियार नहीं है।
1: क्यों नहीं? वो बाकायदा गोद लिए बेटे हैं, दत्तक पुत्र हैं।
5: नो नो नो, हिज एक्सीलेंसी गोद लिया बेटा को कानूनी वारिस नहीं मानता है।
1: उनके मानने ना मानने से क्या होता है? हमारे शास्त्रों में विधान है कि दत्तक पुत्र असल पुत्र की जगह होता है।
5: नो, अगर गवर्नर जनरल नहीं मानता है तो नहीं माना जाएगा, दैट्स ऑल। आज और इसी वक्त से झांसी पर आपका हुकूमत खत्म होता है। झांसी स्टेट कंपनी बहादुर की हुकूमत में शामिल होता है।
1: नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।
6: रानी साहिबा, फिरंगी फौजों ने झांसी पर घेरा डाल दिया है और हम इनका मुकाबला करने की हालत में बिल्कुल नहीं है। मेरी विनती है रानी साहिबा, इस वक्त सब्र से काम ले वरना झांसी बर्बाद हो जाएगी।
1: शायद आप ठीक कहते हैं दीवान जी, ठीक है। आज मेरे देखते देखते जो झांसी हांसते जा रही है, एक ना एक दिन मैं इसे वापस लेकर रहूंगी और वो दिन जल्द ही आएगा।
3: अंग्रेज बेखबर थे और रानी बड़ी होशियारी से अपनी तैयारी में व्यस्त थी। आसपास के इलाकों में घूम घूम कर वो जंगल, पहाड़ों, नदी नालों का युद्ध की दृष्टि से जायजा भी ले रही थी और जनमानस को भी टटोल रही थी। इस दौरान तात्या टोपे, नाना साहब और अन्य क्रांतिकारियों से उसका निरंतर संपर्क कायम था।
7: मनु?
1: हाँ तात्या, मैंने तो अपनी तरफ से काफी तैयारी कर ली है। देसी पलटन की एक बड़ी टुकड़ी मेरा साथ देने तैयार है, लड़कियों की भी एक बड़ी टुकड़ी तैयार है। इसके अलावा फिरंगियों ने जो हमारी फौज भंग की थी, उसके भी ज्यादातर फौजी हमारे साथ हैं।
7: वाह, बहुत अच्छी तैयारी है। मैं भी अवश्य दिल्ली तक घूम घूम कर सबसे मिलता रहा हूँ। रुपया पैसा भी काफी जमा हो चुका है। सन्यासी और फकीरों के वेश में अपने साथी गाँव गाँव, शहर शहर घूमते हुए विद्रोह की अलग

0: लगा रहे हैं। नाना साहब और अजीमुल्ला खां का कई हिंदुस्तानी फौजियों से संपर्क कायम है,
1: दूर दूर तक सबको एकता के सूत्र में बांध रहे हैं।
0: मनु, अहमद शाह की खैरावादी की जोशीली तकरीरों ने मुर्दों में नई जान फूंक डाली है। लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। फिरंगी फौजों के हिंदुस्तानी सैनिक बस उस दिन के इंतजार में हैं कि इशारा पाते ही वो एक साथ फिरंगियों पर मौत बन कर टूट पड़ेंगे।
1: कोई तारीख तय हुई?
0: बात चल रही है मनु, बस पक्की होते ही खबर पहुंचा दूंगा।
1: तो ठीक है। वैसे शाहगढ़ के बखत बली और बानपुर के मर्दन सिंह मेरे संपर्क में हैं। वो लोग बांदा के नवाब को भी साथ लेने की तैयारी कर चुके हैं। अब बस तुम्हारी तरफ से इशारे की देर है। फिरंगी फौजों ने बानपुर फतेह कर लिया है और अब वो झांसी की तरफ बढ़ रही हैं। तात्या टोपे को संदेश भेजा है कि मदद के लिए फौरन आ जाएं। गुलाम गौस खान
2: जी, सरकार,
1: आपकी तोपे तैयार हैं?
2: जी, हर तोप तैयार है। कुछ तोपों की मरम्मत भी पूरी हो चुकी है।
1: ठीक है सुंदर।
3: जी रानी साहिबा।
1: झांसी के आसपास के इलाकों में जहाँ जहाँ घास नजर आए उसे जला डालो, जहाँ जहाँ घने दरख्त हो उन्हें गिरा दो। मैदानी इलाका इतना उजाड़ हो कि फिरंगी फौजों को न चारा नसीब हो न दरख्तों का साया। रसद मिलने के भी सारे ठिकाने खत्म कर डालो। इस काम पर अलग अलग दिशाओं में अपनी टुकड़ियां फौरन लगा दो। मुंद्रा, मुझे दूरबीन दे। सर हीरोज भारी नाव लश्कर के साथ पढ़ा आ रहा है। गुलाम गौस खां, मेरा इशारा मिलते ही अपनी शानदार घन गर्जन तोप को दाग देना।
2: जी सरकार।
1: दागो। आज इसी वक्त से झांसी आजाद है। मैं दामोदर राव के सरपरस्त की हैसियत से झांसी की गद्दी संभालूंगी। ऐलान किया जाए।
4: अलग

0: इसका मतलब हमारा किला पूरी तरह फिरंगियों के लिए खुल चुका है।
1: फिरंगी फौजें किसी वक्त किले में दाखिल हो सकती हैं।
0: तो ठीक है, तुम सब लोग सुरंग के रास्ते किले से बाहर निकल जाओ। मैं तोफखाने के बारूद भंडार में जाकर खुद को खत्म कर लूंगी।
2: नहीं, ये नहीं हो सकता।
3: जब इसी तरह मरना है तो आप अकेली क्यों रानी साहिबा? हम सभी मरेंगे।
4: हम भी इसी तरह जान दे देंगे, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे।
1: हम सिर्फ कमजोर हुए रानी जी, हारे नहीं है। आपकी छत्र छाया रहे तो हम अभी भी फिरंगियों को खदेड़ सकते हैं। हो सकता है तात्या टोपी हमारी मदद के लिए प्रयत्न कर रहे हो।
0: तो ठीक है, तात्या काल्पी ना आ सके तो क्या हुआ, हम तो काल्पी जा सकते हैं।
2: हाँ।
0: तो चलो काल्पी।
2: रानी लक्ष्मीबाई की।
5: उसी रात मर्दाना भेज में रानी किले की दीवार से हाथी की पीठ पर कूदी, पीठ पर दामोदर राव को बांधा और एक सफेद घोड़े पर सवार होकर काल्पी की ओर चल पड़ी। अंग्रेज लगातार उसका पीछा कर रहे थे। दोनों हाथों से तलवार चलाती, फिरंगियों को मारती काटती रानी लक्ष्मीबाई बिना रुके मीलों दूरी का सफर तय कर काल्पी जा पहुंची। वहां पहुंचते ही रानी के वफादार घोड़े ने दम तोड़ दिया। रानी ने वहां मौजूद तात्या टोपे, नवाब बांदा, बानपुर और शाहगढ़ के बखतबली व मर्दन सिंह से सलाह ली। नाना साहब की ओर से उनके छोटे भाई राव साहब ने रानी का स्वागत किया। रानी ने यहाँ फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व संभाला।
0: बहादुर सिपाहियों, मेरी टुकड़ी का नाम होगा लाल कुर्ती। फिरोज की फौजें किसी भी दम काल्पी पर हमला कर सकती हैं। अपनी फौज में मुझे जाबाज सिपाहियों की जरूरत है। तुम में से जिसे भी मौत का डर हो वो इसी वक्त मेरी फौज से जा सकता है।
6: नहीं, हम मरते दम तक आपकी आज्ञा मानेंगे।
1: हम आपके एक इशारे पर हस्ते हस्ते सर कटा देंगे।
4: हमारा एक ही नारा है, फिरंगियों से लड़ेंगे,
1: मारेंगे या मर जाएंगे।
0: शाबाश।
7: मनु, खबर मिली है कि हीरोज की फौजें काल्पी की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही है।
0: मुझे तो अपनी लाल कुर्ती टुकड़ी पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या राव साहब की सारी पलटन मैदान में फिरंगियों से लोहा ले सकेंगी?
7: क्या बताऊं मनु भाई, नाना साहब की गैर मौजूदगी में राव साहब यहाँ की कमान संभाले बैठे हैं।
0: लेकिन वो खुद तो भांग की तरक भी रहते हैं।
7: हाँ, उनके ज्यादातर फौजी और अफसर भी वैसे ही हैं। इसके अलावा जाने कहाँ कहाँ के लुटेरे और डकैत भी इनकी फौज में घुस आए हैं।
0: मैंने उनसे कहा था राव साहब, अपनी फौज को थोड़ा चुस्त दुरुस्त बनाओ।
7: तो क्या जवाब दिया उन्होंने?
0: बस हाँ हूँ कह के टाल गए।
7: वो कुछ नहीं करेंगे, और दोबारा कहोगी तो हो सकता है कि बुरा मान जाएं।
0: पर क्यों?
7: कई बार कोशिश करने के बाद मैंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। बुरा मत मानना, राव साहब को उच्च कुल के होने का घमंड है, लिहाजा मुझ सरीके साधारण हैसियत वाले की बात मानना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं।
0: क्या कह रहे हो तात्या?
7: रही बात तुम्हारी, तो तुम एक स्त्री हो और ऊपर से उम्र में बहुत छोटी।
0: ये क्या बात हुई? ये छोटे और बड़े का फर्क, ये मर्द और औरत का भेदभाव आखिर क्यों?
7: फिरंगी से लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन ये खोखला दम्भ उनका पीछा नहीं छोड़ पाता।
0: कमाल है, नाना साहब में तो ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं।
7: यही तो फर्क है उनमें और नाना साहब में। खैर, जो भी हो, फिरंगियों से जंग तो मिलकर ही करनी है।
0: सही है, भले ही अलग अलग विचार हो, अलग अलग मानसिकताएं हो, लेकिन लक्ष्य तो हमारा एक ही है।
7: बिल्कुल सही।

0: और देखते ही देखते सर हिरोज अपनी फौजों के साथ कालपी पर टूट पड़ा। जबरदस्त युद्ध हुआ लेकिन कालपी अंग्रेजों के हाथ आ गया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राव साहब और उनके कुछ साथी वहां से दूर एक सुरक्षित स्थान पर ठहरे।
1: कहिए आप सबकी क्या राय है? इस वक्त तो हम फिरंगियों से मुकाबला करने की हालत में नहीं है।
2: मुकाबला करने के लिए हमें मजबूत किला चाहिए और वो किला है ग्वालियर।
1: ग्वालियर के सिंधिया महाराज नाबालिग हैं और उनका दीवान फिरंगियों से मिला हुआ है।
2: और फौजी?
1: बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी फौजी हमारा साथ देने को तैयार है। मैं उनसे अरसे से संपर्क में हूँ।
2: तो फिर ठीक है, आप पहले जाकर उन फौजियों को आगाह कीजिए, फिर हम ग्वालियर की तरफ बढ़ेंगे।
1: ठीक है।
0: हवा से बातें करते तात्या टोपे भी आन की मान में ग्वालियर जा पहुंचे और वहां सिंधिया की फौज में विप्लव की चेतना फूंक आए। राव साहब की सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी लाल कुर्ती टुकड़ी के साथ ग्वालियर की ओर कूच किया। सिंधिया के दीवान ने एक टुकड़ी राव साहब की फौज का मुकाबला करने भेजी। हिंदुस्तानी फौजी तो पहले ही फिरंगियों के खिलाफ हथियार उठाने पर आमादा थे। नतीजा ये हुआ कि राव साहब की फौजें ग्वालियर के किले में घुस गईं। नाबालिग सिंधिया को लेकर दीवान आगरा भाग गया।
3: खला खुदा का, मुलुक बादशाह का, हुकुम राव साहब का, महारानी लक्ष्मीबाई की।
4: रानी साहिबा, किले पर तो सिंधिया और फिरंगी का झंडा उतारकर पेशवाई का झंडा फहरा दिया है। सिंधिया महाराज के खजांची अमर सिंह बाठिया ने तो सारा खजाना सौंप दिया है।
5: अपने सब फौजियों को तनख्वाह बांट दी गई है। राव साहब दरबार बुलाकर पेशवाई का राज तिलक भी करवाने वाले हैं।
4: ऐसी धूम, ऐसी रौनक की पूछिए मत। जगह जगह नाच गाने हो रहे हैं,
5: मिठाइयाँ लुटाई जा रही हैं,
4: भांग बूटी की तो बरसात हो रही है।
2: बस यही एक बात है जो मुझे खटक रही है। राज तिलक हो रहा है, खुशी की बात है, थोड़ी धूमधाम भी हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये भांग बूटी और नाच गाना इस वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं। फिरंगी किसी वक्त भी इस तरफ रुख कर सकते हैं।
6: लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
2: जिन्हें जो करना है करते रहें, लेकिन हम तो अपना काम करेंगे। आसपास के पहाड़ी इलाके, घाटियों और मैदानों का जायजा लेंगे।
0: और रानी ने यही किया। तपती दोपहरी और तेज लू के झोंकों में रानी अपने कुछ साथियों के साथ ग्वालियर का भौगोलिक और सामाजिक निरीक्षण करने में जुट गई। और तभी फिरंगी फौजों ने ग्वालियर को घेर लिया। तात्या टोपे अपनी सेना लेकर मुकाबला करने बढ़े, लेकिन फिरंगी फौजों ने उन्हें तितर बितर कर दिया। रानी ने उनमें नई हिम्मत फूंकी और नए सिरे से व्यूह रचना की।
2: तात्या जी, इस समय किले का पूर्वी फाटक सबसे ज्यादा खतरे में है।
1: आप ठीक कहती हैं।
2: तो इस फाटक की रक्षा का भार मुझ पर रहेगा।
7: वो देखो, जनरल स्मिथ ने अपनी फौज के साथ पूर्वी फाटक पर हमला बोल दिया है।
8: और रानी को तो देखो, किस बहादुरी से उसने फिरंगियों को खदेड़ दिया है।
9: देखो, घोड़े पे सवार रानी अपनी तलवार चमकाती फाटक से बाहर निकल आई है।
8: फिरंगियों को गाजर मूली की तरह काट छाट कर फिर फाटक पर जम गई है।
7: सुबह से

0: शाम हो गई, लेकिन रानी ने अपने घोड़े से उतरने का नाम तक नहीं लिया।
1: बिजली की तरह हर मोर्चे को संभाल रही है।
2: लो, थक हार कर जनरल स्मिथ ने पूर्वी फाटक का रुख ही छोड़ दिया।
3: रानी जी, हमारी तोपें ठंडी हो गई हैं।
4: हमारी सारी फौज तितर बितर हो गई है। हम चारों ओर से घिर चुके हैं।
3: हम लोग भी गिनती के ही रह गए हैं। 15-20 फौजी ही बचे हैं।
4: हम फिरंगी फौजों को चीरते हुए दूसरी तरफ मौजूद अपने साथियों से मिल जाएंगे। घोड़ों को एड़ लगाओ। जय भवानी,
5: जय भवानी।
3: रानी जी, फिरंगी पीछे ही आ रहे हैं।
4: मुड़कर मत देखो, मारते काटते आगे बढ़ते चलो।
1: सामने लाला है, उसे पार कर ले, उसे पार कर ले तो फिरंगी हमें छू भी नहीं सकेंगे।
4: पर ये क्या, मेरा घोड़ा तो नाला पार करने के बजाय आसपास चक्कर काट रहा है। ये नया घोड़ा है, तभी अड़ रहा है।
1: रानी जी, जैसे भी वो नाला कूद जाइए, फिरंगी पास आते जा रहे हैं।
4: मैं कोशिश करती हूँ रामचंद। उफ, लगता है ये घोड़ा साथ नहीं देगा।
1: रानी जी,
4: तुम मेरी चिंता छोड़ो रामचंद्र, तुम्हारे साथ दामोदर राव है, उसे लेकर फौरन निकल जाओ। हाँ, अपनी तलवार से मुझे।
1: नहीं, ये आप क्या कह रही हैं रानी जी।
4: फिरंगी मेरी देह को छुए, इससे अच्छा है तुम ही मेरी देह का अंत कर दो। अरे मैं कहती हूँ।
6: लुक, रानी इज देयर, कम ऑन बॉयज।
1: रानी जी संभालिए, वो फिरंगी सर पर वार कर दिया। हाय आधा माथा कट गया, एक आग बाहर निकल आई। रानी जी, दुष्ट फिरंगी ने छाती पर वार कर दिया।
5: जय भवानी।
1: रानी जी, ओ सिर और छाती से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। वार करने वाले दोनों फिरंगियों को मौत के घाट उतार दिया लगता है। रानी जी, बेहोश हो रही है। मैं आता हूँ रानी जी, मैं आ रहा हूँ रानी जी।
4: रामचंद्र राव,
1: मैं आ गया रानी जी।
4: अब मैं नहीं बचूंगी।
1: ऐसा ना कहिए रानी जी।
4: देखो फिरंगी मेरी देह को हाथ ना लगा सके। तुम
1: रानी जी आके खोलो। आप निश्चिंत रहे रानी जी, मैं आपको बाबा की कुटिया में ले चलता हूँ रानी। गंगा दास बाबा, फिरंगी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ बाबा।
7: कौन? अरे
1: ये रानी जी है बाबा। बाबा, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई।
7: इन्हें भीतर ले चलो बेटा। हाँ, यहाँ लेटा दो। हाँ बेटी, बेटी मुंह खोलो, बेटी मुंह खोलो। हाँ पियो, पी लो बेटा, गंगा जल है ये, पी लो।
1: रानी जी,
7: आज भवानी से जा मिली है।

आनन फानन में बाबा ने अपनी कुटिया तोड़ डाली। एक तपस्वी की कुटिया की पवित्र लकड़ियों की चिता बनी। रानी की मृत देह को देखते ही देखते आग की लपटों ने भस्म में परिवर्तित कर दिया।

निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर हो

0: होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट. एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस. क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
2: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर शिवानी वेलकम.
3: ओम शांति.
2: आपका बीइंग ब्लिस में स्वागत.
3: थैंक यू सो मच.
2: लास्ट टाइम आप कह रही थी कि वांट है, जस्टिफिकेशन है, और क्या क्या शब्द था आपका?
3: पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी.
2: चलिए
3: कि ये मेरी क्रिएशन है.
2: हाँ, मैंने गुस्सा किया, मेरी क्रिएशन है, मैं चाहता भी हूँ, वांट भी है, और मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूँ कि हाँ यार उसने ऐसे बोला तो मुझे गुस्सा आ गया. रिक्शा वाला सामने गाड़ी एकदम ले आया, मुझे ब्रेक मारनी पड़ी, तो क्या, चलो उसको भी मैं अपना मानता हूँ. लेकिन ये सारी चीजें कोई रिजल्ट नहीं ला रही हैं.
3: ये बहुत बड़ा रिजल्ट है.
2: क्या?
3: ये बहुत बड़ा रिजल्ट है जब हम किसी भी आदत को इतने सालों से या पता नहीं और भी कितने पहले से जस्टिफाई करते आए थे, और आज हम उसको अगर जस्टिफाई नहीं कर रहे, जिस चीज को हम सही बोलते आए थे. आज तक हमने कहा गुस्सा नेचुरल है, टेंशन आज के समय में नेचुरल है, हर्ट ऑब्वियस है, बुरा तो लगेगा ही, नेचुरल है, ये सब जस्टिफिकेशंस थे.
2: तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं झूठा झूठा जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ और ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ, अंदर से नहीं है?
3: हाँ, तो फिर वो तो हमें पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा ना, एम आई एक्सेप्टिंग कि दिस इज डैमेजिंग फॉर मी.
2: क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, जस्टिफाई करता हूँ, हाँ मैं गुस्सा किया, हाँ मेरा निश्चय
3: गुस्सा किया, इज नॉट द जस्टिफिकेशन. जस्टिफिकेशन इज ये मेरे लिए हानिकारक है, दिस इज डैमेजिंग.
2: हानिकारक है तो है यार, मैंने बोल दिया, मैं क्या करूँ, नहीं बदल सकता, मैं क्या करूँ, जाओ.
3: मेरा नुकसान हो रहा है, एम आई एक्सेप्टिंग दिस कि मेरा नुकसान हो रहा है, हर क्षण मेरा नुकसान हो रहा है. डू आई अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डैमेज दैट आई एम क्रिएटिंग टू माई सेल्फ.
2: प्रॉब्लम यह है, जब तक कोई नुकसान मुझे नहीं लगता है, जब तक मुझे हॉस्पिटलाइज ना किया जाए कि भाई इसको इतना हाई ब्लड प्रेशर हो गया छिड़के गुस्से में आके कि ये बीमार हो गया, सलाइन लग गया, तब.
3: अच्छा, मन परेशान रहता है.
2: हाँ.
3: अच्छी नींद जितनी रात को आनी चाहिए.
2: Correct.
3: वो नहीं आती है. आज मेजोरिटी लोग अच्छी नींद नहीं सो पाते हैं. सोते हैं, ये नहीं कि सभी नींद की दवाई ले रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं. एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इस तरह के कोई सब्सटेंस को भी यूज कर रहे हैं सोने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो अपने आप आराम से सो जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन कौन सोता है? दिस आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. एंड उसका एक सिंपल टेस्ट है, सुबह जब उठते हैं, चाहे वो अलार्म लगा के उठते हैं या जो आंख खुलती है, फ्रेशनेस कितनी है? क्या मन करता है कि हम 5-10 मिनट और सो जाएं? क्या मन करता है कि हम उस मोबाइल के अलार्म को स्नूज पे लगाकर फिर सो जाएं 10 मिनट के लिए? क्योंकि जितनी देर हम सोते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे या कई बार उससे भी ज्यादा, दो चीजों को आराम मिलना है, एक मन एक शरीर, बोथ नीड टू रिचार्ज नो फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग. बॉडी भी पूरी तरह से रेस्ट करेगी, रिचार्ज होगी, मन भी रेस्ट करेगा और रिचार्ज होगा. हम जब सोने जाते हैं, पूरे दिन में हमने बहुत सारे उथल पुथल क्रिएट की, रिएक्शंस क्रिएट किए, टर्बुलेंस क्रिएट की, नेगेटिव एनर्जीज वातावरण में रेडिएट की, रिटर्न करके भी वो मेरे पास आ रहे हैं, मन में बहुत सारी बातों की सोच चल रही है. फिर रात को बैठे, न्यूज देख ली, नॉवेल पढ़ लिया, कुछ ऐसा कर लिया, कोई सीरियल देख लिया,
2: थ्रिलर
3: देख लिया, मतलब अगेन जो लास्ट इन्फॉर्मेशन भी फीड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टर्बुलेंट है, मतलब नेगेटिव है. न्यूज है, बहुत अच्छी नहीं है. सीरियल है, उसमें बहुत अच्छी बातें नहीं हो रही. इट्स ईदर टॉकिंग अबाउट जेलेसी, इट्स ईदर टॉकिंग अबाउट बिट्रेयल, ये इसी तरह की इमोशंस.
2: ज्यादा से ज्यादा सीरियल में बदला,
3: हाँ, रिवेंज, हेट्रेड, गुस्सा तो कॉमन ही है. ये सारे सीन्स को देखते हुए या पढ़ते हुए, और मन ने पहले ही पूरे दिन में ऐसे सीन्स काफी सारे देख लिए हैं, अंदर भी देखे हैं, यू नो लॉट ऑफ सीन्स आई एम क्रिएटिंग हियर, लॉट ऑफ सीन्स हैपनिंग अराउंड मी, एंड देन टू स्टैम्प इट ऑल, लॉट ऑफ सीन्स इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट इन द नाइट. नहीं ना, दिस इज माई रिलैक्सेशन टाइम. तो रिलैक्सेशन टाइम में क्या लेंगे, ये सारे सीन्स हम आखिरी इन्फॉर्मेशन भरते, ये सब करके सो गए. इट मीन्स गाड़ी फिफ्थ गियर में चल रही थी, मन फास्ट स्पीड पे, और वो फिफ्थ गियर में रख के ही सो गए.
2: न्यूट्रल ही नहीं किया, इंजन ऑफ ही नहीं किया,
3: स्लो डाउन ही नहीं किया. अब 6 घंटे बाद जब हम उठते हैं, बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, उसका जो जो होना था पूरी रात में वो हो गया है, लेकिन मन सारी रात
2: उथल पुथल
3: वही थॉट्स में था, क्योंकि उसको स्लो डाउन करके, सारी सिर्फ स्लो डाउन मीन्स सोचना बंद नहीं, जितने इश्यूज क्रिएट थे आज दिन के अंदर, क्या उनको रिजॉल्व किया, सॉर्ट आउट किया, मन को आंसर्स दिए, या प्रश्नों के साथ ही सो गए, नफरत के साथ ही सो गए, गुस्से के साथ ही सो गए, तो वो रात को भी ऐसे चलता है. सुबह उठे फ्रेश नहीं है, तो चिड़चिड़े होकर ही उठते हैं सबसे पहले. तो आज का मॉर्निंग सीन हर घर का एक अलग वातावरण है,
2: चाय पे झगड़ा शुरू.
3: हाँ, पहले एक वातावरण होता था कि भजन बज रहे हैं, अगरबत्ती जल रही है, एक माहौल ही अलग होता था. आज तो उठे पहले लेट, फिर मूड अच्छा नहीं है, फिर चाय पीनी पड़ती है उसको ठीक करने के लिए. अब इस थकी हुई स्थिति में, थकी हुई मीन्स मन की थकी हुई स्थिति में, उस मन को फिर चलाया और 15-16 घंटे, फिर रात को नहीं सोने दिया ठीक से, फिर चलाया और 15 घंटे. दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर ईयर्स. टुडे यू विल फाइंड मेनी मेनी पीपल जो बैठे बैठे कहीं भी सो सकते हैं. हम पब्लिक प्रोग्राम्स में देखते हैं, दिन का टाइम है, आप सोकर आए हैं अभी 7 घंटा, और आप यहाँ सामने बैठ के कुर्सी पे सो सकते हैं. क्यों? क्योंकि नींद की कमी है. क्योंकि कमी तो नहीं है, मैं तो सोकर आया 6 घंटा, शरीर सोकर आया. कहीं भी नींद आ जाती है, ऑफिस में मीटिंग्स में नींद आ जाती है, बैठे बैठे नींद आ जाती है, क्योंकि नींद की कमी है, मन सो नहीं रहा है रात को. कोई भी मन अगर सोएगा नहीं रात को, और फिर एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, कई दिन, कई साल, तो नींद के बिना व्यवहार कैसा हो जाएगा.
2: ये लाइन कैसी है, क्या करें, हमारा बिजनेस ही ऐसा है.
3: हाँ.
2: हमारा बिजनेस ही फ्लक्चुएटिंग है, हमारा चांदी सोने का सट्टे का बिजनेस है, हमारा शेयर मार्केट का बिजनेस है, रात को प्राइस ऊपर होता है कल नीचे होता है, हमारा गारमेंट का बिजनेस है, हमारा डॉलर का भी ऊपर होता है कभी ये होता है.
3: ये तो राइट है, ये तो होना ही है, लेकिन हमें सिर्फ अभ्यास क्या करना है, डॉलर ऊपर नीचे हो, मन ऊपर नीचे ना हो ना. गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ऊपर नीचे हो, मन साथ साथ उतना ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि बिजनेस तो करना ही है.
2: बट मन जुड़ा हुआ है ना बिजनेस से.
3: मन बिजनेस से जुड़ा हुआ है,
2: क्यों नहीं,
3: मन बिजनेस से जुड़ा हुआ है. मीन्स अगेन वी आर सेइंग कि बिजनेस का मन पर प्रभाव, मन का बिजनेस पर प्रभाव, परिस्थिति का स्थिति पर प्रभाव, या स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव, यही तो खेल है सारा सारा दिन. अगर हमने अभी अभी ये जो आपने कहा, दिस वाज अगेन जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन आई ना, ये इतनी सूक्ष्म.
2: मदर एंड चाइल्ड का रिलेशन देखो, सबको मालूम है कि बच्चा पैदा होता है तो कब पता नहीं कितनी बार बुखार जुकाम आता ही है, फिर वो क्यों इतनी दुखी हो जाती है. ये अगर इसको मैं परिस्थिति करूं, जैसे बिजनेस है, बिजनेस भी तो मेरा बच्चा है.
3: आप आज की माँ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप 20 साल पहले की माँ को देखते तो वो कहती कोई बात नहीं, बच्चा है, इतना होता है, ठीक हो जाएगा. क्योंकि माँ स्ट्रांग थी, माँ स्ट्रांग थी मतलब मन स्ट्रांग था. ये करते करते करते करते आज हरेक का मन कैसा हो गया, जितना हमने परिस्थिति को अपने मन पर प्रभाव डालने दिया, ये एक दिन में नहीं हुआ है, एक परिस्थिति में नहीं हुआ है, ये कई सालों से हर अगर मैं किसी को अपने ऊपर हावी होने दूं, मैं कमजोर आप पावरफुल, मैं कमजोर आप पावरफुल, तो कोई मेरे पर हावी होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, 20 साल बाद क्या हो जाएगा, मेरी अपनी तो कोई ताकत ही नहीं रही, उसने कम्प्लीटली मुझे
2: ओवर कर लिया,
3: परिस्थिति ने कम्प्लीटली आज हमें ओवर पावर कर लिया है. क्योंकि हमने बार बार यही कहा, जो आपने अभी कहा ना, बिजनेस है, मन पर असर तो पड़ेगा ही, पड़ेगा ही मतलब जस्टिफिकेशन, तो मतलब कहा मेरा परेशान होना इज ओके।
2: आई नो, बट ये आपकी बात का

0: पिक्चर बनानी है, उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चाहिए, फिर से वो जो एक एंथुजियाज्म चाहिए, वो इस स्थिति में डाउन हो जाती है. फिर बहुत मेहनत करती पड़ती है वो वापस मोटिवेशन पर जाने के लिए, फिर वो एंथुजियाज्म. अच्छा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो क्रिएट हो जाता है, मैं कर रहा हूं बट नाउ आई एम नॉट श्योर.
1: पिछली बार इतनी मेहनत की फिर भी फेल हुआ.
0: यस, नाउ दिस विल स्टार्ट हैपनिंग. तो अब क्या हुआ, एक फेलियर हुआ. वी आर नॉट सेइंग फेलियर इज गुड, फेलियर हुआ, लेकिन फेलियर को अपने ऊपर कितना हावी होने देंगे और हम फेलियर पर कितना हावी होकर आगे बढ़ जाएंगे, ये दो ऑप्शन तो है ना. अगर मैंने फेलियर को, एक फेलियर आया लेकिन मैंने फेलियर को अपने ऊपर हावी होने दिया, मतलब मेरी मन की स्थिति उस फेलियर के, अब उसमें भी आप देखो पिक्चर फेल हुई लेकिन हर एक पे अलग अलग असर पड़ेगा. किसी पर वो ज्यादा हावी होगी बात, किसी पर कम. जितनी ज्यादा हावी होगी उसको उतनी ज्यादा मेहनत निकलेगी उससे बाहर निकलने में, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आप मेहनत करके बाहर निकलो, लेकिन उसका इफेक्ट आपकी नेक्स्ट चीज पर पड़ने वाला है. तो देन क्या हुआ, इट विल बिकम अ विशियस साइकिल. अब नेक्स्ट टाइम आप उतने फ्यूल, उतनी एनर्जी के साथ स्टार्ट ही नहीं कर रहे. अब आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे उतनी एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर अगेन, you are increasing now the probability of a failure or not that much success jitna
1: hona chahiye. aise samay pe jab kisi bade star ki film fail ho jati hai, tab usko aise log approach karte hain jo kehte hain ki dekhiye aapki pichli film fail ho gayi hai, market aapki down hai, phir bhi hum dekhiye aapke paas paise laga ke aapko phir khada karenge, magar aap hamare liye thoda price reduction kar lijiye. us zamane mein main 30-40 saal pehle यही लाइंस किसी एक हीरो को किसी ने बोला था, तो यू नो व्हाट ही सेड, फिल्म फेल हुई है सर, मैं फेल नहीं हुआ.
0: ब्यूटीफुल, नो सी दिस इज इट. एंड आई एम श्योर कि वो जो भी था मस्ट हैव रिजन बैक टू व्हाट ही वाज सपोज्ड टू बी.
1: राइज किया,
0: एब्सोल्युटली.
1: क्योंकि
0: परिस्थिति को अपने ऊपर नहीं हावी होने दिया, परिस्थिति से ऊपर उठ गए. एंड ये हम सारा दिन देख पाएंगे अपने आसपास. देर आर सो मेनी पीपल जिनका सब कुछ खत्म हो जाता है, बिजनेस कहाँ था और कहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं हिलते हैं. और जो अंदर नहीं हिलेगा वो क्या कहेगा, ठीक है प्रॉब्लम आई.
1: एक जली हुई दुकान के पास बोर्ड लगा हुआ था,
0: हाँ,
1: जो आग से जल गई थी, कि मेरी दुकान जल गई है लेकिन मेरा पैशन, मेरी मेहनत और मेरी लगन नहीं जली, मैं फिर से आप बनाऊंगा.
0: ब्यूटीफुल, मतलब मेरी स्थिति वही है, परिस्थिति इस समय अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी स्थिति परिस्थिति को फिर से बहुत सुंदर बना देगी. एंड इतनी सुंदर बना, अगर स्थिति अच्छी हुई ना तो परिस्थिति जो सोचा भी नहीं था ना उससे भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी. इसीलिए ये बात को अब अपनी वोकैबुलरी से हटाना पड़ेगा कि बात ऐसी थी तो हुआ ही ना. एवरी टाइम आई से दिस ना, आई एम सेइंग आ जाओ परिस्थिति मेरे ऊपर हावी हो जाओ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है तुम्हारे सामने खड़े होने की, तुम बहुत पावरफुल हो. हम अपने को बहुत कमजोर करते हैं ऐसे समय पर. एक्सेप्ट प्रॉब्लम आई है, एक्सेप्ट, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में अब मुझे नहीं सोचना है. माई इमीडिएट थॉट इज वॉट नेक्स्ट सोल्यूशन, वॉट नेक्स्ट. लेकिन सब कुछ खत्म हो गया ना, फाइन, वॉट नेक्स्ट, अब क्या करना है, क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, अब क्या करूंगा, होगा या नहीं होगा. दिस इज वन टाइप ऑफ थॉट. दैट इज व्हाई द थर्ड स्टेप इज व्हाट थॉट्स टू चूज नाउ. जब सब कुछ गलत हो रहा है, जैसे आपने कहा माँ के लिए एक बच्चा बीमार हो रहा है, बुखार है, जुकाम है ना, ठीक है, तो अब क्या
1: करना
0: है ना, बुखार और जुकाम, तो अब क्या करना है, टाइप ऑफ थॉट क्या सोचना है. बट द थॉट्स दैट वी विल क्रिएट टुडे इज क्यों हुआ, मेरा बच्चा इतना रो रहा है, दुखी है, क्या होगा इसका, ये सारी थॉट्स मेरी स्थिति को, एक एक थॉट, एक थॉट के अंदर इतनी पावर है कि या तो वो मुझे ऐसे ले जाएगी या वो मुझे ऐसे उठा देगी. द क्वालिटी ऑफ थॉट एट दैट टाइम,
1: उसकी बॉडी लड़ेगी बीमारी से, बच्चा ठीक हो जाएगा,
0: ठीक हो जाएगा. चाहे वो इतनी छोटी सी चीज हो, चाहे कोई बहुत बड़ी बात हो. आज हमने देखे हैं लोग जिनको कैंसर है, कहेंगे है ना, है कैंसर ना, ठीक है, आई विल ओवरकम दिस. कोई और होगा कहेगा

0: 6 महीना ही है सिर्फ मेरे पास, एंड बेड पर पकड़ लेंगे। अब डॉक्टर ने कहा होगा कि 6 महीना है इनके पास, लेकिन उनका मन उनको 2 या 3 महीने से ज्यादा नहीं चलने देगा। ये मन की पावर है, पावर ऑफ माइंड डिपेंड्स ऑन एवरी थॉट गेटिंग क्रिएटेड एट दैट टाइम। लेट मी बी केयरफुल, लेट मी नॉट से लेकिन बात ऐसी थी, लेकिन ये मेरी नेचर है, मेरी एक थॉट मुझे कहां से कहां लेकर जा सकती है और मेरी एक थॉट मुझे यहाँ गिरा सकती है, नो जस्टिफिकेशन। तो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे आसपास जो है, जो हमें उस समय राय दे रहे हैं, वो कैसी राय देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परमात्मा एक बहुत सुंदर बात हमें सिखाते हैं, समस्या का चिंतन नहीं करो। और ये सारा दिन में हम आज ट्राई कर सकते हैं, डू नॉट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, समाधान स्वरूप बनो, प्रॉब्लम का चिंतन नहीं, सोल्यूशन पर फोकस। हम लोग कहते हैं हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यू नो वी नॉट इवन अवेयर कि हम क्या सोचते हैं। हम कहते हैं हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन डिस्कस प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। कोई भी चैलेंज आए, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा फेलियर भी, एक सिंपल रूल, दिस होल फैमिली और द होल कंपनी या जो भी लोग इन्वॉल्व है, एक रूल हमेशा याद रखना है, जितनी देर हम प्रॉब्लम के बारे में चिंतन कर रहे हैं, एंड प्रॉब्लम के बारे में चिंतन मतलब जो हो चुका, एंड दिस इज अ वेरी थिन लाइन, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, समवन हैज टू बी वेरी वेरी अलर्ट टू सी कि किस बारे में चिंतन हो रहा है। क्योंकि काफी बार हम प्रॉब्लम के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं वी डिस्कसिंग द सोल्यूशन, यू नो, स्पेशली इफ यू सी मीटिंग्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल सिटिंग, कोई सोसाइटी की मीटिंग, कोई कंपनी की मीटिंग, टीम की मीटिंग घंटों चलती है, और ये जो घंटों मीटिंग्स चलती हैं और
1: लड़ाइयां झगड़े
0: वो भी हो जाते हैं, क्योंकि जहां प्रॉब्लम का चिंतन होगा ना, तब ब्लेम गेम भी आएगा, प्रॉब्लम ये आई क्यों, प्रॉब्लम ये किसकी वजह से हुआ। लेकिन जितना भी प्रॉब्लम का चिंतन हो रहा है, ब्लेम गेम हो रहा है, वी आर ओनली डिप्लीटिंग एनर्जी, एंड हम ये नहीं रियलाइज करते कि वो एनर्जी जो उस टाइम डिप्लीट हो रही है, ड्रेन हो रही है, वो हमारा नुकसान कर रही है, क्योंकि हम सोल्यूशन के लिए अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। कई बार हम कहते हैं कि प्रॉब्लम के बारे में अगर you know, सोचेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे तो अगली बार फिर वो गलती हो जाएगी। प्रॉब्लम का चिंतन मुझे सोल्यूशन से दूर करता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोल्यूशन सामने भी अगर खड़ा होगा, सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की जो ताकत चाहिए, वो मेरी प्रॉब्लम का चिंतन करने में ड्रेन आउट हो रही है। सो वेरी थिन लाइन एंड लॉट ऑफ अवेयरनेस कि प्रॉब्लम, लोग, किनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, क्या नहीं किया ठीक, क्या करना चाहिए था ठीक, सब कुछ जो होना चाहिए था हुआ था, एनीथिंग विच इज पास्ट और एनीथिंग फॉर विच समबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू थिंक अबाउट इट। जितनी जल्दी हो सके अपने माइंड को प्रॉब्लम से सोल्यूशन, एंड इट हैज टू बी अ जम्प, इट हैज टू बी अ वेरी बिग शिफ्ट। ठीक है, बहुत बात हो गई प्रॉब्लम के बारे में, अब क्या करना है,
1: क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर से आया। सपोजिंग मैं अपने रूम में जाऊं अभी यहाँ से शूटिंग के बाद, और देखो कि मेरे रूम में सांप है
0: पलंग
1: पे, और मैं बोलूं क्यों आया, कहाँ से आया, एक काम करते हैं, दुनिया को बोला बोर्ड मीटिंग करता हूँ, वो करूंगा या इमीडिएटली पहले हटाऊं।
0: दिस इज इट, क्यों आया, लोग ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं, स्टाफ कहाँ था, सफाई नहीं की, ध्यान नहीं रखा, कितनी एनर्जी।
1: मैं काट लेता तो मैं मर जाता तो ये मतलब।
0: चलो ठीक है, अगर ये भी जो आपने कहा ना, इसको भगा दो, अब सपोज हमने उसको भगा तो दिया क्योंकि वो तो डेंजरस है, लेकिन उसको भगाने के बाद भी हमने अगर ये चिंतन किया, क्यों हुआ, कहाँ से आया, किसकी गलती थी, यूजफुल। अब हमें लगता है ये नेचुरल है, अब इसको हम नेचुरल कह देंगे, ये जो हम रियलाइज नहीं कर रहे, ये मेरी एक एक थॉट अबाउट समथिंग विच इज नॉट इन माई कंट्रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात जो हो चुकी है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लोग जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं उस पर सोचना मेरी ताकत को कम करता है। ये तो पकड़ ले बात
1: क्यों को। सोचते हैं, मैं क्यों नहीं सोच रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका एक एक वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, कन्वर्स कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं सोच रहा हूँ ये चिड़िया क्यों बोल रही है।
0: दिस इज
1: इतनी सुंदर चिड़िया है, चारों तरफ वातावरण अच्छा है।
0: अब अगर आप कितना भी उस बारे में सोचे,
1: एक बार भी नहीं सोच रहा मैं।
0: यस, बिकॉज यू नो कि यू कैन नॉट कंट्रोल।
1: ऐसा नहीं है, एक्सेप्टेड है, ठीक है, अच्छा लग रहा है
0: ये सा, लेकिन सारा दिन में वो चीजें नहीं होंगी जो अच्छी लग रही होंगी, ये भी इम्पोर्टेंट है।
1: फिर सारा दिन एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा।
0: अब जो चीजें अच्छी हैं वो तो एक्सेप्ट हो गई, इम्पोर्टेंट है जो कंट्रोल में नहीं है। इवन अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो भी उसको एक्सेप्ट करना है। जो मेरे कंट्रोल में नहीं उस पर चिंतन मेरी शक्ति को वेस्ट करता है। यू नो इट्स लाइक सपोज मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी पत्थर या ईंट आ जाए, पत्थर है बहुत बड़ा सॉलिड पत्थर है, और मैं उसको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं टूटने वाला है, लेकिन मैं करते जाऊं तो हाथ ही दर्द होगा, पत्थर को तो कुछ नहीं होगा। तो मैं कोई ऐसे लोगों को या सिचुएशन के बारे में चिंतन कर रहा हूं जो बीत चुका है, एंड आई एम सेइंग क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा, जो बीत चुका है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो कुछ कोई कर रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ जो टूट नहीं सकता है। तो उससे क्या हुआ, दर्द मुझे ही होगा। व्हेनेवर हमारे थॉट्स चल रहे हो ना, ऑलवेज स्टॉप एंड चेक, एम आई थिंकिंग अबाउट वॉट इज इन माई कंट्रोल, और एम आई थिंकिंग अबाउट वॉट इज नॉट इन माई कंट्रोल। ही शुड हैव सेड दिस, शी शुड हैव डन दिस, ही कुड हैव डन इट दिस वे, वो इट्स ऑलरेडी हैपेंड। बट हाँ, ये कर सकते हैं हम उनको जाकर कह सकते हैं, आप नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे, आई वुड बी वेरी हैप्पी या आई वुड लाइक इट कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कर लें इस चीज को।
1: ऐसा भी तो बोल सकते हैं, भाई उस दिन आपने ये बोला थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, थोड़ा सा
0: वो हम
1: वो नहीं
0: देखेंगे आगे
1: अगले एपिसोड में
0: देखेंगे कि वो बोलने से फायदा होता है या नहीं होता। इम्पोर्टेंट है जो बीत चुका है उस पर चिंतन मेरी शक्ति को नष्ट करता है। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम जैसे प्रकृति रिसोर्सेज का आज इतना ध्यान रखते हैं, बिजली अगर चल रही है कमरे में कोई नहीं है तो इमीडिएटली बंद करेंगे ना, एंड वी सो अवेयर। यू नो व्हेन वी सेइंग अवेयर, कि बहुत लोग पूछेंगे अवेयरनेस क्या है, व्हाट डज इट मीन सेल्फ अवेयर, सेल्फ अवेयर, अवेयरनेस, कमरा खाली है, बिजली चल रही है, वेस्ट हो रहा है, बाथरूम में कोई नहीं है, नल चल रहा है, किचन में कोई नहीं है, नल चल रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, अवेयरनेस है ना। अच्छा, कुछ लोग होंगे कमरे में कोई नहीं है, बिजली चल रही है, अवेयरनेस नहीं होगी।
1: गीजर भी चल रहा है, गर्म पानी है,
0: एसी भी ऑन है, कमरे में कोई नहीं है, तो कोई और आके बोलेगा आपको इतना भी अवेयरनेस नहीं है कि वेस्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, एक को अवेयरनेस है, दूसरे को नहीं है ना। यही हमें सारा दिन करना है कि आपको नहीं दिख रहा एनर्जी वेस्ट हो रही है, आज इतनी कमी है रिसोर्सेज की, इमीडिएटली स्विच इट ऑफ। सो व्हाट आर वी डूइंग, ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम बीइंग अनअवेयर टू अवेयर। अब किसको अवेयरनेस होगी और किसको नहीं होगी, अब जो नॉलेजफुल है एंड इम्पोर्टेंट, जिसके लिए वो प्रायोरिटी है, किसी के लिए वेस्ट नहीं होना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये प्रायोरिटी है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, उसकी वो प्रायोरिटी लिस्ट पे ही नहीं आ रहा।
1: पहले ना सिस्टर, मैं जब कोई चीज ऐसे नल चल रहा है तो चल रहा है, पंखे चल रहे तो चल रहे हैं, पहले मैं चिल्लाता था, फाइनली थक के मैं सिर्फ बंद करना शुरू कर दिया।
0: हाँ,
1: और कुछ तरीका ही नहीं था।
0: वेरी गुड। अब एक और चीज करनी है, जब अंदर का नल चल रहा हो, यहाँ चल रहा है, एक एक थॉट जो चल रही है ना, इट्स लाइक ड्रेनिंग, कोई काम नहीं हो रहा है, उस थॉट से कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लेकिन वो चल रही है, चल रही है, आप जाकर उसको बंद करना है। सेइंग टू माई सेल्फ, आई एम वेस्टिंग एनर्जी नाउ थिंकिंग अबाउट ऑल दिस,
1: एनर्जी का नल
0: बंद, एक एक थॉट, और ये सिर्फ वेस्ट नहीं हो रहा, ये डैमेज भी क्रिएट करता है। पानी तो सिर्फ वेस्ट होता है ना, बिजली तो सिर्फ वेस्ट होती है, नुकसान तो नहीं क्रिएट कर देगा ना अगर नल चल रहा है, ये तो नुकसान भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब ऐसे टप टप टप चलता है ना, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है उस टाइम। व्हेन इट इज टू मेनी थॉट्स, इट्स नॉट वेरी गुड क्वालिटी थॉट। तो दोनों नुकसान हो गए, एक तो टू मेनी तो वो थकावट, एंड दूसरा नॉट वेरी गुड क्वालिटी, तो एनर्जी भी अच्छी नहीं है। अब क्या होगा अगर नल चलता रहेगा, अगर टैप आपका खुला रह गया, सुबह आप ऑफिस चले गए, शाम को जब आपको फाइनली पानी चाहिए तब तक वो ओवरहेड टैंक खत्म हो गया होगा, जब हमने अननेसेसरी बातों में सोचते गए, सोच रहे हैं, घंटा बीत गया सोच रहे हैं, फिर बात भी कर रहे हैं उसके बारे में,
1: आउट ऑफ कंट्रोल होता है सिस्टम।
0: या बट व्हाट विल हैपन, एनर्जी जब डिप्लीट होती जाएगी, जब उस एनर्जी की जरूरत होगी, कोई बात आ गई और अब हमें उसको फेस करना है। लेट्स से अ सिंपल थिंग कि बच्चा घर पे 8 बजे आता है रोज रात को, आज 9 बज गए अभी तक नहीं आया, फोन भी नहीं लग रहा, सबसे पूछ लिया, अब आई ओनली हैव वन चॉइस, वेट, है ना। लेकिन वो वेटिंग की क्वालिटी कैसी होती है, अंदर कैसी कैसी थॉट्स चलती हैं, ये हर एक अपने आप की चेकिंग कर ले। अगर उस 1 घंटे वेट करने में हमने सब तरह की नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर ली उतनी देर में, तब 99.99% तो बच्चा घर आ ही जाएगा। जब घर आएगा, अगर ये इस तरह की नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की होंगी तो हम उसको पहले डांट देंगे, हम उसको प्यार से अंदर लाकर ये भी नहीं पूछ पाएंगे कि हुआ क्या था, हम चिल्ला के पूछेंगे कि क्या हुआ था, तुम कहाँ थे, लापरवाह हो गए हो, फोन करना भी जरूरी समझते नहीं, विदाउट रियलाइजिंग ही मस्ट हैव जस्ट गॉन थ्रू समथिंग एंड कम। हाँ, तो वो रिएक्शन क्यों, क्योंकि एनर्जी 1 घंटे में डिप्लीट हुई। लेकिन 0.01% अगर कुछ हुआ है, सपोज एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट की परिस्थिति को फेस करने के लिए जो मुझे ताकत चाहिए वो मेरे अंदर नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी ताकत ऑलरेडी चिंता करने में वेस्ट कर दी है। सो रिसोर्सेस को अगर सही तरह से यूज ना किया जाए, वेस्ट किया जाए, तो जब रिसोर्सेज की जरूरत होती है तो वी विल नॉट हैव द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर अस, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सारा दिन कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल है उसके बारे में चिंतन न कर स्विच को ऑफ करे, दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। चलेंगी थोड़ी, जो आपने कहा ना अपने आप आ रही है, आ रही है, लेकिन अब उसको देखना शुरू कर दो, हर स्टेप पे रुको, व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट, क्या सोचा, अच्छा ये सोच चल रही है, इन माय कंट्रोल, नॉट इन माय कंट्रोल, नॉट इन माय कंट्रोल, ओके चेंज, दिस इज सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को देखना। जैसे हम सारा दिन औरों को देख रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इधर क्या है, उधर क्या है, ये क्या सोच रहा है, एवरी टाइम बाहर से सब कुछ करते हुए एक एक मिनट के लिए अंदर को देखना, ये क्या कर रहा है, एक ध्यान हमेशा अंदर, ताकि जैसे शुरू हो तब उसको तुरंत चुप कराना है, तुरंत उसकी क्वालिटी को चेंज करना है। वी विल स्टार्ट कंजर्विंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, दिस वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी
1: स्टेप। वंडरफुल सिस्टर, आज इसका होमवर्क करता हूँ, फिर अगले एपिसोड में मिलता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: नमस्कार। ओम शांति। थैंक यू सो मच।
2: रिजॉल्व द इश्यूज ऑन द माइंड बिफोर स्लीपिंग, गिव आंसर्स टू द डिस्टर्ब्ड माइंड और गिव इंस्ट्रक्शन that we will think about this tomorrow. Silence the mind, else the body will sleep. Mind will keep thinking and not get charged. Improper sleep over a period of time makes us sleep deprived. This makes our behavior irritable, tolerance power low, memory power and decision making power gets affected. If we allow situations to overpower the mind, we start depleting our power. Rise above the situation. Focus on the solution rather than thinking about why the problem happened. Think about the solution, not the problem. Till we keep thinking about the problem, we are thinking about the past, which is not in our control, and we are wasting time and energy.
3: Namaskar, mi Monali Sabagat, tumhi aikat ahat Radio Puneri Awaaz 107.8 FM, khush raho, khushiyan baato.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, When they are under stress, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: ओम शांति, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान दीपक जाधव जी राहटनी रेडियो पुणेरी आवाज से हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। तो दीपक जाधव जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, और आप विशेष सर्वेयर है जो खास करके जमीनों का जो है सर्वे करता है करते हैं, और साथ ही साथ उनके डॉक्यूमेंट्स को भी आप जो है करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है कि किसी को अपनी जमीन का डॉक्यूमेंटेशन और फिर सर्वे करना हो तो आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़कर आप इन चीजों को सुचारू रूप से नियम अनुसार कर सकते हैं। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति से हमारी मुलाकात हो रही है दीपक जाधव जी से। दीपक जाधव जी बहुत बहुत स्वागत, और मैं चाहूंगा आप अपने बारे में बताइए हमें। स्वागत।
3: मेरा नाम है दीपक प्रकाश जाधव, मेरा कंपनी का नाम है विमल इंटरप्राइजेस एंड सर्वेयर, पिंपरी चिंचोड़ पुणे। मेरा ऑफिस है राहटनी में। मैंने ये कंपनी 2011 में चालू किया था।
2: अच्छा।
3: तब से अभी तक मेरे 1200 प्लस कस्टमर है। जो बिल्डर्स है, लोकल्स कस्टमर है, आर्किटेक्ट है, डेवलपर्स है, उसमें ज्यादा मेरे कंपनी, कुछ लिमिटेड कंपनीज है जिनका साल का जो रहता है कि भाई ये नहीं करना है, ये प्रॉपर्टी कार्ड बनाना है, जिसका 7/12 बनाना है, ऐसे कंपनी का मेरा काम चलता है।
2: जी जी जी। दीपक जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं पुणे में। ये कितना टाइम हो गया आपको इन कामों को करते हुए?
3: ये 2011 से अभी तक चालू है।
2: अच्छा, 2011 से अभी तक आप कर रहे हैं, मना एक 14 साल की तपस्या आपकी पूरी हो रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा कि एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है, और निश्चित तौर पे अभी आप सब काम जो है बहुत ही एक लंबा सफर आपने तय किया। तो शुरू में जब ये बिजनेस आपने शुरू किया या काम करना शुरू कर दिया तो क्या क्या चैलेंजेस आते थे आपके पास?
3: पहला चैलेंजेस था का मशीन लेना है।
2: अच्छा।
3: तो उसके लिए पैसा चाहिए। शुरुआत वैसा है, डिप्लोमा होने के बाद क्या है वो मशीनरी खरीदना है, उसके लिए बहुत पैसा, रूसी में लोन होता नहीं मशीन।
2: अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा।
3: तो क्या मतलब जो है जो व्हाइट पेमेंट दे के लेना पड़ता है, जो 11 लाख 12 लाख 17 लाख 18 लाख ऐसे मशीन का ये प्राइस है। उससे पहला मशीन लेते समय बहुत प्रॉब्लम हुआ, हिस्से दोस्त से पैसा लो, कुछ गहने रखे ले लो, घर से मम्मी से लिया, पापा से लिया, ऐसा करके ये पूरा फंड बना के पहला मशीन खरीदा था।
2: बहुत बढ़िया।
3: तो एक साल में नील किया मैंने पूरा पेमेंट।
2: अच्छा।
3: एक साल में। और एक साल में दूसरा मशीन भी ले लिया।
2: क्या बात।
3: तो ऐसा स्ट्रगल था स्टार्ट में, अभी कुछ नहीं है, अभी 6-7 मशीन है, ऑफिस है, तब ऑफिस नहीं था, ऐसा अभी चल रहा है सबके दुआ से, कस्टमर हैप्पी है तो काम मिलता है सर।
2: सही बात है, एक बार आपसे कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो आपको खुद तो कस्टमर ही है, दूसरों को भी आपके साथ जोड़ता है। तो ये काम आप खुद हो के, जैसे कि एक बार डिप्लोमा हो गया तो प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी को असिस्ट किया या डायरेक्टली आप सीखते गए, कैसा?
3: एक मेरा दोस्त था सचिन लवंडे बोल के, उसने मुझे सिखाया पूरा।
2: अरे वाह।
3: हाँ, वो उसी में था पहले।
2: हाँ,
3: उनसे ये सीखा मैं पूरा।
2: बहुत बढ़िया। अच्छा, आज के समय में जैसे कि हमारे बहुत सारी यूथ है वो भी कुछ ना कुछ करना ही चाहते हैं, तो क्या वो इस फील्ड में आ सकते हैं? तो उसकी मानसिकता क्या होनी चाहिए, कितनी तैयारी उसकी होनी चाहिए, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे?
3: सर कैसा है, अभी मेरे पास भी जो सर्वर जॉब करते हैं,
2: जी
3: वो क्या करते हैं, कम समय में उनको थोड़ा सा जल्दी फास्ट बड़ा होना रहता है। क्या होता है, 6 महीना 4 महीना जॉब किया कि मशीन लेना पड़े, वो बोलते हैं मशीन लेने का और खुद का चालू कर देते। पहला अपने को कस्टमर बेस बनाना पड़ता है सर।
2: बिल्कुल।
3: जो आर्किटेक्ट चाहिए आपको, डेवलपर चाहिए, बिल्डर चाहिए या कंपनी चाहिए, वो नए लोग जो लड़के हैं उनको क्या होता है, फास्ट तुरंत होना चाहिए हमारी कंपनी का नाम बड़ा, तो ऐसा नहीं होता सर। क्या तो सब जो यंग जो आने वाले व्यवसाय में, तो उनके लिए बोलता हूँ थोड़ा किसी के पास अनुभव लीजिए, 1 साल 1.5 साल, उसके बाद क्या रहता है, तुरंत ये चीज करने में थोड़ा सा गलत है, तो फिर वो क्या करते हैं, थोड़े दिन लेते हैं और मशीन बेचने के लिए फिर निकाल देते हैं, तो ऐसे में वो माइनर जाते हैं। फिर वो व्यवसाय के पीछे जो उनका राज रहता है वो क्या बोलते, नहीं व्यवसाय ऐसा है वैसा है, फिर जॉब करने लग जाते। व्यवसाय ये अच्छा ही है लेकिन थोड़ा समय दीजिए उसको, पहला स्ट्रगल कीजिए, पूरा बात समझ के लिए, कस्टमर मार्केट क्या है, कैसा है, क्या करना पड़ता है, उसके बाद डिसीजन लीजिए खुद का बिजनेस करने के लिए, ये बोलूंगा मैं सब।
2: ये दीपक जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता और तुरंत नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और पेशेंट रखना है। आजकल वो युवाओं में कहीं ना कहीं कमी आई है और वो चीज आप देख भी रहे हैं, क्योंकि जो लोग सीखने के लिए आते हैं या आपके यहाँ काम करते हैं तो वो भी समझते हैं कि मशीन ले लिया तो काम हो गया। लेकिन मशीन लेने के लिए भी पैसे लगेंगे और उसको फिर मेंटेन करना है, फिर काम आपको चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो आपके लिए वो सिरदर्दी हो जाएगा, है ना। इसके लिए आपको पहले टीम बनाना है जैसे दीपक जी बता रहे थे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें कोई भी काम करना है, बिल्कुल काम तो करना ही है क्योंकि आपको जीना है, मुझे जीना है, सबको जीना है, तो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन काम अगर आप सुचारू रूप से सही ढंग से समझ के और किसी के निरीक्षण में आप करते हैं तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, बजाय कि आप जल्दबाजी में मशीन लेके अपना ही कुछ सेटअप शुरू कर देंगे तो सारा चीज गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए आपको एक कम्युनिटी बेस आपका जो है अच्छी पहचान बनाए, लोगों से मिले जुले और फिर आप जो है सुचारू रूप से ईमानदारी से अच्छे से काम करने का सोचे। जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि जल्दबाजी में खाना भी ठीक से नहीं बनता, चाय भी ठीक से नहीं बनता। चाय भी बनाना हो तो आपको पेशेंसली हर चीज को सामने सब चीजें हो आपके पास और बड़े ध्यान से पूर्व से प्रेम से अगर आप बनाते हैं, इसलिए होटल में भले ही आप 5-स्टार होटल में जाके खाना खाओ, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, सब चीजें बाजू में आसपास में बहुत सारी चीजें, लेकिन वो घर में जो फुर्सत में माँ प्यार से बनाया खाना है उसकी तुलना में वो कम ही लगता है। तो इसलिए हमेशा जो है अपनों से प्यार से जीवन जो है वो समृद्ध बनाता है, भले पैसा ना हो लेकिन आप कीमती, आपका कीमत बहुत लगता है आपका, आपको देखने वाले आपको मिलने वाले खुशी फील करते हैं, लोग आपसे मिलना चाहेंगे अगर आप अगर ईमानदार है, वैल्यू बेस्ड इंसान है और सबका कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में बेहतरता आती है। ऐसा कहा जाता है मानवता का पहला धर्म है नमन, एक दूसरे को सम्मान दे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, ऐसे नहीं कि उसका कुछ भी हो जाए मैं पहला। तो फिल्मी चीजें नहीं चलती, फिल्मी चीजें 3 घंटे के लिए फिल्म में अच्छा है लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको 100 साल की जिंदगी बितानी होती है जहाँ पर सबको साथ में, पत्नी बच्चे माँ बाप सबको लेके चलना होता है, परिवार को लेके चलना होता है। तो इसको आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मतलब बड़े बेहद तरीके से आपको सोचना। दीपक जी मैं चाहूंगा कि आपका मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता था ये सब काम करने के लिए, क्योंकि आपने कहा एक साल में आपने मशीन लिया और उसको फिर पे भी किया, तो काफी मेहनत किया होगा क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप खर्चा लिया एक साल में पेड भी किया और नया मशीन भी लिया, तो ऐसा ये भी लग रहा है कि कुछ ज्यादा या तो मेहनत किया होगा आपने।
3: सही है, क्या होता है जब अपन एक ध्येय रहता है ना खुद का, स्ट्रगल भाई ये करना है, ये करना है मुझे, तो जब वो करना है ना तब वहां तक समझो मुझे बॉम्बे यहीं से पैदल जाना है तो मतलब जाना ही है,
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: ऐसा मैंने रख दिया ना तो जाना ही पड़ता है, इसके लिए भागना पड़ता है, नींद नहीं खाना नहीं देखना पड़ता, काम काम काम,
2: बिल्कुल
3: बिल्कुल पूरा मेरा हो गया। और उसी में कैसा है जब मुझे ऐसा लगता है यार कुछ काम का थोड़ा ये है तो मैं खुद थोड़ा सा मेडिटेशन घर पे कर देता हूँ या मेरे दोस्त लोग के साथ बैडमिंटन खेलने जाता हूँ,
2: 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा।
3: फिर कुछ भी नहीं हुआ तो मेरी मम्मी गांव रहती है भीड़ में, तो मैं उससे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, या महीने में 2 बार तो भी मैं घर जाके आता हूँ, तो उसमें मुझे मोटिवेशन मिलता है।
2: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दीपक जाधव जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। और मैं चाहूंगा कि युवाओं के लिए जो बातें आपने बताया बहुत ही सही बताया कि अपने करियर को बनाना है या इस फील्ड में आना है जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, सर्वेइंग का, डॉक्यूमेंटेशन का, तो सीख के जरूर आगे बढ़ सकते हैं, बस पेशेंस और एक सभी को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है इसमें। और मैं चाहूंगा जाते जाते एक आज के समय में जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं उसमें ये जो ब्रह्मा कुमारी का फिलॉसफी है या ध्यान डालना है वो कितना जरूरी है, आप क्या सोचते हैं?
3: नहीं, इसमें पहला कैसा था कि भाई लोग जो थे वो खेती बाड़ी में काम करते थे, जॉब करते थे, खाने में सही टाइम पे खाते थे, ये करते थे। अभी कैसा है जो मिला रास्ते पे वो खा ले लेते। क्या उससे आपके बॉडी को 100% पचन नहीं होता, ये नहीं होता, बहुत है। इसके लिए सुबह व्यायाम करना पड़ेगा, वॉकिंग जाना पड़ेगा, व्यायाम करना, ध्यान करना पड़ेगा। जिसको वो ध्यान करते वॉकिंग नहीं जा सकते तो वो अपने सेंटर में आ सकते इधर मेडिटेशन के लिए। फिर इधर आने के बाद सबको पता चलता है कितना खाना है, क्या खाना है, कैसा खाना है, क्या तो उसी में तो पूरा हो ही जाता है।
2: जी जी जी दीपक जी बहुत ही अच्छी बात बताया। और मैं चाहूंगा कि आप यहाँ अब आ गए हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ से सीखेंगे, कितना टाइम आप देना चाहेंगे, रेगुलर आएंगे, कैसा?
3: देखो अभी तो मैं बाजू में रहता हूँ, मैं तो हर बार चलते फिरते सामने से आता जाता हूँ, अंदर जाता हूँ, दीदी से मिलता हूँ, बात करता हूँ। तो बहुत सालों से आता जाता हूँ
2: जी, जी।
3: मैं जो नहीं आते एक बार एक दो बार आज ही शिविर अटेंड कीजिए, उसके बाद खुद आपको खुद बोलता है आदमी नहीं यार जाके आएंगे।
2: बिल्कुल
3: जब अंदर से खुशी मिलती है ना तब आदमी खुद होके आता है। हाँ
2: दीपक जी जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए?
3: सबके लिए एक बोलूंगा मैं
2: जी जी,
3: कोई भी चीज करते समय कर्म और धर्म दो चीज पे ध्यान रखिए। क्या?
2: बिल्कुल, कर्म और धर्म।
3: हाँ अपना एक बार शिविर इधर आगे ज्वाइन कीजिए, सब आपको पता चल ही जाएगा। जब नहीं आएंगे तो नहीं पता चलेगा, आएंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो खुद के लिए सीखेंगे। इतना बोलूंगा।
2: चलिए दीपक यादव जी, बात ही अच्छी बात है आपने बताया। आप यहाँ आइए, सीखे और अपने जीवन को बेहतर बनाए। ये बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया, क्योंकि आपके पास में है तो आप इसका लाभ जरूर ले सकते हैं। और जैसे आप खुद लाभ ले रहे हैं इन चीजों का, तो आप भी चाहते हैं कि दूसरे भी इसका लाभ उठाए, अपने जीवन को बेहतर शांति और प्रेम से गुजारे। तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं इन भविष्य के लिए आपको। ओम शांति। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहां हमने दीपक जी को सुना, दीपक जाधव जी को सुना, जो खास सर्वेयर का काम करते हैं और जो भी खेती बाड़ी है, जमीन है, इन सभी का डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको प्रॉपर मोज मापनी जिसको मराठी में कहते हैं, वो चीजें करते हैं। तो ये चीजें हमारे लिए सबके लिए जरूरी है, और ये सबके प्रॉब्लम्स को भी हल करते हैं। कई बार मोज मापनी में जो गड़बड़ हो जाती है, कम हो गया, ज्यादा हो गया, मेरा इतना है, वो मेरा इतना है, हम आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन एक मशीन के साथ और गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ जब हम सर्वे कर लेते हैं, तो हर एक को अपना जो है हिस्सा मिल जाता है, ठीक से मिल जाता है, झगड़े खत्म हो जाते हैं, और शांति से वो अपने अपने मार्किंग करके अपना कंपाउंड बना के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन में बदलने का काम दीपक जी का है। तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन में अगर तरक्की करना चाहते हैं बहुत जल्दी, तो लोगों के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन में बदलिए, तो आपका जीवन अपने आप खुशनुमा हो जाएगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते।
0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
4: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की, कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है, कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

अमीरों के महल झोंपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है। अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। ये कृष्ण भजन जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसको मोहम्मद रफी ने गाया, मोहम्मद शकील ने लिखा और नौशाद अली ने बनाया, ये कृष्ण भजन आज भी हर पवित्र जगह पर, हर घरों में ये दोहराया जाता है। इसलिए कि इसमें वो जज्बात, वो कृष्ण भक्ति मौजूद है और ये राग मालकोस पर आधारित है। जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने तमाम साजिंदों से ये कहा कि कल ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है और कृष्ण भजन है, सब लोग पाक साफ और पवित्र होके आना। उसी तरह सब लोग हाजिर हुए और गाना साहब उसी पाकीजगी से, उसी पवित्रता से ये गाना रिकॉर्ड हुआ है। और एक साहब थे लल्लू भाई, जो आते थे लोगों को पेमेंट करने के लिए, उनके ऊपर कैफियत तारी हो गई। आखिर में वो रक्स कर रहे हैं, ये कृष्णा कृष्णा ये कहते जा रहे हैं और साहब गाना खत्म हो गया, रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन वो उसी कैफियत में थे, वे खुद हो गए थे। उनको थामना, उनको संभालना मुश्किल हो गया था। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ये वो राग मालकोस की खूबी थी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी कहा कि नौशाद साहब ये राग मालकोस की खूबी है, देखिए इसमें लल्लू भाई के ऊपर जो कैफियत तारी हुई, तो ये इसमें ना मेरा कमाल है। मैंने कहा और मेरा भी कमाल नहीं, ये राग मालकोस का कमाल है। ये वो बुनियादी राग है जो हमारे ग्रंथों में हमारे भगवान शिव की रचना है।

0: जय लाला जी।
1: शाबाश प्यारे, आज तो जी खुश कर दिया तैने, बड़े मौके से माल लाया। बोल क्या दूं?
2: मजूरी।
1: मजूरी? पहले मजूरी एक पंजा। क्या कम है? तू भी क्या याद करेगा, ये रहा दस्सा। अबे तो क्या घर लुटा दूं? बोल क्या चाहिए तुझे?
2: इक्का।
1: एक रुपया?
2: पूरा एक। मेरी रोजी हलाल की खाए हराम की छोड़े, माँ कहती है।
1: अबे जा बुद्धू, जैसा तू है वैसी तेरी माँ है। आजकल तो लोग काम करते हैं कम, दाम मांगते हैं ज्यादा,
2: इसीलिए दुखी है जैसे तुम।
1: और तेरे जैसे मूर्ख काम करते हैं ज्यादा, दाम मांगते हैं कम,
2: इसीलिए सुखी है जैसे हम।
1: अरे चल चल, देखे सुखी की सूरत।
0: लाला जी मेरी सूरत पे ना जानना, यह है पते की बात। ये देखो, ये रही रोजी। बोलो हाँ। रोजी रोज कमाई रोज खाई, लेकिन ये फालतू मार जी का जंजाल, जो कमाए सो पछताए, जो खाए सो मर जाए, बाकी रहे
1: हाय हाय। अबे जा दीवाने, बड़ा मेडल लगाया फिरता है और ऊपर से पते की बात कर।

जादू पवन चले अब चल कर, जादू पवन चले अब चल कर, हाथ सीन में निर्बल दीप गाते, हाथ सीन में निर्बल दीप गाते। सुने अब नैन न देते बाल चले।

0: पैसे वाली हो
1: लेकिन मोटी नहीं चलेगी,
0: दुबली पतली काली हो लेकिन पैसे वाली हो, हर दामाद बना कर रखे मुझको जिसका बाप।

0: बड़े हुए संसार में हमसे प्यार करे ना कोई, मेरी भी कोई धन्नो हो दुख सुख मेरा बांटे जो।
1: धन्नो ए हाँ धन्नो,
0: मेरी भी कोई धन्नो हो दुख सुख मेरा बांटे जो, धो दे एक कारे के जो अगले पिछले पाप
2: चला। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती?
3: नहीं करती।
2: क्यों नहीं करती?
3: नहीं करती।
2: क्या तुमको प्यार करना नहीं आता?
3: नहीं आता।
2: नहीं?
3: हाँ नहीं।
2: मेरी कसम, प्यार सिखा दूँ?

देखो देखो वो आ गया।